सुप्रभात। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्स और FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 9 जून सन 2026। हमारी स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:55 और 46 सेकेंड्स हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा।

0: हमारी स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6 बजने वाले हैं। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीक की मदद से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर देश भर में विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को की थी। इसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और अच्छी गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्षों में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब भारत के 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हैं। इससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि यह पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक के लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुई आग की दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की

0: घोषणा की है। वहीं केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। यह फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया है। हालांकि दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष संघर्ष विराम चाहते हैं और शांति वार्ता जारी है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि उनका देश कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के प्रति प्रतिबद्ध है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के अभिवादन के साथ आरंभ करते हैं भक्तिमय संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना।

शिव सत्य है, शिव अनंत है, शिव अनादि है, शिव भगवंत है, शिव ओमकार है, शिव ब्रह्म है, शिव शक्ति है, शिव भक्ति है।

मर्यादा पुरुषोत्तम है वो, भक्त हैं जिनके हनुमान, सबके पाप मिटा देते जो, वो ही तो हैं सबके राम।

0: श्रोताओं, वंदना कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: जब दिल ने किसी को याद किया हो, जब कोई धुन दिल में उतर गई हो और कभी किसी को सुनाना हो कोई गीत, तो बस आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश लेकर आ रहा है आपके दिल की आवाज, जहां आपके प्यार भरे संदेश और आपके पसंदीदा गीत बनेंगे किसी की मुस्कान। तो उठाइए फोन, कीजिए हमें कॉल हर शनिवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0551-220-5386 और आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं हर रविवार 10:05।

0: हमें रहेगा आपका इंतजार, जहां दिलों की दूरियां गीतों से मिटती हैं।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें, 8700014242।
5: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
6: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
7: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
6: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
7: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
6: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
7: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
6: For details, log on to www.ddindia.com।
8: संयम, सत्यता, सहनशीलता और सही सोच मिल जाए तो ईश्वर अपने आप मिल जाते हैं।

0: इसी के साथ हमारी आज की वंदना संपन्न होती है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं चिंतन बिंदु।
1: जीवन में किसी कार्य के प्रति भाव की अगर शुद्धि नहीं है तो वह कार्य पूर्ण रूप से आपको आत्मसंतुष्ट नहीं कर सकता। तो सर्वप्रथम तो भाव की शुद्धि हो कैसे, क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि भाव का भूखा हमें और भाव ही बस सार है, भाव से जो भी भजे तो समझे भव से पार है। भगवान ये भी कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति, कि कोई पत्ता कोई पुष्प कोई फूल अर्पण करे। यह अर्पण करने की सारी विधियाँ अगर भाव परक नहीं है, तो आपने कथा सुनी है कि जब भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाने के लिए, उन्होंने विचार किया कि चलो एक बार हम भी समझाते हैं, और समझाने के लिए जब आए तो दुर्योधन ने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं कर दी कि उस व्यवस्था को देखकर भगवान श्री कृष्ण रीझ गए, अपने सिंहासन पर बिठाया, पाद प्रक्षालन किया। प्रक्षालन करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि तुम इतने अच्छे हो और इतने स्नेह से तुमने मेरा स्वागत सत्कार किया, मेरा एक कहा मान लो। देखिए, बनावटीपन से संसार रीझ सकता है। मैं प्रायः निवेदन करता हूँ कि जीवन में भगवत परक कर भाव है तो उसमें बनावटीपन बिल्कुल ना हो। दुर्योधन ने भगवान के लिए व्यवस्थाएँ तो खूब करी, परंतु जैसे ही भगवान ने कहा कि तुम नहीं देना चाहते हो साम्राज्य, कोई बात नहीं, तुम 5 गांव ही दे दो। दुर्योधन कहता है कि 5 गांव क्या मैं सुई के नोक के बराबर नहीं दूंगा। इतना सुनते ही भगवान को लगा ये जो सारी इसकी व्यवस्थाएं थी वो बाह्य थी, आंतरिक नहीं थी। आंतरिक पवित्रता के बिना पवित्र भाव का उदय हो जाना यह संभव नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, तब मैं चलता हूँ। तो दुर्योधन ने कहा हमने इतने भोज्य पदार्थ बनवाए हैं 56 प्रकार के, अब इसे पा कर जाइए। उन्होंने कहा नहीं, मेरा निमंत्रण विदुर के वहाँ है। उसी सभा में विदुर जी बैठे हैं, एक छोटे से निजी सिंहासन पर विराजमान। विदुर जी ने भगवान को देखा, कांपने लगे, दुर्योधन को देख रहे हैं कि प्रभु ये क्या कह रहे हो, लेकिन कोई मेरे घर प्रसाद पाने आए तो सौभाग्य है, तो विदुर जी नहीं कर पा रहे। विदुर जी को रोका दुर्योधन ने और भगवान सीधे विदुर जी के घर पहुंच गए। बाहर दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन भगवान?

0: कहते हैं मैं कृष्ण द्वारिका से आया हूँ। इतना सुन करके भी दुरानी की पत्नी को पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि मेरे घर कृष्ण आ सकते हैं। दरवाजा खोला, सामने प्रभु को पाया तो प्रभु के हाथ को स्पर्श करती, प्रभु सच में मेरे घर आए हो आप? भगवान ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। अगर भाव है ना तो भगवान भोजन मांग के पालेंगे, और भाव नहीं है तो कितना भी कुछ अर्पण करते रहो। और भाव है कि नहीं यह कोई बता भी नहीं सकता, यह एक ऐसा आंतरिक विषय है जिससे आप ही विज्ञ और अभिज्ञ दोनों स्थितियां आपकी ही हैं। भगवान अंदर पहुंचे और उन्होंने जल्दी से शीघ्रता से एक शिला पर बिठाया और केले का फल लेके आए। और संयोग देखिए, चाहे प्रेम में चाहे भाव में, अक्सर भाव में व्यक्ति होता है तो उसकी क्रियाएं थोड़ा ऐसी इधर उधर हो जाती हैं। तो विदुरानी केले का छिलका प्रभु को पवाने लगी और केला स्वयं पाने लगी। भगवान के नेत्र से भी अश्रु गिर रहे हैं और विदुरानी के भी नेत्र से अश्रु गिर रहे हैं। अचानक विदुर जी महाराज दौड़ते हाँपते भागते हुए आए और जब उन्होंने दशा देखी कि विदुरानी भगवान को केले का छिलका दे रही हैं और बड़ी प्रेम से बड़े चाव से पा रहे हैं, प्रभु ऐसा लग रहा है कि उस केले के छिलके में उस केले से भी अधिक स्वाद हो। अचानक हाथ पकड़ा विदुर ने विदुरानी का, क्या कर रही हो? जिस प्रभु ने 56 प्रकार के भोग का त्याग कर दिया हो कि मैं विदुर के वहां प्रसाद पाऊंगा, उस भगवान को तुम केले का छिलका खिला रही हो। विदुरानी सहम गई, उन्होंने भगवान से क्षमा याचना किया कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, गलती हो गई। भगवान ने विदुर जी से कहा कि विदुर, जो स्नेह जो प्रेम जो भाव था वह प्रेम तुमने छीन लिया, जो आनंद उस केले के छिलके में आ रहा था वह आनंद इस फल में नहीं आ रहा। इस कथा का आशय मात्र इतना है कि अगर भाव प्रधान है, भाव अगर आपका दिव्य है तो निश्चित है आप कुछ भी अर्पण करो उस परमात्मा तक पहुँच ही जाता है।
1: ये था आज का चिंतन बिंदु। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

श्रोताओं, अब आप सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। प्रातः 7:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

उर्दू कार्यक्रम आप सुन सकते हैं प्रातः 9:30 पर। श्रोताओं, लोक गीतों का कार्यक्रम लोकरंग होगा प्रातः 11 और लोकधारा कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 6:45 पर। महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम नारी जगत प्रसारित होगा 1:15 पर।

खेती किसानी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे मैंगो मिलीबग की पहचान और बचाव। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 1:50 पर।

श्रोताओं, ग्रामीण भाइयों का विशेष कार्यक्रम ग्राम जगत आप सुन सकते हैं शाम 5:35 पर, और खेती बाड़ी का कार्यक्रम होगा शाम 6:10 पर। जोश, जज्बा और नई सोच का कार्यक्रम युववाणी आप सुनेंगे शाम 5:05 पर।

11:30 पर, दोपहर 12:30 पर और शाम 7:31 पर। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम प्रसारित होगा रात्रि 10:30 पर। श्रोताओं, ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस का संगीतमय पाठ मानस गान।

प्रयाग क्षेत्र को तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गंगा यमुना तथा सरस्वती के संगम पर स्थित इस पुण्य भूमि पर पहुंचकर सबके मनोरथ सफल हो जाते हैं। ऐसी पावन भूमि के दर्शन कर श्री रामचंद्र ने परम सुख का अनुभव किया। उन्होंने सीता, लक्ष्मण तथा सखा निषादराज को तीर्थराज प्रयाग की महिमा कह सुनाई। सभी ने त्रिवेणी के दर्शन किए। वहां स्नान कर विधि पूर्वक शिव तथा तीर्थ देवताओं की पूजा की और फिर भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचे। श्री राम ने भरद्वाज मुनि को दंडवत प्रणाम किया तो मुनिराज ने उन्हें हृदय से लगा लिया। आनंदातिरेक में आशीर्वाद देते हुए उन्हें यह प्रतीति हुई कि देवी सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम के दर्शन कराकर विधाता ने उनके संपूर्ण पुण्यों का फल लाकर आंखों के सामने रख दिया है। प्रेम सहित पूजन करके भरद्वाज जी ने उन्हें कंद मूल फल खिलाए और स्नेह सनी वाणी में अपने उद्गार प्रकट किए। आपके दर्शन कर आज मेरी तपस्या, जप योग, तीर्थ सेवन और त्याग, वैराग्य सभी सफल हो गए। प्रभु दर्शन के अतिरिक्त लाभ और सुख की कोई अन्य सीमा नहीं है। जब तक मनुष्य मन, वचन और कर्म से छल कपट त्याग कर आपका दास नहीं हो जाता, तब तक कोटि उपाय करके भी उसे स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का अंश मानस कान। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: आपकी पसंद, आपका गाना और आवाज होगी आपकी। जी हाँ, आकाशवाणी का सबसे चहेता प्रोग्राम हेलो फरमाइश अब आप सुनेंगे हर रविवार प्रातः 10:05 पर। कर लीजिए तैयारी, क्योंकि हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच होगी हमारी रिकॉर्डिंग। तो देर किस बात की, अभी उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0551220538। 0551 हमारा STD नंबर है गोरखपुर का। नंबर एक बार फिर से 2205386। अपनी फरमाइश हमें बताइए और जुड़िए आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। कॉल करना भूलिएगा मत, हर शनिवार दोपहर 11 बजे से 12 बजे के बीच।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल

0: विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर।
1: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे।
2: संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। राष्ट्रपति भवने गतसायं आयोजितस्य रक्षा अलंकरण समारोहस्य समये राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः शौर्य पुरस्कारान् प्रदत्तवती। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधा कृष्णन वर्यः, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः, अन्ये केन्द्रीय मंत्रिणः, सशस्त्र सेनायाः वरिष्ठाधिकारिणश्च अस्मिन् अवसरे उपस्थिताः आसन्। राष्ट्रपतिः समारोहस्य समये रक्षा सैन्य दलानां, केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षक बलानां, राज्य केन्द्र शासित प्रदेशयोः आरक्षकेभ्यश्च 7 कीर्तिचक्राणि, 15 वीरचक्राणि, 39 शौर्यचक्राणि च प्रदत्तानि। जम्मूनगरस्य अन्तर्राष्ट्रिय सीमायां कर्तव्यपारायणतावधौ प्राणत्यागं कृतवन्तौ VSF इत्यस्य आरक्षकं दीपक चिंगखम इत्यमुं, उपनिरीक्षकं मोहम्मद इम्तियाज इत्यमुं च मृत्योपरान्तं वीरचक्रं प्रदत्तम्। आंध्रप्रदेशे गतसायं राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड इत्यस्य विशाखापत्तनम स्टील प्लांट इत्यत्र महते अग्निदुर्घटनायां 8 जनाः मृताः, अन्ये 6 जनाः च व्रणिताः अभवन्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधा कृष्णन वर्यः, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू च अस्यां दुर्घटनायां मृत जनानां प्रति शोकं प्रकटितवन्तः। एतदतिरिच्य प्रधानमंत्रिणा प्रत्येकस्य मृतकस्य निकटवर्ति सदस्यस्य कृते 2,00,000 रूप्यकाणां, व्रणितानां कृते 50,000 रूप्यकाणां च अनुग्रह राशेः घोषणा कृता। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः अद्य नवदिल्ल्यां भूपत्तन प्रबंधन व्यवस्थायाः LPMS इत्यस्य उद्घाटनं करिष्यति। गृहमंत्रालयेन उक्तं यत् LPMS इत्यस्य आरम्भः भारतस्य आधुनिक तंत्रज्ञान सक्षम सीमा प्रबंधन व्यवस्थायाः कृते महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। 47,000,000-2,000,000-वर्षपर्यन्तं व्यापार सौकर्यं, संपर्कं, राष्ट्रीय सुरक्षां, विकसित भारतस्य दृष्टिकोणं च सुदृढं कर्तुं लक्ष्येन सह एतत् मञ्चः संरेखितः अस्ति। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामनः पश्चिम बंगस्य विकास यात्रां त्वरितं कर्तुं उपायेषु विचारं कर्तुं पश्चिम बंगस्य मुख्यमंत्रिणा शुभेन्दु अधिकारिणा सह नवदिल्ल्यां मेलनं कृतवती। राज्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु ऋण प्राप्ति विषये, सर्वकारस्य योजनानां कार्यान्वयनस्य विषयेऽपि चर्चा जाता। वित्तमंत्री सीतारामनः अघोषयत् यत् राज्य सर्वकारेण सह निकट समवायेन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजनादीनां नवीकृत संतृप्ति अभियानं प्रत्येकं योग्यं लाभार्थिम् आच्छादयितुं क्रियते। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः उक्तवान् यत् नवान्वेषणैः वैश्विक सहभागित्वेन अन्तर्राष्ट्रीय आपणे प्रवेशस्य विस्तारेण च आगामिषु 5 वर्षेषु भारतस्य औषध निर्माण उद्योगस्य आकारः द्विगुणितः भविष्यति। श्रीगोयलवर्यः ह्यः नवदिल्ल्यां फार्मास्यूटिकल क्षेत्रस्य वैश्विक राजदूत सम्मेलनं 26,000,000-2,000,000-वर्षस्य ग्लोबल ड्रग रेगुलेटर्स कॉन्क्लेव तथा 26,000-तम वर्षस्य फार्मा एंड हेल्थ केयर इत्यस्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन्याः पूर्वालोकन समारोहं च संबोधयन् इदमुक्तवान्। केन्द्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी वर्यः अवदत् यत् नरेन्द्र मोदिनः सर्वकारस्य 12 वर्षेषु भारतस्य अंगारखनन क्षेत्रयोः महतीं परिवर्तनम् अभवत्।

0: महिला क्रिकेट क्रीडायां युनाइटेड किंगडम देशस्य कार्डिफ नगरे 26,000+ वर्षस्य आईसीसी महिला 20-20 विश्व चषक क्रीडायाः प्राक् ह्यः प्रथमायां पूर्वाभ्यास क्रीडायां भारतेन वेस्टइंडीज दलं 26 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्ष में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में कल फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हो चुके हैं, जिससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। असम की प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई के लिए रवाना हो की गई है। श्री गोयल ने कहा कि इस साल से तेजपुर लीची को वैश्विक पहचान मिलेगी, किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त होगा और पूर्वोत्तर भारत के कृषि उत्पादों के लिए नए अवसर खुलेंगे। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हुए हैं। इनमें 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार ये हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकट तम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमारस्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने भी मुख्य सचिव, जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। दुर्घटना की जांच जारी है। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक संपन्न हो गई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले शामिल थीं। अमरीका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए $1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि कांग्रेस की मंजूरी के बिना ये शुल्क नहीं लगाया जा सकता। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। ये फैसला अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच

0: to bat first, Harmanpreet Kaur, led Women in Blue, posted 179 for 8 in the stipulated 20 overs, powered by Bharti Fulmali's unbeaten 56 runs of 40 balls. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्स और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं देश गान।

0: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है।

0: महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को किया रेखांकित। कहा, देश में हुए बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा है गरीब कल्याण और वंचित वर्ग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने लखनऊ के मौसम विज्ञान केंद्र को परिवर्तित कर स्थापित हुए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र को बताया राज्य के लिए बेहद लाभकारी। प्रदेश के अग्निशमन और आपात सेवा विभाग में गठित किया जा रहा है विशेषीकृत रेस्क्यू ग्रुप SRG। मुख्यमंत्री ने विभागीय बैठक में SRG गठन की स्थिति की समीक्षा की। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा सकुशल संपन्न। आज और कल भी दो पालियों में आयोजित हो रही हैं परीक्षाएं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने कल कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
3: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
2: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
4: गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8,00,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया। इसे लखनऊ मौसम

0: विज्ञान केंद्र को परिवर्तित कर स्थापित किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में स्थापित होने से प्रदेश को काफी लाभ होगा।
1: मौसम विभाग की जानकारी समय पे हमें मिलने का परिणाम क्या है, हम अन्नदाता किसान को होने वाली क्षति को और उसके कारण अर्थव्यवस्था को पहुंचने वाली क्षति और खाद्यान्न के संकट को काफी हद तक बचाने में सफल हो सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारे लिए और आसान हो जाएगा।
0: इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले सिर्फ 14 रडार थे, लेकिन अब इनकी संख्या 150 से अधिक हो गई है।
2: जितनी प्रगति गत 12 वर्षों में हुई है मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, इतनी उससे पहले के शायद 65 वर्षों में ना हो पाई। सन 2014 तक देश भर में केवल और केवल 17 वेदर रडार्स थे, और कई एक ऐसे प्रदेश थे जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, जहां एक भी रडार नहीं था। आज वो 17 रडार बढ़कर के 50 हो गए हैं, और मिशन मौसम के तहत 50 और जुड़ने वाले हैं, यानी अगले 2 साल में हम 100 रडार तक पहुंचेंगे।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में अग्निशमन और आपात सेवा विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने पर जोर दिया। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री के निर्देश पर अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग में विशेषीकृत रेस्क्यू ग्रुप SRG का गठन किया जा रहा है। पहले चरण में प्रदेश के 10 जनपदों में इसकी स्थापना की तैयारी पूरी कर ली गई है। बैठक में बताया गया कि प्रदेश की 350 तहसीलों में से 296 तहसीलों में 326 अस्थायी अग्निशमन केंद्र संचालित हैं। इसके अलावा 26 नए केंद्र लोकार्पण के लिए तैयार हैं, जबकि 25 केंद्रों का निर्माण कार्य जारी है। 47 अन्य प्रस्तावित केंद्रों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री ने शेष तहसीलों में भी जल्द अग्निशमन सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। श्री योगी ने हाईराइज भवनों के लिए आवश्यक उपकरणों और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने अस्पतालों, होटलों, स्कूलों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और बहुमंजिला भवनों में नियमित फायर ऑडिट व सुरक्षा मानकों के कड़ाई से पालन के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने फायर NOC प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने पर बल दिया। साथ ही अग्नि मित्र और अग्नि सचेतक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित करने के निर्देश भी दिए। समाचार कक्ष से मैं अरुण।
0: एक अन्य बैठक में मुख्यमंत्री ने हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग और खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में निवेश, उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा कल सकुशल संपन्न हो गई। यह परीक्षा राज्य के सभी 75 जिलों में आज और कल भी आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट।
4: यूपी पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 परीक्षा दो पालियों में राज्य के 1183 परीक्षा केंद्र पर आयोजित की गई। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहे। केंद्रों पर परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए स्थायी मजिस्ट्रेट, पर्यवेक्षक और पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में यात्रा करते समय किराए में 50% की छूट प्रदान की जा रही है। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से 10 जून तक गोरखपुर से लखनऊ के बीच 4 परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: राज्य में तेज धूप, भीषण गर्मी और उमस से जनजीवन प्रभावित है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में कल से कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की है। पूर्वी हिस्सों में कल भी तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को किया रेखांकित। कहा, देश में हुए बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा है गरीब कल्याण और वंचित वर्ग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

नाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने लखनऊ के मौसम विज्ञान केंद्र को परिवर्तित कर स्थापित हुए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र को बताया राज्य के लिए बेहद लाभकारी। प्रदेश के अग्निशमन और आपात सेवा विभाग में गठित किया जा रहा है विशेषीकृत रेस्क्यू ग्रुप SRG। मुख्यमंत्री ने विभागीय बैठक में SRG गठन की स्थिति की समीक्षा की। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा सकुशल संपन्न। आज और कल भी दो पालियों में आयोजित हो रही हैं परीक्षाएं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।

मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्स और FM 100.1 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम पूर्वा सुहानी। कार्यक्रम का आगाज करते हैं दूरियां फिल्म के इस गीत के साथ। आवाजें हैं भूपिंदर और अनुराधा की।

सपने। आनंद फिल्म से आप ये गीत सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं कश्मीर की कली फिल्म से। इस गीत को सुरों में पिरोया है मोहम्मद रफ़ी ने।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप ये गीत सुन रहे थे कश्मीर की कली फिल्म से। श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम पूर्वा सुहानी में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: जब दिल ने किसी को याद किया हो, जब कोई धुन दिल में उतर गई हो और कभी किसी को सुनाना हो कोई गीत, तो बस आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश लेकर आ रहा है आपके दिल की आवाज, जहां आपके प्यार भरे संदेश और आपके पसंदीदा गीत बनेंगे किसी की मुस्कान। तो उठाइए फोन, कीजिए हमें कॉल हर शनिवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0551-220-5386 और आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं हर रविवार 10:05 पर। हमें रहेगा आपका इंतजार, जहां दिलों की दूरियां गीतों से मिटती हैं।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं एक दूजे के लिए इस फिल्म से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट

0: जुहार।
1: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
0: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
1: दूरदर्शन डीटीएच सर्विस डीडी डायरेक्ट प्लस।
0: फॉर डिटेल्स लॉग ऑन टू www.ddindia.com।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। फिल्म का नाम नया दौर।

0: इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम पूर्वा सुहानी समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे।
1: मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका

0: बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एमटी मारीवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों की सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: गृह मंत्रालय ने कहा ये प्लेटफॉर्म व्यापार सुगमता, संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। LPMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि बंदरगाहों के संचालन को एकीकृत प्रणाली में समाकलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सहित संपूर्ण डिजिटल कार्य प्रभावी प्रदान करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के दावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंडपोर्ट में नव विकसित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे सीमा प्रबंधन और कर्मियों के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता मजबूत होगी। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
5: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
3: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा मजबूत करना है।
6: भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
3: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा ₹75 का स्मारक सिक्का और ₹5 का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज की अंक

0: में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत व्यय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
2: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
1: वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
3: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है। बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रह रहा हूँ।
1: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवम्बर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष में भारत के कोयला और खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। हैदराबाद में कल श्री रेड्डी ने बताया कि भारत ने 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र से लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं इस्पात मंत्री HD कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है। समाचार कक्ष से मैं चाहत सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार भी जताया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली। हादसे की जांच जारी है। अमरीका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख

0: अमेरिकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। H-1B वीजा के लिए जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ईरान और इसराइल के बीच एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांतिवार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के डाम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी शामिल है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा। फाइनल 21 जून को होगा। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। भारतीय फूलमाली ने नाबाद 56 रन और स्मृति मानधना ने 39 रन का योगदान दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में आज लू चलने की आशंका व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे और उत्तरी तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में बगावत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, टीएमसी में टूट, 20 सांसदों का अलग गुट एनडीए के साथ। पत्र के अनुसार काकोली घोष की अगुवाई में अलग सेटिंग की भी मांग। दैनिक जागरण ने तृणमूल में एक और टूट शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जैसी आशंका थी तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों ने भी ममता बैनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है। इससे पहले पार्टी के 80 में से 60 विधायक अलग गुट बनाकर नेता प्रतिपक्ष का चयन कर चुके हैं। पंजाब केसरी ने विपक्षीय एकता का अंतर विरोध शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता बताती है कि इंडिया गठबंधन में इतनी भी कुव्वत नहीं है कि उसके सहयोगी दलों के नेता एक साझा मंच पर इकट्ठे होकर भाजपा को ललकार सके। हिंदुस्तान ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को का साक्षात्कार देते हुए लिखा है, चीन से सिर्फ उम्मीद के भरोसे शांति संभव नहीं, थिएटर कमान पर भी सहमत। जनसत्ता के अनुसार इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए। 8 अप्रैल के बाद यह गंभीर झड़प, ट्रंप की अपील के बाद दोनों देशों ने किया संघर्ष विराम। पत्र के अनुसार भारत ने नागरिकों को सलाह देते हुए लिखा है, ईरान और इसराइल छोड़े भारतीय और यात्रा भी ना करे। अमर उजाला ने दिया है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर पहुंचाएंगे नीट के प्रश्न पत्र, पहली बार सरकारी प्रोफेसर और शिक्षकों ने तैयार किया पेपर। बाहरी को जिम्मेदारी नहीं, लॉजिस्टिक्स सेंटर से परीक्षा केंद्र तक GPS से निगरानी। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, पिछले 12 वर्ष में भारत में कई परिवर्तन आए। देशबंधु की सुर्खी है, कल्याणकारी योजनाओं से 12 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में MT मरवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों की सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दाम्बुला में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: मोदी की नजरिया साज कयादत के तहत सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास के उसूलों के तहत गुज़श्ता 12 बरसों में भारत में अहम तब्दीली आई है। इस मुद्दत में मोदी सरकार ने गरीबों किसानों ख़वातीन और नौजवानों के लिए अपनी ज़ेर सरपरस्ती कई इकदाम किए हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोबा गुज़श्ता 12 बरसों के दौरान कई कलीदी शोबों में सरकार की काविशों पर मबनी एक खसूसी फीचर पेश कर रहा है, जिसके तहत आज हम सेहत खिदमात पर सरकार की जानिब से किए गए इकदाम का एक जायजा पेश कर रहे हैं।
1: गुज़िश्ता 12 बरस में हुकूमत ने भारत के सेहत निज़ाम को नुमाया इस्तेहकाम बख्शा है, जो कि अब ज़्यादा काबिल रसाई किफ़ायती और मेयारी है। 2018 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े सेहत इंश्योरेंस प्रोग्राम आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की थी। इस स्कीम के तहत सामाजिक और इकतसादी तौर पर पसमादा कुंभों के लिए हर साल हर एक कुंभे को 5 लाख रुपए की मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस फराहम कराई गई। इस स्कीम के तहत 44 करोड़ से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बनवाए गए और 1,80,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इलाज फराहम कराया गया।
2: मेरा नाम रोहित सिंह है और आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या था मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे और कार्ड से क्या था मेरा परिवार भी स्वस्थ रहेगा और अच्छा इलाज हो सकेगा।
1: सरकार ने 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी कायम किए, ताकि करीबी इलाकों में बुनियादी सेहत खिदमात फराहम कराई जाएं। ये सेहत मराकज़ वसी तर खिदमात फराहम कर रहे हैं, जिनमें जच्चा और बच्चा की सेहत खिदमात, टीकाकारी, जांच की सहूलियात और मुफ्त लाजमी अद्वियात शामिल हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना भी मियारी जेनेरिक अद्वियात फराहम कर रही हैं। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए कलीम अहमद।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में PMSMA के 10 बरस निगहदाश्त की एक दहाई मुकम्मल होने पर मुल्क भर में होने वाली तकरीबात का आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के कामयाब नफाज के 10 बरस मुकम्मल होने के सिलसिले में ये मुहिम चलाई जा रही है। सरकार की ज़ेर क़यादत इस पहल PMSMA का मकसद महफूज जचगी और हामला खातून की सेहत का ख्याल रखना है। ओमान के शहर मस्कत में भारतीय सिफारतखाने ने आबनाए हुरमुज के जनूब में आग लगने के एक वाक़े के बाद बहरी जहाज MT मेरीवैक्स में सवार 24 भारतीय मल्लाहों को बचाने की तस्दीक की है। सिफारतखाने ने तेजी के साथ कार्रवाई करने के लिए ओमान के हुक्काम का शुक्रिया भी अदा किया है। इससे पहले कल नई दिल्ली में बैन वजारती ब्रीफिंग के दौरान बंदरगाहों जहाजरानी और आबी गुजरगाहों की वजारत के तर्जुमान उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि कल दिन में 1:30 बजे के आसपास आग लगने के वाक़े की इत्तला मिली थी। जनाब शर्मा ने कहा कि इब्तदाई जानकारी की बुनियाद पर सभी भारतीय मल्लाह महफूज हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस बात की तस्दीक की जा रही है कि आया ये बहरी जहाज किसी प्रोजेक्टाइल की इज्जत में आया था या नहीं। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि दोनों फरीक फौरी जंगबंदी के ख्वाहिशमंद हैं और कयाम अमन के बारे में हतमी मुजाकरात आगे बढ़ रहे हैं। अलबत्ता उन्होंने ये भी कहा कि किसी तरह की लाइलमी या हिमाकत की वजह से यह अमल मुतासर हो सकता है। सदर ट्रंप ने यह वाजे कर दिया कि जब तक कोई हतमी समझौता नहीं हो जाता नाकाबंदी पूरी तरह नाफिज रहेगी। इधर इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने भी एक बयान में कहा है कि उनकी दिफाई फोर्सेज ईरान के खिलाफ हमले रोक रही हैं। उन्होंने ये वार्निंग भी दी कि अगर ईरान ने फिर से हमले करने की गलती की तो इसराइल पूरी ताकत के साथ इसका जवाब देगा। अमेरिका की वफाकी अदालत ने H-1B वीज़ा के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नाफिज की गई $1,00,000 की फीस को रद्द कर दिया है। وفاقی جج نے یہ فیصلہ سنایا کہ ایچ ون بی درخواستوں کے لیے $100,000 کی فیس غیر قانونی ہے۔ بوسٹن میں امریکی ڈسٹرکٹ کورٹ کے جج نے کہا کہ کانگریس سے مطلوبہ منظوری کے بغیر اس طرح کی درخواستوں پر ٹیکس نافذ کیا گیا ہے۔ امریکہ میں آباد بھارت نژاد لوگوں کے گروپوں نے وفاقی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایچ ون بی پروگرام کی کافی مانگ رہتی ہے۔ اس کے تحت امریکی کمپنیوں کو دیگر ملکوں سے ہنرمند افراد کو کام پر

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में। फिल्म का नाम लगे रहो मुन्ना भाई।

लगे रहो मुन्ना भाई। इस फिल्म से आप ये गीत सुन रहे थे सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं बंटी और बबली फिल्म से। आवाज़ें हैं निहिरा जोशी, सुनिधि चौहान और उदित नारायण की।

0: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग्स।
1: सृष्टि से पहले सत नहीं था।
0: और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं इश्किया फिल्म से। आवाज़ है राहत फतेह अली खां की।

राहत फतेह अली खां की आवाज में आप ये गीत सुन रहे थे इश्किया फिल्म से। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं सनम पुरी और शिप्रा गोयल की आवाजों में। फिल्म का नाम हंसी तो फंसी।

श्रोताओं, कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहित चौहान की आवाज़ में। फिल्म का नाम एक था टाइगर।

इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम हिट सुपर हिट समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी लखनऊ से जिले की हलचल।

0: होगी आपसे किसी रोज मुलाकात, तब तक अपना रखिए खूब ख्याल, नमस्कार। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुन

0: हरदोई और ललितपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं हरदोई जिले की हलचल। आलेख और स्वर है आकाश शुक्ला का।
1: हरदोई पहुंचे मंत्री नितिन अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश में बिजली महंगी होने के सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 10% की बढ़ोतरी की जानकारी हुई है। उन्होंने कहा कि आप सब जानते हैं कि खड़ी देशों में पिछले कुछ समय से युद्ध चल रहा है और इस युद्ध के कारण जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जो रिसोर्सेज हम बाहर से लेते हैं, उसमें एक भारी कमी भी देखने को मिल रही है। और इस बीच सिर्फ हमारा देश नहीं बल्कि अन्य सभी देश एक क्राइसिस के दौर से गुजर रहे हैं, जो कि एक बड़ा कारण है दामों को बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा,
2: मैं उपभोक्ताओं से ये आग्रह करूं कि इस वक्त संकट का समय है, हमें इस संकट की घड़ी में देश के साथ खड़ा होना चाहिए और निश्चित तौर पर जब ये संकट खत्म होगा तो निश्चित तौर पर सरकारें अपना जो निर्णय लेंगी वो आपके सामने होगा।
1: प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत लगभग 1,43,000 शिक्षा मित्रों की मानदेय वृद्धि के उपलक्ष्य में बीते दिनों एक भव्य शिक्षा मित्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह राज्य स्तरीय कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गरिमा में उपस्थिति में गोरखपुर स्थित योगी राज्य बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केंद्र में सम्पन्न हुआ। इस दौरान शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 रूपए से बढ़ाकर 18,000 रूपए प्रतिमाह किए जाने की घोषणा को ऐतिहासिक कदम बताया गया। कार्यक्रम का सजीव प्रसारण जनपद हरदोई के रसकान प्रेक्षागृह में भी किया गया, जहां जिला स्तरीय समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्षा प्रेमावती, विधायक माधवेन्द्र प्रताप सिंह रानू, नगर पालिका अध्यक्ष सुख सागर मिश्रा मधुर तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में जिलाधिकारी अनुनय झा, अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट संस्कृत त्रिवेदी और वरिष्ठ पत्रकार अभय शंकर गौड़ उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप ज्वलन के साथ हुई। इसके बाद कुली बच्चों द्वारा सरस्वती वंदना और स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अजीत सिंह ने अतिथियों का स्वागत करते हुए शिक्षा मित्रों को मानदेय वृद्धि पर बधाई दी और विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी। हरदोई जिले में धान की सीधी बुआई DSR तकनीक किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। पिछले खरीफ सत्र में 800 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हुई सीधी बुआई से औसतन 65.70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्राप्त होने के बाद इस बार 5,000 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विकास खंड 52 कोथावा समेत अन्य क्षेत्रों में अब तक करीब 200 हेक्टेयर में धान की बुआई की जा चुकी है। 52 क्षेत्र के कई किसानों ने बड़े पैमाने पर DSR तकनीक अपनाई है, जबकि कोथावा के ग्राम कुर्सी निवासी जयदीप द्विवेदी ने 30 एकड़ में धान की सीधी बुआई की है। उप कृषि निदेशक सतीश पांडे ने ग्राम नया गाँव में किसान राहुल कुमार सिंह के खेत का निरीक्षण किया। यहाँ PR 126 प्रजाति की बुआई लकी सीडर मशीन से की गई। उन्होंने बताया कि सीधी बुआई से बीज, पानी और मजदूरी की बचत होती है, साथ ही फसल जल्दी तैयार होने से रबी की बुआई समय से हो जाती है। इस तकनीक से लागत में करीब 40-50% तक कमी आ रही है। निरीक्षण के दौरान कृषि विभाग की ओर से गन्ने की फसल में अंतः फसल के रूप में दी गई उर्द मिनी किट का भी अवलोकन किया गया। इस मौके पर कृषि विभाग के अधिकारी व किसान मौजूद रहे। मशहूर फिल्म अभिनेता आमिर खान के बड़े भाई और अभिनेता फैजल खान पिछले दिनों हरदोई की शाहबाद तहसील स्थित अपने पैतृक गांव अख्तियारपुर पहुंचे। उन्होंने तहसीलदार संध्या यादव से भी मुलाकात की और एक महीने पहले लापता हुई उनकी मां लल्ली देवी उम्र 71 वर्ष की तलाश में मदद की अपील की। फैजल खान ने यूपी में प्रस्तावित फिल्म सिटी की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और फिल्म उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। जनपद पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन दहन के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी DDC की निगरानी में 4,183.104 किलोग्राम अवैध डोडा का विनिश्चीकरण कराया गया। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा की अध्यक्षता में की गई। नष्ट किए गए मादक पदार्थों में थाना बिलग्राम में दर्ज मुकदमा संख्या 453/21 के तहत बरामद 1683.304 किलोग्राम डोडा और थाना कोतवाली देहात के मुकदमा संख्या 544/19 में बरामद 2499.8 किलोग्राम डोडा शामिल है। कुल 4,183.104 किलोग्राम मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत करीब 6,27,46,560 रूपए आंकी गई है। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में गठित कमेटी द्वारा इन मादक पदार्थों को संडीला स्थित AV बायो मेडिकल वेस्ट सर्विस के इंसिनरेटर में नष्ट किया गया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी माटन प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी हरपालपुर सत्येंद्र सिंह समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन का कहना है कि मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और अवैध कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
0: हरदोई जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं ललितपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय कुमार श्रीमाली का।
3: प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री एवं प्रभारी मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने ललितपुर जिले में किए जा रहे विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं, कानून व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। तालबेट तहसील सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने विभिन्न विभागों की प्रगति

0: को अवलोकन किया और जिन विभागों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर पाया गया उन्हें एक माह के भीतर सुधार लाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले के पारंपरिक और स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराया जाए ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। उन्होंने विशेष रूप से चंदेरी साड़ी और फूड प्रोसेसिंग उद्योगों के प्रचार प्रसार तथा विपणन की व्यवस्था बेहतर करने पर बल दिया गया। राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाए, उन्हें विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण उपलब्ध कराया जाए तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाए। प्रभारी मंत्री ने जिले में बिजली आपूर्ति बाधित होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए विद्युत विभाग और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि सभी विभागीय कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी जन प्रतिनिधियों को समय समय से उपलब्ध कराई जाए ताकि विकास कार्यों में बेहतर समन्वय स्थापित हो सके। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण अभियान की शुरुआत भी की। बैठक के दौरान यह जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड रैंकिंग में ललितपुर जिले को प्रदेश में 11वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस उपलब्धि पर प्रभारी मंत्री ने जिला प्रशासन की सराहना करते हुए कहा कि जनपद निरंतर प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों तथा आगामी जन जागरूकता अभियानों की जानकारी दी। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 5 जून से 21 जून तक जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अभियान की शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाकर की गई, जिसमें सभी विकास खंडों, नगर निकायों और ग्राम पंचायतों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया। अमृत सरोवरों, तालाब, नदियों, नहरों तथा सड़कों के किनारे पौधे लगाए गए। वहीं 14 जून तक विशेष जनसंपर्क एवं जन जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न वर्गों के लोगों से संवाद, स्वच्छता अभियान और जन समस्या समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। 11 से 14 जून के बीच मीडिया संवाद कार्यक्रम होंगे, जिनमें सरकार उपलब्धियों और विकास कार्यों की जानकारी आम जन तक पहुंचाई जाएगी। 14 से 16 जून तक सभी विकास खंडों में जन कल्याण मेले और स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। 16 और 17 जून को विकसित भारत संकल्प सम्मेलन होंगे, जबकि 17 से 20 जून तक कलेक्ट्रेट परिसर में विकास प्रदर्शनी आयोजित कर विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों का प्रदर्शन किया जाएगा। किसानों के लिए 18 और 19 जून को विशेष कृषि कार्यशालाएं आयोजित होंगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन सहित सभी ग्राम पंचायतों में योग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। अभियान के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रात चौपालों का भी आयोजन होगा, जहां लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी और उनका निस्तारण किया जाएगा। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 21 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। समारोह में राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत सहित अन्य जन प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस दौरान लखनऊ में आयोजित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी देखा गया। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि हाई स्कूल के 10 तथा इंटरमीडिएट के 11 विद्यार्थियों सहित कुल 21 मेधावियों को 21,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि, प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किए गए। ललितपुर में आबकारी विभाग ने विशेष अभियान चलाकर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक कार्रवाई की है। जिलाधिकारी के निर्देशन और जिला आबकारी अधिकारी की निगरानी में संचालित इस अभियान के दौरान 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान लगभग 70 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। सभी आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई। विभागीय अधिकारियों ने कहा कि अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और परिवहन के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्स और FM 100.1 मेगाहर्ट्स पर। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं देश गान।

0: अपनी लुटाने से नहीं डरते। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित उर्दू प्रोग्राम।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। पेश है उर्दू कार्यक्रम।
2: समिन, आज के उर्दू प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आकाशवाणी के रामपुर मरकज से आपकी मेजबानी प्रोग्राम आयशा राहत आपकी खिदमत में हाजिर है। आदाब। समिन बज्म हर अहद, हर जमाने और हर दौर में अदब के ऐसे चाहने वाले हुए हैं कि जिन्होंने अदब से अपना ताल्लुक हमेशा कायम रखा। उन्होंने अदब

0: कि किसी ना किसी सिंफ से अपना जुड़ाव रखा और इससे हमेशा जुड़े रहे। समीन कहा जाता है कि कहानी की उम्र उतनी ही है जितनी हजरत इंसान की, तो बेशक इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि किस्से कहानियां हमेशा से ही लोग पसंद करते आए हैं और आज भी सुनना पसंद करते हैं। समीन, आज सिर्फ फर्क इतना आया है कि कहानियां अदब की मुख्तलिफ असनाफ के जरिए हमारे सामने आती हैं, चाहे वो ड्रामा हो, नावल निगारी हो या फिर अफसाना निगारी ही क्यों ना हो। आज इस सिंफ को बेहद पसंद किया जाता है और देखा जाता है कि अफसाने को लोग बहुत शौक से सुनते हैं कि इस प्रोग्राम में। इसीलिए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बेहद खूबसूरत अफसाना, जिसका उन्वान है यतीमों का संगम, और अफसाना निगार हैं जनाब मोहम्मद यामीन बरकाती। तो आइए समाप्त करते हैं उनका ये अफसाना।
1: बाबूजी, हम इतने रुपए नहीं लेंगे। साहिल मना नहीं करता, हम नहीं लेंगे। आखिर क्यों? बाबूजी भीख में 1 या 2 रुपया देते हैं, बहुत सखी हुआ तो 10-5 रुपए देते हैं, 100 रुपए कोई नहीं देता। जब हम 100 रुपये लेकर घर जाएंगे तो अम्मी जान समझेंगी कि हमने चोरी की है, इसलिए वो हमें मारेंगी। देखिए, हम 2 घंटे से मांग रहे हैं, मुश्किल से 20-25 रुपये होंगे। इसमें 1 रुपया 2 रुपये के ही सिक्के हैं, 5 या 10 रुपये का एक भी सिक्का या नोट नहीं है। अगर आपको ये रुपये देने ही हैं तो मेरे साथ घर चलिए और अम्मी के सामने दीजिए, तो हम अम्मी की पिटाई से बच जाएंगे। बेटा, तुम इतने समझदार हो, अच्छे माँ बाप की औलाद मालूम होती हो, फिर भी क्यों मांग रही हो? बाबूजी, हम सच कहते हैं, हमारे अब्बू अम्मी बहुत अच्छे हैं और हम भिखारी भी नहीं हैं, मगर हम बहुत मजबूर और परेशान हैं। सुनिए, हमारे अब्बू का इंतकाल हो गया, मुसीबत का पहाड़ हम पर टूट पड़ा। दादा दादी ने हमें और हमारी अम्मी को घर से खाली हाथ धक्के देकर निकाल दिया। हमारी अम्मी माँ बाप की इकलौती थी, नाना नानी का भी इंतकाल हो गया था। अम्मी बताती हैं कि खानदान वालों ने नाना नानी के मरने पर घर पर कब्जा कर लिया और हमारे पास अब रहने की कोई जगह ना थी। अम्मी और हम सड़क के किनारे बैठे रो रहे थे कि अल्लाह ने मदद की। अब्बू के एक दोस्त उधर से गुजरे, उनकी निगाह हम पर पड़ी, उन्होंने हमें पहचान लिया। उन्होंने पूछा, क्या हुआ, तुम लोग यहाँ क्यों हो और फिर क्यों रो रही हो? अम्मी जान ने उन्हें सब कुछ बता दिया। वो हमें अपने साथ घर ले गए, 1-2 दिन रखा, उन्होंने किराए पर ये घर ले दिया। अम्मी जान ने अपने कानों के कुंडल और पैरों की पाजेब उतार कर दी और कहा, इस सब को बेचकर 1 महीने का किराया दे देना, गैस का छोटा सिलेंडर और ज़रूरी सामान जैसे लोटा बाल्टी वगैरह है ये खरीद कर, और कुछ राशन वगैरह का इंतज़ाम कर दें। उन्होंने सारा सामान खरीद दिया और कुछ पैसे जो बचे थे वो अम्मी को दे दिए। 1 महीना कट गया, सामान भी ख़त्म हो गया, पैसा भी ख़त्म। 2 दिन हम दोनों भूखे प्यासे पड़े रहे, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं था। हमने अम्मी से कहा, हम सड़क पर जाकर कुछ मांग लाएं, अम्मी ने मना कर दिया। दोपहर में अम्मी की जब आंख लग गई तो हम चुपके से बाहर निकल आए। पास में मस्जिद थी, जोहर की नमाज हो रही थी, हम मस्जिद के दरवाजे पर बैठ गए। हमसे मांगना तो आता नहीं था, नमाजियों के आगे हाथ फैला दिया, सब ने कुछ ना कुछ दिया। पहले दिन की भीख में हमें 40 रुपये मिले। खाना खरीद कर घर ले आए, अम्मी जान दरवाजे पर परेशान खड़ी थी, हमें देखते ही बरस पड़ी। हम उनको लेकर अंदर आए, उन्हें सब कुछ बता दिया और किसी न किसी तरह उनको खाना खिला दिया। इस तरह हमने भीख मांगनी शुरू की। आप घर चलिए बेटा, आज हमें काम है, हम फिर किसी दिन चलेंगे। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम निशात मरियम है। आप घर चलिए, वरना अपना नोट ले लीजिए। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। अम्मी की पिटाई से डर रही हो तो हम इसके बदले छोटे नोट दे देंगे। मुझे घर का पता बता दो, मैं कल खुद ही तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। पता तो मुझे भी मालूम नहीं है, मैं कल को इसी टाइम इसी जगह मिल जाऊंगी। खुदा हाफिज़ कहकर निशात घर पहुंची। दिल में खुश हो रही थी, लेकिन घर पहुंचने पर उसकी सारी खुशियां काफूर हो गईं। अम्मी ने डांट लगाई और तमाचे लगाए, बताइए पैसे किसने दिए, ये निषाद ने सब कुछ बता दिया। बेटा, हर ऐर गैरा को अपनी परेशानी या दुख नहीं बताते हैं, इस तरह हमारी रही सही इज्जत भी ख़त्म हो जाएगी। अम्मी, मुझे और मान लीजिए, पर बाबूजी को कुछ ना कहिए। अब्बू के बाद आज उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है कि अगर मैं बड़ी होती तो उनको भाई बना लेती, पर मैं बच्ची हूँ तो मैं उन्हें अपना

0: कलामी शायर के तहत अभी आप समाअत फरमा रहे थे अब्दुल नईम खां से उनका कलाम। सामिन, इसी के साथ अब आकाशवाणी के रामपुर मरकज से अपनी मेजबान आयशा राहत को दीजिए इजाजत।
1: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्स और FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष साप्ताहिक समाचार बुलेटिन समाचार दर्शन।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जिनके जरिए वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। इस अवधि में जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। प्रस्तुत है एक विशेष रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल सबसे अधिक समय तक देश के प्रधानमंत्री पद पर रहने का गौरव प्राप्त होगा। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। श्री मोदी की अगुवाई में किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण,

0: लोक कल्याण और मध्यम वर्ग के हितों को लेकर कई महत्वपूर्ण पहल की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पिछले 12 वर्षों में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई आवश्यक कदम उठाए गए।
1: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है।
0: महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए।
1: साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1,00,000 रूपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है।
0: श्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सदैव प्रतिबद्ध रही है।
1: सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12,00,000 रूपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुँचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं।
0: कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के चक्र में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने उल्लेखनीय कदम उठाए हैं।
1: 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा 2017 में GST लागू किया गया जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई जिससे कारोबार करना आसान हो गया। वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। एक रिपोर्ट।
2: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में मिली 12 साल की उपलब्धियों पर चर्चा करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित केंद्र सरकार के कई मंत्री

0: गण अलग अलग स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने लखनऊ के कैंट विधानसभा क्षेत्र के मंडल एक में 7 जून को आयोजित प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ी है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच रहा है। श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ रक्षा उत्पादन और अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र बन रही है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भी इसी दिन कानपुर देहात के अकबरपुर में प्रबुद्ध वर्ग से संवाद किया और प्रदेश सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर चर्चा की। श्री चौधरी ने पार्टी के जिला कार्यालय में संगठनात्मक बैठक कर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से भी संवाद किया और संगठन से मजबूती के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया।
1: भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव काम करता रहा, 365 दिन काम करता है, चुनाव हो या चुनाव ना हो। यह सही है कि चुनाव जब आता है तो थोड़ा सा और रणनीति चेंज करनी, और मुझे पूरा विश्वास कि अपने कार्यकर्ताओं के बल पर और जो 12 साल तक प्रधानमंत्री जी ने काम किया है और जो 10 साल तक योगी जी ने काम किया है।
0: केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी 7 जून को ही वाराणसी में पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों, गरीबों, महिलाओं और युवाओं का विकास हो रहा है।
2: मोदी जी का नेतृत्व सबको साथ में ले जाने वाला नेतृत्व है, देश विकास का नेतृत्व है। किसान है, गरीब है, महिला है, युवा है, सबको न्याय देने वाला उनका नेतृत्व है, उनके पास मेजोरिटी है।
0: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भी अपने विभिन्न कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों के बारे में चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री ने 2 जून को कुशीनगर जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि डबल इंजन सरकार ने विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण तैयार किया है। श्री योगी ने कहा कि सरकार अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए कार्य कर रही है।
3: मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सत्ता की बागडोर भारत के उस समय के लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सौंपी। पिछले 12 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके कार्य प्रारंभ हुआ।
0: प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 7 जून को आगरा में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 जून को सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने का गौरव मिलने पर बधाई दी।
4: मैं इसकी माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं और यह देश के लिए गौरव की बात है। और अभी हम मानते हैं कि 2029 तक ही नहीं, आगे भी अभी कई चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही हम सबका नेतृत्व करेंगे और देश को विकसित बनाएंगे, विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी मिर्जापुर जिले में 7 जून को आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
5: समाचार दर्शन के संक में आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का यह अंक। संपादन प्रेम चंद्र गुप्ता और वाचन वेद प्रकाश पाठक।
6: ये आकाशवाणी का गोरखपुर।
7: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
8: खाद्य सुरक्षा पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े आपस में।

0: निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। पुदुचेरी में मंत्रिमंडल विस्तार के तहत राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री की सलाह पर 3 नए मंत्रियों की नियुक्ति की है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के विधायक पी राजवेलु और वीपी शिवा कोलुंधु तथा भाजपा विधायक जीएनएस राजशेखरन को पुदुचेरी सरकार में मंत्री नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति शपथ ग्रहण के बाद प्रभावी होगी। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुई आग की दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का भी आभार व्यक्त किया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता ओपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली थी। हादसे की जांच जारी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। यह शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। अमेरिका में भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। H-1B वीजा के जरिए अमेरिकी कंपनियां दुनिया भर में कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित भी हो सकती है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने उलगुलान आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता का स्वर बुलंद किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में लू चलने की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। और खेलों में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाते गुनगुनाते।

कार्यक्रम का आगाज करते हैं अखियों के झरोखों से, फिल्म के इस गीत के साथ जिसे सुरों में पिरोया है हेमलता ने।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में आप ये गीत सुन रहे थे, यस बॉस फिल्म से। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। फिल्म का नाम साजन।

0: साजन फिल्म से आप ये गीत सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। श्रोताओं, कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: जब दिल ने किसी को याद किया हो, जब कोई धुन दिल में उतर गई हो और कभी किसी को सुनाना हो कोई गीत, तो बस आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश लेकर आ रहा है आपके दिल की आवाज, जहां आपके प्यार भरे संदेश और आपके पसंदीदा गीत बनेंगे किसी की मुस्कान। तो उठाइए फोन, कीजिए हमें कॉल हर शनिवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0551-220-5386 और आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं हर रविवार 10:05 पर। हमें रहेगा आपका इंतजार, जहां दिलों की दूरियां गीतों से मिटती हैं।

महालक्ष्मी अय्यर और उदित नारायण की आवाज़ों में आप ये गीत सुन रहे थे टेशन फिल्म से। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम सलामे इश्क़।

केके की आवाज़ में आप ये गीत सुन रहे थे काइट्स फिल्म से। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं किस्मत कनेक्शन फिल्म से। आवाजें हैं आतिफ असलम और अलका याग्निक की।

अजय और श्रेया घोषाल की आवाजों में आप ये गीत सुन रहे थे सिंघम फिल्म से। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं तुलसी कुमार और केके की आवाजों में, फिल्म का नाम रेडी।

0: जब दिल ने किसी को याद किया हो, जब कोई धुन दिल में उतर गई हो और कभी किसी को सुनाना हो कोई गीत, तो बस आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश लेकर आ रहा है आपके दिल की आवाज, जहां आपके प्यार भरे संदेश और आपके पसंदीदा गीत बनेंगे किसी की मुस्कान। तो उठाइए फोन, कीजिए हमें कॉल हर शनिवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0551-220-5386 और आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं हर रविवार 10:05 पर। हमें रहेगा आपका इंतजार, जहां दिलों की दूरियां गीतों से मिटती हैं।
1: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
2: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाए, यही है हमारी पहचान।
1: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
2: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।
3: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
4: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
3: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
4: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
3: हमारा फोन नंबर है 2202-4075 या 2288-6016 और STD कोड 022।
4: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
5: श्रोताओं, कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवाते हैं भाग मिल्खा भाग फिल्म से। इस गीत को लिखा है प्रसून जोशी ने, धुन बनाई है शंकर एहसान लॉय ने और सुरों में पिरोया है जावेद बशीर ने।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार, विज्ञापनों के माध्यम से
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें, 8700014242।
5: आपकी पसंद आपका गाना और आवाज होगी आपकी। जी हाँ, आकाशवाणी का सबसे चहेता प्रोग्राम हेलो फरमाइश अब आप सुनेंगे हर रविवार प्रातः 10:05 पर। कर लीजिए तैयारी, क्योंकि हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच होगी हमारी रिकॉर्डिंग। तो देर किस बात की, अभी उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0551225386। 0551 हमारा STD नंबर है गोरखपुर का। नंबर एक बार फिर से 2205386। अपनी फरमाइश हमें बताइए और जुड़िए आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। कॉल करना भूलिएगा मत, हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच।
0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
6: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी

और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: आकाशवाणी के साथ लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details, log on to www.ddindia.com।
3: आपकी पसंद आपका गाना और आवाज होगी आपकी। जी हाँ, आकाशवाणी का सबसे चहेता प्रोग्राम हेलो फरमाइश अब आप सुनेंगे हर रविवार प्रातः 10:05 पर। कर लीजिए तैयारी क्योंकि हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच होगी हमारी रिकॉर्डिंग। तो देर किस बात की, अभी उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0551220538। 0551 हमारा STD नंबर है गोरखपुर का। नंबर एक बार फिर से 2205386। अपनी फरमाइश हमें बताइए और जुड़िए आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। कॉल करना भूलिएगा मत हर शनिवार दोपहर 11 बजे से 12 बजे के बीच।

इस गीत के साथ ही समाप्त होती है हमारे आज के लोक रंग कार्यक्रम लोकगीतों का। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब से कुछ ही देर में हम सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

आपकी पसंद आपका गाना और आवाज होगी आपकी। जी हाँ, आकाशवाणी का सबसे चहेता प्रोग्राम हेलो फरमाइश अब आप सुनेंगे हर रविवार प्रातः 10:05 पर। कर लीजिए तैयारी क्योंकि हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच होगी हमारी रिकॉर्डिंग। तो देर किस बात की, अभी उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0551220 5386 0551 हमारा STD नंबर है गोरखपुर का।

0: नंबर एक बार फिर से 2205386। अपनी फरमाइश हमें बताइए और जुड़िए आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। कॉल करना भूलिएगा मत, हर शनिवार दोपहर 11 बजे से 12 बजे के बीच।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है। मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

होके मायूस ना, यूं शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए। नमस्कार, आज की गीतांजलि कार्यक्रम के साथ मैं सौम्या दीक्षित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ।

अभी आपने सुना जन्नत फिल्म से गीत। जिंदगी एक गीत है, इसे प्यार से गुनगुना लो। गमों के बादल भी छाए तू जरा सा मुस्कुरा लो। सांसों की सरगम पर एक नया गीत तुम बना लो।

अभी आपने सुना सलामे इश्क फिल्म से ये गीत। सिंगर थे कैलाश खेर, लिरिक्स थे समीर की, म्यूजिक थे शंकर महादेवन एहसान लॉय की। संगीत की धुनों पर थिरकती है जिंदगी, गीतों की लय पर मचलती है जिंदगी। सागर की लहरों पर यौवन का जोश, क्यों कर कहां अभी जीवन को होश।

इस गीत के साथ ही समाप्त होती है हमारे आज के फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। दिन के 12 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आप सबको विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका और मन्नत जी ने। लिखते हैं
3: मानव की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती
2: जी।
3: एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जाग जाती है। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए।
2: धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
3: तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगहत परवीन अब्बासी शाहनवाज अब्बासी सरफराज अब्बासी।
2: कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी।
3: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा प्रकाश अरोड़ा चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है
2: सप्रेम नमस्ते जी। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे पेड़ पौधे लगाना पक्षियों को दाना खिलाना डायरी लिखना और दादा दादी नाना नानी के यहाँ जाना कार्य कर सकते हैं।
3: आगे आप लिखते हैं सर अजीत

0: जी और मैडम विमलेश जी, उमंग कार्यक्रम में गर्मी से संबंधित विषय पर जानकारी एवं जो अन्य कार्यक्रम सुनाए जा रहे हैं बेहद पसंद आ रहे हैं। कार्यक्रम सुनकर गर्मी में भी दिल को ठंडक का एहसास हो रहा है
1: जी।
0: आपने यहीं पर विराम नहीं दिया, आपने आगे लिखा है,
1: भारत के वीर सेनानियों पर आधारित कार्यक्रम की श्रृंखला वीर गाथा उमंग कार्यक्रम में सुनवाई जा रही है वो प्रशंसा योग्य है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी एवं लांस नायक अलवर टिक्का जी पर केंद्रित कार्यक्रम सुनकर हमारी आंखें नम हो गईं। कार्यक्रम बेहद पसंद आया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए समस्त उमंग टीम का हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को। और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए।
0: तो विमलेश जी, अब ये बताइए कि ये भी जानिए श्रृंखला में आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा?
1: अजीत जी, इस सप्ताह हम पूरे विश्व परिवार की अनेक रोचक परंपराओं की चर्चा करेंगे
0: जी।
1: आज की चर्चा का विषय होगा जापान का चाय समारोह, इसे टी सेरेमनी भी कहा जाता है।
0: हुँ?
1: और जापानी भाषा में इसे चानू यू कहते हैं। ये दुनिया की सबसे सुंदर और अनुशासित परंपराओं में से एक है
0: जी। हाँ श्रोताओ, जापान की चाय परंपरा केवल चाय पीना नहीं लेकिन सम्मान, शांति, अनुशासन और व्यवहार की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो आइए जानते हैं विमलेश जी से कि ये परंपरा जापान में कब शुरू हुई।
1: जी अजीत जी, हम सब जानते हैं कि चाय की शुरुआत चीन से हुई है। 9वीं शताब्दी की बात है जब कुछ बौद्ध भिक्षु चीन से चाय की पौध लेकर जापान आए।
0: हुँ?
1: और तब चाय का प्रचलन जापान में भी शुरू हुआ।
0: लेकिन विमलेश जी, ऐसी कौन सी बातें हैं जो जापानी चाय समारोह को इतना विशेष बनाती हैं कि हम उसकी चर्चा कर रहे हैं?
1: जी अजीत जी, जापान में चाय पीना एक विशेष अर्थ रखता है।
0: जैसे?
1: जैसे कि वहाँ चाय पीना एक औपचारिक और सामान्य बात नहीं है। इस समारोह में बहुत सी बातों का खास ध्यान रखा जाता है। आइए अपने श्रोताओं को कुछ जापानी शब्दों से भी परिचित कराते हैं जो वहाँ की चाय परंपरा को खास बनाते हैं।
0: जी सचमुच, चाय पीने के संदर्भ में इन जापानी शब्दों को जानना बड़ा रोचक रहेगा।
1: अजीत जी, भिक्षुओं ने इसे आध्यात्मिकता से जोड़ दिया और इसके कुछ नियम बनाए।
0: तो क्या क्या नियम है इसके?
1: जापान का चाय समारोह चार मूल सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत है वा।
0: वा यानी
1: हारमोनी या सामंजस्य।
0: और दूसरा शब्द क्या है?
1: दूसरा शब्द है केई।
0: जी
1: यानी रिस्पेक्ट या सम्मान।
0: और श्रोताओ, तीसरा शब्द है सेई यानी पवित्रता या प्यूरिटी। और चौथा शब्द है याकू यानी आंतरिक शांति या इंटरनल पीस।
1: श्रोताओ, इन चार सिद्धांतों पर टिकी है जापानी चाय परंपरा, जिससे हम स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी अर्थपूर्ण है। तो अजीत जी, अब करते हैं साझा कुछ और रोचक बातें जो जापानी चाय परंपरा में अनिवार्य मानी जाती हैं।
0: जी हाँ, तो श्रोताओ, चाय समारोह में अतिथि सर झुकाकर अभिवादन करते हुए चाय का कटोरा दोनों हाथों से लेते हैं। ये सम्मान दर्शाने का प्रतीक है
1: जी। एक और खास बात ये है कि इस परंपरा में अतिथि चाय का कटोरा लेकर कटोरे को मेजबान की तरफ देकर हाथ को हल्का सा घुमाता है। इस कार्यक्रम में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि अतिथि कहाँ बैठेंगे, उन्हें कैसे आराम दिया जाए, ये भी ध्यान दिया जाता है कि प्याला कैसा होगा।
0: जी, और अब एक जानकारी और आपको दे दें कि समारोह का आयोजन पारंपरिक तौर पर कहाँ होता है।
1: ये समारोह अक्सर एक शांत टी हाउस या चाय कक्ष में होता है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। फर्श पर परंपरागत चटाई बिछी होती है, बाहर छोटा सा बागीचा भी हो सकता है। चाय घर या कक्ष को जापानी में चा शित्सु कहा जाता है। पारंपरिक रूप से चाय पार्टी में किमोना पहना जाता है। चाय कक्ष के मार्ग में रंगीन छोटे छोटे पत्थर मार्गदर्शक के रूप में लगाए जाते हैं।
0: यानी कुल मिलाकर ये चाय समारोह हो सादगी, विनम्रता और प्रकृति के सौंदर्य का मेल कहा जा सकता है
1: जी।
0: विमलेश जी, हमने ये तो बताया ही नहीं कि जापानी चाय समारोह में कौन सी चाय परोसी जाती है।
1: अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे श्रोताओं। इस समारोह में माचा चाय दी जाती है। ये चाय की हरी पत्तियों को पीसकर पाउडर की तरह बनाई जाती है। जहाँ तक इसके स्वाद की बात है, स्वाद थोड़ा कड़वा हो सकता है।
0: कड़वा हो सकता है, तो इसीलिए सबसे पहले एक जापानी मिठाई दी जाती है जिसे वागाशी के नाम से जाना जाता है। पूरे जापान में ये मिठाई बहुत ही लोकप्रिय है। और श्रोताओं, एक खास बात आपको बताएं, प्रत्येक मिठाई बिल्कुल कलात्मक दिखाई देती है
1: जी। तो श्रोताओं, जापान की चाय परंपरा हमें सिखाती है कि चाय पीना मात्र चाय पीना ही नहीं है बल्कि वर्तमान क्षण को पूरी शांति और सुंदरता के साथ जीना है।
0: तो ये चाय समारोह हमें संदेश देता है कि साधारण सी चीज यानी एक कप चाय भी सम्मान, परस्पर सामंजस्य और व्यस्त जीवन में गहरी शांति का अनुभव बन सकती है।
1: जी, तो श्रोताओं कैसी लगी हमारी जानकारी ये जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
0: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं।

0: हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
1: और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: जी, तो चलिए अब रुख करते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है संवदिया।
0: ये कार्यक्रम हमें उस समय की याद दिलाता है जब इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम नहीं थे। उन दिनों में संवाद या कोई सूचना लेकर जाने वाले को संवदिया कहा जाता था। संवदिया मात्र संदेश या पत्र वाहक ही नहीं थे, लेकिन समाज के महत्वपूर्ण सेतु थे जो एक दूसरे को जोड़ते थे। कार्यक्रम एक मार्मिक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
2: आजकल तो घर बैठे ही कहीं से कहीं खबर भेज सकते हैं और वहां का कुशल संवाद मंगवा सकते हैं। फिर आज बड़ी हवेली से, बड़ी बहुरिया की ओर से हरगोबिंद संवदिया की बुलाहट क्यों हुई?
3: हाँ, लो आ गई बड़ी हवेली। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी ना मालूम हो, परेवा पंछी तक न जाने। हाँ। पाए लागू बड़ी बहुरिया।
4: आ गए भैया।
3: हाँ।
4: लो ये पीढ़ी सरका लो, कुछ देर बैठ जाओ।
3: बड़ी हवेली तो अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है, जहां नौकर नौकरानियों की भीड़ लगी रहती थी। आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर भटक रही है। ओह, कहां गए वो दिन। बड़े भैया क्या गए, जैसे सब खेल खत्म।

0: तीनों भाइयों ने आपस में झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दखल कर लिया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया। कहां जाती बेचारी? अरे ये मुदियाइन बूढ़ी काकी काहे बड़बड़ा रही है?
1: आए देखो बड़ी बहुरिया, उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है, पर दाम देते समय कड़वा। मैं तो आज दाम लेकर ही उठूंगी यहाँ से। हाँ।
2: अरे मोदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का ये काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है।
1: क्या कहा? काबुली कायदा? फिर काबुली का नाम लिया तो अच्छा ना होगा, कहे देती हूँ। हाँ
2: लो।
1: देखो जी, मैं फिर आऊंगी और अब की बार उधार लिए बिना हिलूंगी नहीं यहाँ से, कहे देती हूँ। बड़े आ जाते हैं उधार लेने, मांगने जाओ तो वापस नहीं करते।

0: हर गोविंद भाई, हाँ, तुमको एक संवाद ले जाना है आज ही। बोलो, चाहोगे ना?
1: कहाँ बड़ी बहुरिया?
0: मेरी माँ के पास।
1: माँ के पास? कहिए, क्या संवाद है?
0: माँ से कहना मैं भाई भाभियों की नौकरी कर अपना पेट पालूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए, किसके लिए?
1: बड़ी बहुरिया,

0: इंतजाम करोगे। और सुनो, लगता है सुनते ही भैया तुम्हारे साथ आ जाएंगे।
1: अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैं इंतजाम कर लूंगा बहुरिया, आप फिक्र मत करिए। ये नोट रखिए,
0: अरे
1: हारे गाढ़े काम आएंगे। अच्छा, मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही निकल जाऊंगा।
0: अच्छा, मैं तुम्हारी राह देखती रहूंगी।
1: हाँ, हाँ, अच्छा चलता हूँ।
0: अच्छा,
2: संवाद यानी संदेश पहुंचाने का काम सहज नहीं होता। प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से सुनाना बहुत कठिन है। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव गांव संवाद पहुंचाए उसको और क्या कहेंगे, निठल्ला, कामचोर, पेटू और क्या क्या नहीं। पर सच ये भी है कि गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहु बेटी का संवाद हरगोबिंद ने नहीं पहुंचाया है।

0: हर कोबिन भैया, ये 5 का नोट ही बचा है अब, पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी, आने का खर्च माँ से मांग लेना।
1: ना बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर लूंगा।
0: तुम कहाँ से?

0: भाई साहब,
1: हाँ
0: थाना बिहपुर में ये डाक गाड़ी रुकती है या नहीं?
1: अरे भैया, थाना बिहपुर में सभी गाड़ियाँ रुकती हैं।
0: अच्छा अच्छा,
1: हाँ, और मैं भी वहीं पर उतरूंगा।
0: अच्छा,
1: घबराओ मत, बता दूंगा।
0: तो कितना समय और लगेगा?
1: अरे बस थोड़ी दूर है, आने वाला है।

0: थाना बिहपुर पर गाड़ी पहुंची तो हरगोबिंद का जी भारी हो आया। बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाते समय वो अपने कलेजे को कैसे संभालेगा। बड़ी बहुरिया के संवाद रह रह कर उसके कानों में गूंज रहे थे।
1: हरगोबिंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है, किस लिए, किसके लिए? मैं बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं, कब तक जीऊं?
2: बड़ी बहुरिया, हम क्या करें?
0: हरगोबिंद का मन कलपने लगा। गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा? किस मुंह से वो ऐसा संवाद सुनाएगा? ये सोचते सोचते हरगोबिंद गांव पहुंच ही गया।
3: माँ, माँ देखो, हरगोबिंद काका आए हैं।
4: पाए लागू माँ जी।
5: जीते रहो हरगोबिंद बेटा, क्या समाचार है?
4: जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है।
5: मेरी बेटी का कोई संवाद?
4: संवाद? जी संवाद तो कोई नहीं।
5: हाँ?
4: बस मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि चलकर आप लोगों के दर्शन कर लूं।
5: तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो?
4: जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे ही बड़ी बहुरिया ने कहा है कि हाँ, अगर छुट्टी हुई तो दशहरे के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी।
5: सो तो है।
4: अरे छुट्टी मिलेगी तो कैसे, सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही तो है।
5: अरे हरगोबिंद, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर अपनी दीदी को लिवा ला।

0: यहीं रहेगी।
1: अरे वहां अब क्या रह गया है उसका, जमीन जायदाद तो सब चली गई। तीनों देवर भी शहर जाकर बस गए, कोई खोज खबर भी नहीं लेता उसकी। अब तो मेरी बेटी अकेली रह गई है।
2: नहीं नहीं नहीं नहीं माँ जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है। टूट फूट गई है तो भी है तो आखिर बड़ी हवेली, बड़ी बहुरिया का गांव ही परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया, और गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर कैसे जाएगी माँ जी।
1: हाँ सो तो है, चलो अच्छा है। अब बबुआ अब थोड़ा जलपान कर लो।
2: अच्छा अच्छा माँ जी।
1: हर गोबिंद क्या सोच रहे हो, कुछ खाते क्यों नहीं बबुआ?
3: हर गोबिंद ने थाली की ओर देखा। थाली में दाल भात, तीन किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार, इतना सब कुछ। उधर बड़ी बहुरिया का बथुआ साग उबाल कर खाना। हर गोबिंद के मुंह में एक निवाला भी न जा सका। वो सोचने लगा, ये उसने क्या किया, वो किस लिए आया था, वो झूठ क्यों बोला। ये सोच सोच कर रात भर हर गोबिंद को नींद ही नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसकती रही। उसने जी कड़ा किया, वो संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। उसने निर्णय लिया कि वो सुबह उठते ही बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद अक्षर अक्षर सुना देगा। अगले दिन सुबह उठते ही वो माँ जी के पास जा पहुंचा।
2: माँ जी अब आज्ञा दीजिए।
0: अरे
2: मुझे पहली गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अच्छा माँ जी अब पान लागू।
1: जीते रहो बेटा,
2: अब चलता हूँ।
4: क्यों भाई, रहा खर्च तो है।
2: अरे भैया जी आपकी दया से किसी बात की कमी नहीं
4: अच्छा?
2: है।
4: अच्छा
2: अच्छा राम राम
4: राम राम
2: राम, राम।

0: हरगोबिंद के पास तो बस कटिहार तक जाने के पैसे थे। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वो कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है? बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा?
1: कटिहार आ गया। उतर लो। जाना है जलालगढ़। टिकट कटिहार तक का ही है। जलालगढ़ है 20 कोस दूर। हाँ? अरे बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी। पैदल ही चलता हूं। बीस कोस की मंजिल भी भला कोई दूर की मंजिल है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर।

0: हरगोबिंद भाई आ गए? हाय, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ?
1: बड़ी बहुरिया।
0: हरगोबिंद भाई, लो एक घूंट दूध ले लो, मुंह खोलो। हाँ लो, आप पी लो, पी लो। शाबाश शाबाश शाबाश। अब जी कैसा है?
1: बड़ी बहुरिया, मुझे माफ कर दो।
0: कहे?
1: मुझे माफ कर दो,
0: पर
1: मैं तुम्हारा संवाद न कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ।
0: हरगोबिंद भाई,
1: मैं तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, कोई कष्ट नहीं। मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया, तुम सारे गांव की माँ हो। तुम्हारा सब काम करूंगा मैं।
0: हरगोबिंद भाई, तुम
1: मैं अब निठल्ला बैठा नहीं रहूंगा। बोलो बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? नहीं जाओगी ना? नहीं जाओगी ना?
0: नहीं नहीं नहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी।
1: बड़ी माँ,
0: रहूंगी।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम संवदिया। आशा है कि यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर दीजिए।
3: Join together in the Janajatiya Garima Utsav, celebration of pride, aspiration, and the journey towards Viksit Bharat. Inspired by the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, tribal communities move forward with hope, dignity, and determination. Celebrating Janajatiya Garima Utsav 2026, 10th May to 9th June, showcasing progress across every generation towards a stronger, inclusive, and empowered Viksit Bharat.
4: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम जो हमें लेकर जाएगा मरुभूमि यानी
2: मरुस्थल में या रेगिस्तान में
4: जी,
2: और बताएगा विस्तार से रेगिस्तान के बारे में। तो आइए जानते हैं रेगिस्तान या मरुभूमि के बारे में और सुनते हैं कार्यक्रम द डेजर्ट।
5: Those of us who live in regions covered with forests and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls and, therefore, no vegetation grows. It is dry, hot, waterless, and without shelter. But this is not entirely correct. For those who have studied it, the desert can be a beautiful place. It is the home of a variety of people, animals, and plants that have learned to live under very hot and dry conditions. True, the ground is not always hidden by a cover of grass, plants, and trees, as it is in other climates. But whenever it rains, which is rare, desert flowers bloom and the sight can be as rewarding as that of any tropical garden. A desert is not always a flat, unchanging wasteland of dry sand. It may have mountains and hills. It may have an oasis, big or small. An oasis is like a green island in the middle of a desert where a spring or a well gives plants and trees a better chance to grow. A desert may be hot like the Thar or cold like Ladakh, but generally speaking, if a place has little or no water and vegetation, people usually call it a desert. Some deserts

भूख से बेहाल, थकान से चूर, लड़खड़ाता हुआ हरगोबिंद बहुरिया के दरवाजे पर गिर पड़ा।

आपकी पसंद आपका गाना और आवाज होगी आपकी। जी हाँ, आकाशवाणी का सबसे चहेता प्रोग्राम हेलो फरमाइश अब आप सुनेंगे हर रविवार प्रातः 10:05 पर। कर लीजिए तैयारी क्योंकि हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच होगी हमारी रिकॉर्डिंग। तो देर किस बात की, अभी उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0551220 5386।

0551 हमारा एसटीडी नंबर है गोरखपुर का। नंबर एक बार फिर से 2205386। अपनी फरमाइश हमें बताइए और जुड़िए आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। कॉल करना भूलिएगा मत। हर शनिवार दोपहर 11 बजे से 12 बजे के बीच।

0: संगीत ब्रह्मांड को आत्मा देता है, मन को पंख देता है, कल्पना को उड़ान देता है और हर चीज को जीवन प्रदान करता है। संगीत उन भावनाओं को व्यक्त करता है जिन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता।
1: सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है।
0: गाने सुहाने कार्यक्रम के साथ मैं सौम्या दीक्षित आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ।

देश प्रेम एक महान भावना है जो हमें अपने देश के प्रति प्रेम, सम्मान और वफादारी की भावना से भर देती है। ये हमें अपने देश के विकास और समृद्धि के लिए काम करने के लिए प्रेरित करती है और हमें एक बेहतर नागरिक बनाती है।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी फिल्म से गीत उदित नारायण की और साथियों की आवाजों में। लीजिए सुनिए फिल्म गुरु से ये गीत।

आइए सुनते हैं स्वामी फिल्म से गीत। का करू सजनी आईना वालम, इस गीत को आवाज दी है केजे यशोदास, गीतकार हैं अमित खन्ना, संगीतकार हैं राजेश रोशन।

अभी आपने सुना फिल्म सावन को आने दो फिल्म सी है गीत। गायक कलाकार के जे यशोदास, गीतकार फोक जामी, संगीतकार राज कमल।

समीर फिल्म से अभी आपने गीत सुना, किशोर कुमार की आवाज़ थी, मशहूर गीतकार साहिल लुधियानवी और संगीतकार थे सपन चक्रवर्ती। और इस गीत के साथ ही समाप्त होती है हमारे आज की फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने सुहाने। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है, आइए मिलकर आनंद लेते हैं सुगम संगीत का। आज की कलाकार हैं सपना चक्रवर्ती।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: आपकी पसंद आपका गाना और आवाज होगी आपकी। जी हाँ, आकाशवाणी का सबसे चहेता प्रोग्राम हेलो फरमाइश अब आप सुनेंगे हर रविवार प्रातः 10:05 पर। कर लीजिए तैयारी, क्योंकि हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच होगी हमारी रिकॉर्डिंग। तो देर किस बात की, अभी उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0551220538। 0551 हमारा STD नंबर है गोरखपुर का। नंबर एक बार फिर से 2205386। अपनी फरमाइश हमें बताइए और जुड़िए आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। कॉल करना भूलिएगा मत हर शनिवार दोपहर 11 बजे से 12 बजे के बीच।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो। शास्त्री संग...

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत और आज की कलाकार थी सपना मुखर्जी। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। दिन के 1:10 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से इलाकाई खबरें।

0: सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत व्यय वंदन योजना की शुरुआत की। वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। केंद्र सरकार ने नवम्बर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की।
1: वज़ीर-ए-आला सेहत और कुनबे बहबूद जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में वज़ीर आज़म महफूज ज़िंदगी मुहिम के 10 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुल्कगीर इजलास का इफ्तिताह करेंगे। इस स्कीम का खसूसी मकसद बेहद जोखिम वाले हमल का जल्द पता लगाना और फौरी इंतजाम करके माँ और बच्चे की शरह अमवात को कम करना है। इस प्रोग्राम ने पूरे मुल्क में ज़िंदगी की सेहत खदमात को मजबूत बनाने में मदद की है। कौमी इम्तिहान एजेंसी NTA ने 21 जून को मुनक़िद होने वाले नीट UG दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहान के शहरों की फेहरिस्त जारी कर दी है। हमारे नामा निगार ने बताया कि रजिस्टर्ड उम्मीदवार सरकारी वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने इम्तिहान के शहर की जानकारी हासिल कर सकते हैं। और रियासत में तेज़ धूप, शदीद गर्मी और उमस से अवामी जिंदगी मुतासिर है। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने रियासत में कल से कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का इम्कान जाहिर किया है। मशरकी हिस्सों में कल भी तेज़ हवाओं के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज उत्तर प्रदेश के बेशतर हिस्सों में, खसूसी तौर पर लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद और पूर्वांचल में मौसम खुश्क रहेगा और शदीद गर्मी और लू का कहर जारी रहेगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
2: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। इस समय दिन के 1:15 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत। नारी जगत लेकर आ रही हैं लता चंदोला।

पल और यादें दोनों ही कीमती होते हैं। फर्क बस इतना होता है कि पल तो गुजर जाता है, लेकिन यादें हमेशा के लिए साथ रह जाती हैं। इसीलिए हर पल को खुलकर जियो, क्योंकि यही यादों में बाद में बदल जाते हैं। इसी विचार के साथ मैं लता चंदोला आ गई आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम नारी जगत को लेकर। तो सबसे पहले आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपके ही कार्यक्रम में आपका स्वागत। बहनों, जो आज हमारे कार्यक्रम का मुख्य विषय है वो है महिला और बढ़ता शहरी तनाव के साथ उनका संतुलन। आज हमारे कार्यक्रम में जो विषय है बहनों, ये तो आप समझ ही गई कि क्या हो सकता है कि भाई महिलाएं हैं और उनके अंदर जो है शहर के अंदर रहते रहते उनके अंदर तनाव बहुत सारे तरीके के आ जाते हैं। भाई अपने आप को सिद्ध करना है, अपने आप को प्रूफ करना है और साथ ही साथ घर का मैनेजमेंट भी उन्हें करना है। आज की तेजी से बदलते शहरी जीवन में महिलाओं की जिम्मेदारियां लगातार बहनों बढ़ती चली जा रही हैं। घर की देखभाल, बच्चों की परवरिश, नौकरी, सामाजिक दायित्व और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होता। यही कारण है कि कई महिलाएं भाई तनाव, थकान और मानसिक दबाव का सामना कर रही हैं, जो कि शायद उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। शहरी जीवन की भागदौड़, ट्रैफिक, समय की कमी, बढ़ती प्रतिस्पर्धा और डिजिटल दुनिया की लगातार मौजूदगी में तनाव को बढ़ाने वाले बहनों जो कारण हैं वो प्रमुख हैं। यही तनाव लंबे समय तक बने रहे तो इसका प्रभाव शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पे पड़ सकता है। तनाव प्रबंधन के लिए सबसे पहले महिलाओं को अपने स्वास्थ्य को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। नियमित व्यायाम, योग, ध्यान मन को शांत रखने में मदद करते हैं। प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट शारीरिक गतिविधियां करने से तनाव कम होता है और ऊर्जा भी बनी रहती है। पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण जो नींद होती है वो हमारे लिए बहुत जरूरी होती है, क्योंकि मनुष्य का जो है ना वो सारा का सारा हार्मोनल जो बैलेंस है वो हमारी, यदि हमारा दिमाग शांत है और हम अच्छी नींद अगर ले रहे हैं तो उस पर निर्भर करता है। देर रात तक एक सिस्टम बन गया है, मोबाइल या लैपटॉप को लेकर बैठे रहना या अपना काम करना, तो एक समय निश्चित कर दीजिए कि हमको इस समय के बाद ना हमें मोबाइल छूना है ना हमें लैपटॉप को छूना है। हमें थोड़ा समय अपने लिए

निकालना चाहिए। संगीत सुनना, पुस्तक पढ़ना, बागवानी करना या कोई भी ऐसा पसंदीदा शौक जो हमारे मन को प्रसन्न करता है, वो हमें करना चाहिए। इसी के साथ साथ जो लगातार काम करने के बाद जो हमारे अंदर स्ट्रेस, जो हमारे अंदर तनाव आ जाता है ना, वो छोटे छोटे यदि हम विराम ले लें उससे, तो उससे भी हमें मानसिक शांति मिलती है। परिवार और मित्रों से खुलकर बात करें, अपनी भावनाओं को साझा करें। बहनों, ये देखने में आ रहा है ना कि हम मीडिया से जुड़े हैं, मीडिया के थ्रू तो हम सारे लोगों का हालचाल ले लेते हैं, देख भी लेते हैं कि कौन कहाँ गया है, कहाँ घूम रहा, कैसा है, लेकिन वास्तविक में हम लोग बात करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। वहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग हेजिटेट होते हैं। भाई, अब परिवार हैं, मित्र हैं, तो हेजिटेशन कैसा, खुलकर बात करें। उसके बाद आती है बहनों बारी संतुलित आहार की। यदि हम संतुलित आहार नहीं लेंगे, हमारा जैसे बोला जाता है ना कि जैसा अन्न वैसा मन, यदि हमारा मन अगर शांत नहीं होगा और हमारा आहार अच्छा नहीं होगा, तो हमारा जो है मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी बात यह है कि महिलाएं स्वयं से अत्यधिक अपेक्षाएं रखने लगती हैं। हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे, हमें ये भी आता है, हमें वो भी आता है, ये कहने की जो आदत है ना, अपने आप को पूर्णता सिद्ध करने की, पूर्ण, आई एम कंप्लीट, ये जो सिद्ध करने की भावना है, इससे जो है दबाव जो है बढ़ता ही चला जाता है। तो अपनी सीमाओं को समझें और आवश्यकता पड़ने पर सहायता लेने से भी संकोच ना करें। परिवार के लोगों से घर के काम का प्रबंधन आप कुछ छोटी छोटी सी प्लानिंग करके कर सकती हैं। रात में जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, सुबह के नाश्ता खाने की तैयारी एक दिन पहले ही कर लें, रविवार के दिन ही पूरे हफ्ते के कपड़े जो हैं वो प्रेस करके रख लें। कोशिश करें कि घर का मेन्यू जो है वो भी एक दो दिन पहले ही बना लें कि भाई सुबह क्या बनेगा, शाम को क्या बनेगा, दोपहर में क्या बनेगा। तो ये जो एक स्ट्रेस अनावश्यक आता है ना कि भाई इस समय सुबह में नाश्ता क्या बनेगा, दोपहर में खाना क्या बनेगा, रात में क्या बनेगा, ये हमें नहीं होगा। और उससे भी बड़ी बात है कि कुछ लोगों के अंदर एक टेंडेंसी ये भी होती है कि हम अपने घर में किसी तरह का हेल्पर नहीं लेते, या हम अपने खाना किसी और से नहीं बनवाते, हम इनसे बनवाते हैं, हम उनसे बनाते हैं, हमें पसंद नहीं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए भाई। ये अगर हम काम कर रहे हैं, वर्किंग वूमेन हैं, शहर में रह रहे हैं, तरह तरह की जिम्मेदारियाँ हम यदि निभा रहे हैं, तो हमको सहायकों से सहायता लेने में भी हर्ज नहीं करना चाहिए। घर के सभी सदस्यों से उनकी आयु के अनुसार कामों को भी बांट कर रखना चाहिए और उनसे भी सहायता लेने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए। बहनों, कभी कभी दिल कुछ ऐसे एहसासों को महसूस कर लेता है जिन्हें शब्दों से बयां करना आसान नहीं होता। मन में एक अनकहा विश्वास, किसी अपने के लिए एक खास भावना और भविष्य के सुनहरे सपनों की हल्की सी आहट, यही भाव लिए हुए सदाबहार गीत फिल्म है घरौंदा, तुम्हें हो ना हो मुझको तो।

बहनों, वाकई में गीत तो बहुत प्यारा था कि भाई हमें तो है आपसे प्यार, अब आपको है कि नहीं ये आप जानिए और समझिए। बहनों, अब हम लोग थोड़ा सा जो है अपनी हेल्थ की भी बातें कर लेते हैं महिलाओं की। 10 मिनट की जो ब्रीथिंग है वो उसको हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, जो हम थोड़ा सा एक्सरसाइज करें अपनी सांस का प्रबंधन करने की, खास सारी चीज़ों का प्रबंधन तो हम लोग कर लेते हैं लेकिन क्या अपने हेल्थ का सही प्रबंधन हम कर पाते हैं? नहीं। और ये चीज़ों का में थोड़ा सा हम जो लापरवाही कर जाते हैं ना, इसका नतीजा हमको आफ्टर 45 ईयर हम लोग को पता चलता है। सांस लेना हमारे जीवन का आधार है लेकिन हम में से अधिकांश लोग अपनी सांसों पर ध्यान नहीं देते। जब हम कुछ मिनटों के लिए गहरी और नियंत्रित सांस लेते हैं तो शरीर और मन दोनों को लाभ मिलता है। नियमित ब्रीथिंग अभ्यास से शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है जिससे ऊर्जा का स्तर बढ़ता है और थकान भी कम हो जाती है। इसके अलावा ब्रीथिंग रूटीन से तनाव भी कम होता है और एकाग्रता बढ़ती है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा मन बहुत चंचल हो जाता है, या तो नींद नहीं आती है, कोई विचार चलने लगता है, कभी कभी दिमाग में कोई चीज़ ऐसी चलने लगती है भाई किसी के बच्चे बाहर हैं, किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई की चिंता, घर की चिंता, परिवार की चिंता, घर के सदस्यों की चिंता, ये जब विचार जब हमारे दिमाग में आने लगते हैं ना तो हमारी नींद घट जाती है। तो आप लोग कोशिश करके देखिए, यदि उस समय में गहरी गहरी सांसें अगर लेंगे तो देखिए आप थोड़ी ही देर में आपको जो है नींद बहुत आराम से आ जाएगी। नियमित ब्रीथिंग रूप से चिंता और बेचैनी भी कम होती है। यह हृदय गति को संतुलित रखने और रक्तचाप को भी नियंत्रित करने में भी सहायक होते हैं। जैसे कभी कभी बीपी हाई हो जाता है किसी किसी का, यदि उस वक्त हम नापें तो देखिए हमारी हार्ट बीट्स भी उस वक्त बढ़ी रहेगी और बीपी भी हमारा बढ़ा आएगा। लेकिन थोड़ी ही देर अगर हम गहरी सांस ले लें, गहरी सांस लेने के बाद अगर हम बीपी अपना नापते हैं तो देखिए हमारा जो है बीपी सामान्य हो जाएगा। सोने से पहले 10 मिनट की ब्रीथिंग और अच्छी गहरी नींद में जो है ये सहायक होती है। गुस्सा, घबराहट और नकारात्मक भाव

को भी ये नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करती है। फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाती है। दिन की शुरुआत और समापन 10 मिनट ब्रीथिंग रूटीन से करें तो हमारा दिल बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो आइए आज से अपनी दिनचर्या में 10 मिनट के लिए ब्रीथिंग रूटीन को शामिल करें और स्वस्थ शरीर के साथ साथ प्रसन्न मन की ओर कदम बढ़ाएं। भाई, हंसी खुशी और उलझन इंतज़ार और मीठी सी तकरार, ये सब प्यार के खूबसूरत रंग होते हैं, जिसे आपने महसूस तो किया ही होगा। इन्हीं नाजुक जज्बाजों और बड़ी खूबसूरती से बयां करता हुआ अगला गीत, तो आइए सुनते हैं। प्यार की इसी सुहानी दुनिया में कदम रखते हैं और सुनते हैं ये गीत।

बात करेंगे दिन भर में थोड़े छोटे छोटे से जो ब्रेक हम लेते हैं वो हमें कैसे ऊर्जा से भर देते हैं। आजकल बच्चे भी घर पे हैं और कुछ जो महिलाएं हैं भाई शिक्षिकाएं हैं वो लोग भी घर पर हैं, उनकी भी छुट्टियां चल रही गर्मी की। तो क्या हो रहा है आप लोग खुद ही देख रहे होंगे भाई, सुबह उठे, नाश्ता पानी किया, फिर थोड़ा सा आराम किया, फिर थोड़ा सा अपना काम निपटाया और खाना खाया, फिर थोड़ा सा आराम किया, फिर शाम की चाय पानी के बाद फिर थोड़ा सा आराम किया। तो देखिए ना, खुद आप अपने आप को तरोताज़ा महसूस कर रही होंगी। भाई आजकल की व्यस्त जीवन शैली में हम अक्सर घंटों तक लगातार काम करते रह जाते हैं। हमें लगता है कि बिना रुके काम करना से जो है हम अधिक से अधिक काम कर लेंगे, लेकिन वास्तव में क्या ऐसा है? नहीं है, क्योंकि विशेषज्ञों का भाई मानना है कि दिन भर में काम के बीच में यदि हम छोटे छोटे से ब्रेक ले लें तो हमारी कार्य क्षमता और स्वास्थ्य दोनों में बहुत ज़्यादा भाई फायदा करता है ये सारी चीज़ें। लगातार काम करने से मस्तिष्क थकने लगता है, एकाग्रता में कमी आ जाती है और जो निर्णय लेने की क्षमता होती है ना वो भी डगमगाने लगती है। ऐसे में छोटा सा ब्रेक या नैप कार्य क्षमता को बढ़ाती है, मानसिक थकान इससे कम हो जाती है, एकाग्रता बढ़ती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना कि अपने आप को परफेक्ट दिखाने की जो चाहत है वो भी कभी कभी हमको लगातार काम करने के लिए जो है वो प्रेरित करती रहती है। तो उस प्रेरणा को थोड़ा सा ब्रेक भी दीजिए भाई, क्योंकि ज़िंदगी हमारी भी एक ही है, हमको भी एक ही बार मिली है, जीना भी हमें एक ही बार है, तो क्यों ना हम उत्साह के साथ जिए और अपने जो है कार्य क्षमता में सुधार करते हुए जिए। तो जो छोटे छोटे से ब्रेक अगर हम लेंगे ना वो हमें ज़रूर इस चीज के लिए प्रेरित करेंगे। तनाव कम और आंखों को आराम भी मिलता है, इससे रचनात्मक सोच बढ़ती है। यदि हमने थोड़ा सा आराम कर लिया, रेस्ट कर लिया ना, तो देखिए कभी कभी हम बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटिव काम कर जाते हैं। कब अभी इस समय छुट्टी चली रही है और अगर हम छोटे छोटे से ब्रेक लेके काम करेंगे तो हमारा मूड भी अच्छा रहेगा। तो हम ऐसे काम भी कर सकते हैं जो कि हम जब हम वर्किंग रहते हैं और मन करता है कि भाई इस समय में हम करें और लेकिन कर नहीं पाते, अपने शौक उनको हम पूरा नहीं कर पाते। और इस तरीके से करने से क्या होता है ना, हमारी गलतियाँ भी जो है कम होती हैं। याद रखिए कि काम लगातार करना एक अच्छी चीज़ बहुत नहीं मानी जाती है, भाई थोड़ा सा ब्रेक उसमें लेना ज़रूरी है। काम करना सफलता का मंत्र नहीं है, समय समय पर छोटा सा ब्रेक आपकी ऊर्जा, कार्य क्षमता और स्वास्थ्य को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण साधक के रूप में कार्य करता है। मैंने भाई अभी तो हमने आपको गाने सुनाए, लेकिन अगर भारतीय फिल्मों की और संगीत की बातें हों और उसमें चुलबुलापन और मस्ती और देसी अंदाज का जिक्र ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ गीत ऐसे होते हैं जो दशकों बाद भी सुनते ही होठों पर मुस्कान तो आती है और मन थिरकने को, अरे मन क्या, हमारे पैर भी थिरकने को मजबूर कर देते हैं। ऐसा ही सदा बहार नटखट गीत जिसमें छोटी सी बात को इतनी दिलचस्प अदा से बयान किया गया है वो फिल्म है मेरा साया का सुपर हिट गीत, जिसको आवाज़ दी है आशा भोसले ने। आइए सुनते हैं।

बहनों, ये तो हो गई हमारी और आपकी बातें। अब थोड़ी सी समसामयिक बातें। देखिए ना भाई, गर्मी के मौसम में इतनी ज़्यादा भाई गर्मी है कि बहुत सारी समस्याएं भी देखने को मिल रही। जगह जगह कहीं पे भाई दुर्घटनाएं हो जा रही हैं, कहीं पे फ्यूज़ जो है उड़ जा रहा है, कहीं पे लाइट चली जा रही है, घंटों घंटों नहीं आ रही है, कहीं पानी की समस्या, कहीं बहुत तरह की समस्या। और इसका मुख्य कारण है कि हम लोग जो हैं जो लाइट्स है लाइट है उसका प्रयोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। भाई गर्मी के मौसम में एसी जो है हमारी एक बहुत बड़ी ज़रूरत बनता चला जा रहा है, लेकिन अगर उसकी सही देख रेख ना की जाए तो यह ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और इससे कभी कभी आप सुनी रही होंगी, जानी रही होंगी, कभी कभी ब्लास्ट भी हो जाते हैं जिससे आग लगने का खतरा भी बन जाता है। बिजली की खपत बढ़ सकती है और खराबी आकर आग लगने का डर तो बना ही रहता है। तो अगर हम छोटी छोटी सी बातों का ख्याल रखें तो हम अपने एसी को भी सुरक्षित रख सकते हैं और खुद को भी। फिल्टर की जो है उसकी नियमित सफाई करते रहें, तापमान बहुत कम ना रखें। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है ना, बहुत कूलिंग पसंद करते हैं, तो ऐसा ना नहीं करें। उससे क्या होता है, एसी पे ज़्यादा जोर तो पड़ता ही पड़ता है, वो हमारे शरीर के लिए भी हार्मफुल होता है। 24 से 26 डिग्री सेल्सियस का तापमान उपयुक्त तो माना जाता है। आउटडोर यूनिट के आसपास पर्याप्त खुली जगह होनी चाहिए। यदि उसके आसपास सामान रखा होगा या धूल जमी होगी तो वो गर्म हवा बाहर नहीं निकाल पाएगा, जिसके कारण एसी जो है वो गर्म हो जाएगा इंटरनली। समय समय पर उसकी सर्विसिंग कराते रहें। अच्छे स्टेबलाइजर का प्रयोग करें, ये नहीं कि सस्ते के चक्कर में किसी भी तरह का स्टेबलाइजर लगा दिया और वो ना करें। उससे क्या होता है कि वो जो मैनेजमेंट होता है लाइट का, वो उस करने में उसको दिक्कत होती है। कमरे की खिड़की और दरवाजों को बंद करके ही एसी चलाएं, इससे एसी पे जो है बहुत प्रेशर नहीं पड़ता। असामान्य आवाज़ या गंध आने पर उसको नज़रअंदाज ना करें, उसकी जो है उस पर ध्यान दें। गैस और वायरिंग की जांच करते रहें। एसी को थोड़ी सी देखभाल ना भाई एसी की अगर थोड़ी सी देखभाल ना की जाए तो वो गर्मी से जो है हमें निजात तो दिलाएगा ही दिलाएगा। यदि थोड़ी सी ख्याल रखें तो वो हमारी बिजली की जो खपत है उसको भी कम करता है और एसी की उम्र भी बढ़ती है। भाई आगे तो हम बढ़ेंगे, लेकिन पहले एक और थोड़ा सा चुलबुला सा गीत सुन लेते हैं।

0: याद रखिए, छोटे छोटे सकारात्मक कदम हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। इसी सोच के साथ आज के कार्यक्रम को अब यहीं पे विराम देती हूँ। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मुस्कुराते रहें। आप सभी को मेरा नमस्कार।
1: अभी बहनें सुन रही थीं अपना कार्यक्रम नारी जगत। कार्यक्रम को लेकर आई थीं लता चंदोला। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। खेती किसानी कार्यक्रम सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
2: जिंदगी बहुत कीमती है,
3: उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना। नींव से लेकर छत तक, भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया। 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
6: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
5: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
6: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
5: डायल कीजिए 8700014242।
6: नंबर एक बार फिर नोट करें, 8700014242।
1: आपकी पसंद, आपका गाना और आवाज होगी आपकी। जी हाँ, आकाशवाणी का सबसे चहेता प्रोग्राम हेलो फरमाइश अब आप सुनेंगे हर रविवार प्रातः 10:05 पर। कर लीजिए तैयारी, क्योंकि हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच होगी हमारी रिकॉर्डिंग। तो देर किस बात की, अभी उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0551220 5386। 0551 हमारा STD नंबर है गोरखपुर का। नंबर एक बार फिर से 2205386। अपनी फरमाइश हमें बताइए और जुड़िए आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। कॉल करना भूलिएगा मत, हर शनिवार दोपहर 11 बजे से 12 बजे के बीच।

0: कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus.
1: For details, log on to www.ddindia.com.
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
0: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
0: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: लीजिए सुनिए खेती की, खेती किसानी बातचीत। विषय है मैंगो मिलीबग की पहचान और बचाव। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अजीत कुमार श्रीवास्तव और आपसे बातचीत कर रहे हैं विनय कुमार।
5: किसान भाई, दुनिया में जितना जीवधारी हुआ वो हमें सबसे ज्यादा संख्या कीट पतंगा कहा। तरह तरह का कीट पतंगा, कीड़ा मकोड़ा, उनका जीवन चक्र समय के अनुसार, मौसम के अनुसार और अलग अलग अवस्था में कैसे पहचानल जा, कौन अवस्था नुकसान करेले, का पहचान हो, कब एकर प्रकोप होई, जब तक यह कुल बातन के आप लोग साझा ना करब, जानम ना, पहचानम ना, तब तक अपने फसल सुरक्षा का कार्य अधूरा रह जाए। आज हमने का ऐसने एक कीड़ा के बारे में बात कही जाई जौना का नाम है मिलीबग। वैसे एके ज्यादातर लोग मैंगो मिलीबग के नाम से जाने ना, लेकिन हम खुद देखली कि ई कीड़ा है तो साग सब्जी में भी और पेड़ पौधन में भी, खास तौर से जब आदमी गमला या जमीन पर चाहे वो गुलाब लगावे, गुड़हल लगावे, गेंदा का पौधा लगावे और तो और बैगन, टमाटर, मिर्चा, कोनो ऐसन फसल नहीं बा जवना के नुकसान न पहुंचावे। पहले तो हमन का ये जाने लिंजा कि ये कीड़ा हुए ना का हा, समझे में ना आवेला, लेकिन समुचित जानकारी देवे आज अपने कार्यक्रम में फोन लाइन से जुड़ल हैं डॉक्टर अजीत कुमार श्रीवास्तव जी। आप हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक उद्यान महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र चौक माफी पीपीगंज जनपद गोरख। डॉक्टर साहब, हमनी का कुछ अंदाज होला, कुछ देखला का तरीका होला, तो हम आपे से जानल चाहब कि ये मिली बग सही में कौन कीड़ा है, एक एक कैसे देखल जा, कैसे पहचानल जा।
6: नमस्कार किसान भाइयों। सर्वप्रथम इस आम का जो मौसम चल रहा है तो इसी के नाम से ही कीड़े की पहचान है, जिसे जैसे अभी बताया कि मैंगो मिलीबग। अगर हम हिंदी में कहें तो इसे आम का दहिया कीट कहते हैं। ये दहिया एकदम कीट जो है वो एकदम उजले रंग का, जिसे आप कहते हैं उजर का कलर का होला, उजर का होने के साथ साथ एकदम सफेद दिखता है और जहाँ पर ये रहता है ये उस पौधे की पत्ती का रस चूसता है। कहने को तो ये आम का दहिया कीट है, लेकिन ये अनार में, कटहल में, पीपल पे, अमरूद में, नींबू प्रजाति के जो फल हैं उस पर, लीची पर, सहतूत पर, यहाँ तक कि आपका जो फूल है गुड़हल, इस पे भी, अमरूद पे और सब्जियों वाले पौधों पर भी इसकी उपस्थिति पाई जा रही है। इसकी उपस्थिति से ये करता क्या है कि ये बड़े जो वृक्ष हैं या छोटे पौधे हैं उनके पत्तों पे, उनके तनों पे, उनकी पत्तियों पे पूरी तरह से लिपट जाता है। और कभी कभी आपको ये धोखा भी होता है और पहचानने में भी ये असावधानी होती है कि ये कीड़ा है या कोई रोग फफूंदी है जो पूरी तरह से चिपकी हुई है, लेकिन ये एक तरह का कीड़ा है जो कि रस चूसता है। इसकी मादा जो

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: देश के

0: कीट है वो जमीन के अंदर जाके अंडे देती है। जमीन में अंडे देने के पश्चात ये आपका जो अक्टूबर नवंबर से इसके जो बच्चे हैं वो तैयार हो जाते हैं अंडे से निकल के और पेड़ों पे चढ़ना शुरू कर देते हैं। पेड़ों पे चढ़ने के पश्चात ये टहनियों पे कोमल जगहों पे इसके निम्फ और जो इसका प्रौढ़ कीट है दोनों ही हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं और इसका प्रकोप जो है वो दिसंबर से शुरू हो जाता है और मई माह तक इसका रहता है। उजले रंग के होने के साथ साथ ये एक तरह का जब रस चूसते हैं तो उसके बाद एक श्राप भी निकालते हैं, जिस श्राप पे वो मधु के समान मीठा होता है, जिस पर चीटी लग जाती है और उस पर काली फफूंदी भी आ जाती है। फफूंदी आने के बाद ये चीटी भी नुकसान पहुंचाती है और जो फफूंद लग जाती है वो भी हमारे पौधों को और कोमल टहनियों को नुकसान पहुंचाती है। रस चूस लेने के पश्चात हमारा पौधा पीला पड़ने लगता है, उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है और उसका जो यौवनपन है वो भी कम हो जाता है और हमारा पौधा अपरिपक्व अवस्था में उसके फल और पत्तियां गिरने लगते हैं।
1: डॉक्टर साहब, एकर जीवन चक्र कैसे पूरा होला? जैसे आप बोतौली हैं कि वयस्क बा या निम्फ बा, तो कैसे पहचानल जाला? का ई पंख वाला है या पंख विहीन है, कैसन कीड़ा है?
0: इस कीट की जो मादा है वो पूरी तरह से सफेद रंग की होती है और उसकी सतह पर उजल का पाउडर की जैसा सफेद सफेद पाउडर जैसा आवरण से ढका रहता है। नर कीट भी उसी तरह का होता है लेकिन उसके छोटे छोटे से पैर होते हैं, मादा गोल होती है और जब संगमन की क्रिया हो जाती है तो मादा जो है वो जमीन के अंदर चली जाती है और वहां पर ये जाकर अंडे देती है। पैर बहुत छोटे छोटे से होते हैं शरीर के आकार में, जो कि कम दिखाई देते हैं चलने में और ये झुंड बनाकर रहते हैं। झुंड बनाते रहने से ये समझ पाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है कि ये कीड़ा इस पे लगा है या कोई रोग से जो है वो सफेद हुआ है। जहां तक इसकी बात करें तो इसका अंडा जमीन के अंदर देने के पश्चात माँ जो बच्चे छोटे शिशु निकलते हैं वो अक्टूबर नवंबर पे निकल के पेड़ों पे चढ़ते हैं और इसके बाद ये तनों एवं पत्तियों तक पहुँच के उनका रस चूसते हैं।
1: डॉक्टर साहब, एक चीज और बताएं कि कीड़ा के बारे में तो अब संदेह दूर हो गयी, हमारे पंच भाई जान गए ना कि ई सफेदी वाला जो संरचना बा, कोतनो पानी डालल जात बा धोआत नहीं बा, धीरे धीरे पौधा मुरझात बा कमजोर होत बा, यहाँ तक कि डाली भी धीरे धीरे सूखे लगल, तो ई कीड़ा है जौना के मिली बग कहल जाला। जौना पेड़ पर लगेला वो हिसाब से एकर नाम अलग हो सकेला, पहचान अलग हो सकेला, अलग अलग क्षेत्र में लोग अलग अलग तरीका से समझी है, लेकिन ये मिली बग है कि की था। अब एक नियंत्रण को उपाय का करे से चाहिए?
0: जी किसान भाइयों, आपको सर्वप्रथम इस कीट की पहचान के पश्चात जहाँ पर आपका वृक्ष है उसके आसपास जितनी सूखी पत्तियां हैं, टहनियां हैं, कूड़ा करकट है, इन सबको इकट्ठा ना होने दें। अपने पेड़ के आसपास इकट्ठा जो है उसको अलग कहीं कर दें या जला दें या मिट्टी में कंपोस्ट बनाने के लिए रख दें। इसके साथ जुलाई से अक्टूबर के महीने में जो हमारे बड़े वृक्ष हैं उनके आसपास की जमीन जो है वो हमको गहराई तक खुरच देना चाहिए, कोड़ देना चाहिए, जिससे कि इनके जो अंडे हैं उनको जो है रहने के लिए स्थान ना मिले और वहां से हम इसका नुकसान शुरू कर दें और जानवरों से इस कीट से बचाव हमारा इस तरह से भी हो सकता है। दूसरा एक जो सबसे प्रभावी तरीका है कि ये नवंबर के बाद दिसंबर माह में, नवंबर दिसंबर माह में इसके जो शिशु निकलते हैं तो ये वृक्षों पे चढ़ते हैं, तो इन वृक्षों पे चढ़ने ना चढ़ने पाए इसके लिए इस पे जो है चिपचिपी स्टिकी बैंड लगा देते हैं। जून के महीने में खेतों की जुताई करने से इस कीट के अंडों को, और नवंबर दिसंबर में हम जुताई करेंगे तो इसके नवजात को काफी हद तक हम पेड़ों पे चढ़ने से रोक सकते हैं। डहिया कीट का जो शरीर है वो मोम जैसा है, मोम मतलब वैक्स है, इस पे कोई भी जैसे अभी का पानी वगैरह कोई डालेंगे तो वो बड़े आराम से धुल के निकल जाता है और रसायन का इसका जो प्रभाव है वो कम होने पाता है। इसके रासायनिक अगर हम

इस्तेमाल की बात करें तो कार्बारिल है, मोनोक्रोटोफास है, इमिडाक्लोरप्रिड है या थायामिथाजाम नाम का जो रसायन है, इस रसायन की मात्रा को मिलाकर अगर हम इस पे छिड़काव करते हैं तो इस कीट से हम अपने वृक्ष को नुकसान से बचा सकते। दवा के लिए जैसे कि आपका इमिडाक्लोरप्रिड या मोनोक्रोटोफास नाम की दवा है तो इसका 1 ml प्रति लीटर की दर से मिलाएंगे तथा

0: In Indore to focus on food security and empowerment of farmers. Strategic road project Zojila Tunnel achieves spinal breakthrough, bringing all-weather connectivity between Kashmir Valley and Ladakh closer to reality. Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan completes 10 years. Nationwide celebrations to begin from today. IMD issues red alert for heavy rainfall over Karnataka, Kerala and Mahe. Also predicts heat wave conditions over Delhi, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Uttar Pradesh, Vidarbha and West Rajasthan. And in men's cricket, India A set target of 278 runs against Sri Lanka A in Tri-Nation A series and Ambula, Sri Lanka. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। कर्नाटक, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में लू का अनुमान। और पुरुष क्रिकेट में दांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 वर्षों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने आम नागरिकों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेजों के सत्यापन को सुगम बनाया है और नागरिकों को पूरा सहयोग प्रदान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सीमा पार सैन्य अभियानों की निंदा की और अफगानिस्तान में हवाई हमलों के कारण हुई मौतों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है।
2: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों

0: कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनमर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है, ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2014-16 में जहां हर 1,00,000 प्रसव पर 130 महिलाओं की मृत्यु होती थी, वह 2022-24 में घटकर 87 रह गई है। इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 75 रूपए का एक स्मारक सिक्का और 5 रूपए का एक विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। सरकारी ई मार्केटप्लेस जिम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में जिम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, समावेशन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण के बल पर भारत ने ये उल्लेखनीय वृद्धि की है। श्री कुमार ने कहा कि जिम पर भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या 2016-17 में लगभग 2300 से बढ़कर आज लगभग 12,00,000 हो गई है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पश्चिम एशिया में ईरान और इसराइल के बीच तनाव कम हुआ है, प्रत्यक्ष झड़पों में भी कमी आई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: पश्चिम एशिया में पिछले कुछ दिनों से जारी ईरान इसराइल सैन्य तनाव के बाद फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील लेकिन अपेक्षाकृत शांत

0: तनाव की शुरुआत बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल की कार्रवाई से हुई। इसके बाद ईरान की ओर से उत्तरी इसराइल की दिशा में मिसाइलें दागी गईं। जवाब में इसराइल ने ईरान समर्थित ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरा गईं। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से जुड़ा मोर्चा फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान का कहना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति और तनाव में कभी संभव है जब गाजा और लेबनान में इसराइली सैन्य अभियान किए जाएंगे। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि स्थिति को स्थिर रखने और व्यापक समझौते की दिशा में चल रही वार्ताएं निर्णायक दौर में पहुंच रही हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि हालिया सीमा पार मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता अभी भी आगे बढ़ रही है।
2: हम एक मजबूत और प्रभावी समझौते के बेहद करीब हैं। यदि बमबारी की जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है, और ऐसा कौन चाहेगा। हमारा प्रयास है कि एक ऐसा औपचारिक समझौता हो जो सैन्य कार्रवाई से भी अधिक प्रभावी साबित हो। अब तक यह देखा गया है कि नाकाबंदी का असर बमबारी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली रहा है, इसलिए हम शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं।
1: कोलंबो उच्च न्यायालय ने श्रीलंका के पूर्व उपमंत्री सरना गुणवर्धना को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया है। ये आरोप 2006 में विकास लॉटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किराए पर वाहन खरीदने से संबंधित है। ये फैसला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद मिहाइल ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाले आयोग द्वारा दायर एक मामले में सुनाया है। फिलीपींस में कल दक्षिणी क्षेत्र के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 37 हो गई है। भूकंप में 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि 4 लोग लापता हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। भूकंप के कारण 20,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.4% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 267 अंक बढ़कर 73,791 और निफ्टी 86 अंक बढ़कर 23,209 पर था। पूरा देश आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा की। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का पुरजोर विरोध किया, बल्कि समाज में फैल रहे धर्मांतरण और लाल फीताशाही के खिलाफ भी बिगुल फूंका। आज सुबह से ही रांची के कोकर समाधि स्थल और बिरसा चौक पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने यहां पहुंचकर भगवान बिरसा के चरणों में माल्यार्पण किया है। रांची के अलावा उनके जन्म स्थान खूंटी के उलिहातू सहित राज्य भर के जनजातीय बहुल इलाकों में विशेष सांस्कृतिक और जागरूकता सभाएं आयोजित की जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ स्थानों पर भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की आशंका है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए की टीम ने 278 रनों का लक्ष्य दिया है। ये मैच श्रीलंका के रंगिरी दांबूला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए हैं। भारत के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के शतक और तिलक वर्मा

0: 150 रनों की साझेदारी ने भारत को महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने की मदद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्रों में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। इस समय दिन के 2:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं दिल्ली केंद्र से नेपाली कार्यक्रम।
2: नेपाली प्रशांत सेवामा सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई स्वागत तथा अभिवादन जनाउँदै अब हजुरलाई सुनाउन लागिरहेछु लोकनी आधुनिक गीत।

0: मणिकमल छेत्रीको संगीत रचनामा पहिलो प्रस्तुति हजुरले सुन्नुभयो महेश चेवाको आवाजमा। अब हजुरलाई अघिल्लो गीत सुनाउनेछौ नरेन्द्र गुरुङ र साथीहरूको आवाजमा। यस गीतको प्रस्तुति अघि हजुरलाई यो सन्देश।
1: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: देशहरूबीच भारत विरुद्ध शत्रुता उत्पन्न गरिरहेको भनेको छ। भारतले इस्लामाबादमा आफ्नै क्षेत्रमा सक्रिय आतंकवादी संगठनहरूलाई फितना अल हिन्दुस्तान बताएर दुष्प्रचार फैलाउने आरोप पनि लगाएको छ। राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको एक सत्रलाई सम्बोधन गर्दै भारतका स्थायी प्रतिनिधि तथा राजदूत पर्वत नेनी हरीशले इस्लामाबादले भारतमाथि दोष थोप्ने प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो। भारतले इस्लामाबादको सीमापार सैन्य अभियानको निन्दा गरेको छ अनि अफगानिस्तानमा हवाई हमलाको कारण भएको मृत्युको लागि पाकिस्तानलाई जिम्मेवार ठहर गरेको छ।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दो पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
2: Blaming neighbors for its own failures is an old Pakistani habit.
0: अन्तर्राष्ट्रिय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेशको इन्दौरमा शुरू भएको छ। यस सम्मेलनमा 21 देशहरूका कृषि मन्त्री, वरिष्ठ अधिकारी र विशेषज्ञ सहभागी छन्। यसमा ब्राजिल, इन्डोनेसिया, चीन, इरान, दक्षिण अफ्रिका, संयुक्त अरब अमिरात र अन्य सदस्य देशका प्रतिनिधिहरूले भाग लिइरहेका छन्। आजका सत्रहरूमा खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती र कृषि नवाचार सम्बन्धी छलफलले टिकाउ कृषि खाद्य प्रणालीको निर्माण गर्न मद्दत गर्नेछ। कृषि मन्त्रीहरू बीच एक विशेष संवाद 12 जुनमा आयोजित गरिनेछ। यसले साना किसान, महिला र युवाहरूको माध्यमले खाद्य सुरक्षामा ध्यान केन्द्रित गर्नेछ। ब्रिक्स राष्ट्रहरूको मन्त्री स्तरीय बैठक 13 जुनमा हुनेछ। सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मन्त्री नितिन गडकरीले रिमोट बटन दबाएर लद्दाखको मिनीमर्गमा जोजिला सुरुङको पूर्वी प्रवेशद्वार नजिक विस्फोट गराउनुभयो, जसले कश्मीरको पाल्टल अनि लद्दाखको मिनीमर्गको दुवै छेउ आसपासमा जोडिएको छ। यस अवसरमा जम्मू कश्मीरका उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अनि मुख्यमन्त्री उमर अब्दुल्ला पनि उपस्थित हुनु हुन्थ्यो। जोजिला सुरुङले आज अन्तिम सफलताका साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि पनि दशकौं पुरानो सपना अब साकार हुने भएको छ। यस परियोजनालाई जम्मू कश्मीर अनि लद्दाखबीच सम्पर्क सुनिश्चित गर्नको लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ। कारण हालैको राजमार्ग जाडोको मौसममा भारी हिमपातको कारण अनि खराब मौसमको स्थितिमा लामो समयसम्म बन्द रहन्छ। नागरिकहरूको आवागमनमा सुधार गर्नुका साथै यस सुरुङले माल ढुलाई बढाउने, पर्यटनलाई बढावा दिने र जाडोको मौसममा लामो समयसम्म बन्द रहने दुर्गम क्षेत्रहरूमा पहुँच सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। समाचार आकाशवाणीबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। ताजा समाचार जान्नका लागि श्रोताहरूले सोसियल मिडिया ह्यान्डल एक्स @AIRNewsKarsiang अनि फेसबुकमा आकाशवाणी समाचार नेपालीलाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ।
3: आजकल भारत के गांव गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM Suryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
0: यो आकाशवाणी हो। केन्द्रीय स्वास्थ्य र परिवार कल्याण मन्त्री जगत प्रकाश नड्डाले आज नयाँ दिल्लीमा प्रधानमन्त्रीको सुरक्षित मातृत्व अभियानको 10 वर्ष मनाउन राष्ट्रव्यापी उत्सवको उद्घाटन गर्नुहुनेछ। यस अभियानको उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था र मातृत्व सुनिश्चित गर्नु हो।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है, ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण

0: कार्यवाही जारी रहने बताउनुभयो। अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले तेहरानका साथ जारी कूटनीतिक वार्ताको सम्बन्धमा अमेरिका एक मजबुत र शक्तिशाली सम्झौताको धेरै नजिक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, इरानका बन्दरगाहहरूमा अमेरिकाको नाकाबन्दी बमबारी भन्दा बढी प्रभावकारी साबित भएको छ।
1: हम एक मजबूत और प्रभावी समझौते के बेहद करीब हैं। यदि बमबारी की जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है, और ऐसा कौन चाहेगा। हमारा प्रयास है कि एक ऐसा औपचारिक समझौता हो जो सैन्य कार्रवाई से भी अधिक प्रभावी साबित हो। अब तक यह देखा गया है कि नाकाबंदी का असर बमबारी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली रहा है, इसलिए हम शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं।
0: राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पश्चिम एसियामा बढ्दो तनावप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। श्री गुटेरेसले सबै सरोकारवालाहरूलाई हमला रोक्न र संयम अपनाउन अपील गर्नुभयो। उहाँले लेबनान, इरान र गाजामा युद्ध विराम पालना गर्न सबै पक्षलाई आह्वान पनि गर्नुभएको छ। आज झारखण्ड सहित देशभरि महान स्वतन्त्रता सेनानी तथा धरती आबा भगवान बिरसा मुण्डाको पुण्यतिथिमा उहाँलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिँदैछ। यस अवसरमा झारखण्डका राज्यपाल, मुख्यमन्त्री अनि सबै गणमान्य व्यक्तिहरूले राँची स्थित कोकर समाधि स्थलमा भगवान बिरसा मुण्डालाई पुष्पाञ्जली अर्पण गर्नुभयो। यसबारे सुन्नुहोस् एक रिपोर्ट।
2: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा की। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का पुरजोर विरोध किया, बल्कि समाज में फैल रहे धर्मांतरण और लाल फीताशाही के खिलाफ भी बिगुल फूंका। आज सुबह से ही रांची के कोकर समाधि स्थल और बिरसा चौक पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने यहां पहुंचकर भगवान बिरसा के चरणों में माल्यार्पण किया है। राज्य के अलावा उनके जन्म स्थान खूंटी के उलिहातू सहित राज्य भर के जनजातीय बहुल इलाकों में विशेष सांस्कृतिक और जागरूकता सभाएं आयोजित की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अनि गृहमन्त्री अमित शाहले भगवान बिरसा मुण्डाको पुण्यतिथिको अवसरमा उहाँलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको छ। पुरुष क्रिकेटमा आज भारत ए अनि श्रीलंका ए बीच वन डे त्रिकोणीय श्रृङ्खलाको पहिलो मुकाबिलामा भारत ए टीमले श्रीलंका ए विरूद्ध 50 ओभरमा 277 रन बनाएको छ। यसअघि भारत ए को कप्तान तिलक वर्मा

चलचित्र की गीत शब्द रसना थियो गुलजार को अब अगिलो गीत हजुरलाई सुनाउन लागिरहे छु सोनू निगम र सुनिधि चौहान को आवाज में चलचित्र फनाबाट संगीत छ जतिन ललित को अनि शब्द छ प्रशुन जोशी को स्वीकार्नुहोस् कार्यक्रम को अगिलो प्रस्तुति।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: गीत संगीत कार्यक्रममा श्रोताहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ विभिन्न कलाकारहरूको स्वरमा लोकनी आधुनिक गीतहरू।

समाप्त होती है हमारी आज की ये सभा। सायकालीन प्रसारण सेवा में आपके समक्ष फिर होगी मुलाकात। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर विविध भारती का कार्यक्रम जारी रहेगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। इस समय दिन के 4 बज चुके हैं।

सेल्यूलॉइड के सितारे। इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं फिल्मी दुनिया के चमकीले सितारों से। आज एक ऐसी सितारा आ रही है जिन्होंने एक दिन नीले आसमान की तरफ देखकर ये कहा था।

0: जी हाँ, जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान आज विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ हैं और उनकी मौजूदगी से रोशन है हमारी दुनिया। आइए वहीदा रहमान से करते हैं ढेर सारी बातें अपने साथी कमल शर्मा के साथ।
1: प्रिय श्रोताओ, आज हमारे स्टूडियो में उतर आया है चौदहवीं का चांद। इन्हें इंडियन स्क्रीन की क्लासिक ब्यूटी कहा जाता है और इन्हें जाना जाता है अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए। आप समझ गए होंगे, जी हाँ, आज इस प्रोग्राम में हमारी खास मेहमान हैं वहीदा रहमान जी। वहीदा जी, मैं अपनी ओर से विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ इस प्रोग्राम में। नमस्कार।
2: नमस्कार, शुक्रिया।
1: कैसा लग रहा है हमारे स्टूडियो में आकर के आपको?
2: मेरे ख्याल से पहली बार आई हूँ मैं स्टूडियो में और अच्छा लग रहा है। अच्छा है
1: क्योंकि इस समय करोड़ों लोग आपकी बातचीत सुन रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से, और जिन्होंने आपकी फिल्में देखी उन्हें बहुत सारी बातें याद आ गई होंगी, बहुत सारे सीन याद आए होंगे, कभी आपने उनको रुलाया होगा, कभी हंसाया होगा। मैं इससे पहले कि फिल्मों की जो आपकी यात्रा शुरू हुई, हम जानना चाहेंगे आपके बिल्कुल बचपन में जानना चाहेंगे, और आपसे ये जानना चाहते हैं कहाँ आपकी पैदाइश हुई।
2: मेरी पैदाइश हुई चेन्नई के पास, एक जगह, छोटी सी जगह है, इसका नाम है चेंगलपेट।
1: अच्छा।
2: तो वहाँ पर मेरे वालिद साहब कमिश्नर थे, तो वहाँ पैदाइश हुई। मेरे ख्याल से कुछ घंटे डेढ़ घंटे का सफर है चेन्नई से वहाँ, मतलब मैं तमिलियन हूँ समझिए।
1: अच्छा। हाँ। लेकिन आपने शुरुआत की तेलुगु फिल्म से।
2: हाँ, वो क्या हुआ, मेरे वालिद साहब का ट्रांसफर हुआ करता था हर तीन साल, यू नो, पोस्टिंग होती थी जो आईएएस ऑफिसर्स की होती थी। तो हम विजयवाड़ा में थे, आंध्र प्रदेश में, तो मैंने कई बार डांस परफॉर्मेंस स्टेज पे दिए थे। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, 11-12 साल की। तो साउथ इंडियन मूवीज जो थी वहाँ से मुझे ऑफर्स आ रहे थे। अच्छा। तो उस वक्त मेरे वालिद साहब ने कहा, ये उम्र बहुत छोटी है, अभी पढ़ाई भी नहीं ख़त्म हुई, तो अभी वैसे एज ए प्रोफेशन शुरू करने का इरादा भी नहीं था। मगर उसके बाद मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, तो मैं 13 साल की थी। फिर भी मेरी मुझसे तीन बड़ी बहनें हैं, उन सब की शादी हो चुकी थी, तो मैं रह गई थी, मेरी बारी थी शादी होने की। तो फिर इत्तेफाक की, किस्मत की बात है मैं कहूँगी, फिर से ऑफर आने लगे साउथ से, मतलब मद्रास में। उस वक्त सारी इंडस्ट्री मद्रास में थी, वहाँ तेलुगु या तमिल दोनों फिल्में बनती थी। तो फिर जब एक ऑफर आया तो मेरी वालदा कहने लगी, नहीं अभी मेरे हस्बैंड नहीं हैं तो मैं नहीं इजाज़त दे सकती। तो मैं तो बहुत खुश हो गई, एक्साइट हो गई। तो वो जो प्रोड्यूसर थे वो किसी जगह के आंध्र प्रदेश के छोटे से ज़मींदार थे, वो प्रोडक्शन में जा रहे थे। तो उन्होंने मेरी वालदा से कहा कि नहीं, मैं रहमान साहब को जानता हूँ, मिल चुका हूँ, तो अभी वक्त बदल रहा है, इसको भी एक बाकायदा प्रोफेशन समझा जाता है और सिर्फ एक

0: डांस ही तो करना है, स्टेज पे करती थी, एक फिल्में कर ले तो क्या हर्ज है। तो मैं तो बहुत मेरे पीछे पड़ गई मम्मी के कि प्लीज इजाजत दे दीजिए, करने दीजिए। तो वो उन्होंने कहा अच्छा चलो अभी तक कोई लड़का मिला नहीं, चलो कर लेने दो। और फिर किस्मत की बात थी कि वो पहली फिल्म में जो एक सिर्फ मैंने फोक डांस किया था वो बहुत कामयाब हुआ, बहुत ही ज्यादा कामयाब हुआ, जो किसी को उम्मीद नहीं थी और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो फिर वहां से सिलसिला शुरू हो गया।
1: कुछ बोल याद है उस डांस के जो बोल थे गीत के, कुछ याद है आपको?
0: पूरे तो याद नहीं
1: हाँ जी
0: है। हीरुआ का साकारो रन्नो चिन्नन्ना, आगे
1: क्या
0: याद
1: बात है, क्या बात है, आप तो बहुत सुरीली भी हैं। अच्छा
0: नहीं
1: वो फिल्म कौन सी थी?
0: है। उसका नाम था रोजुलू माराई, मतलब था कि डेज आर चेंज विच लिटरली चेंज माई लाइफ एंड डेज। तो फिर वो बहुत कामयाब हुई फिल्म। तो मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर कहने लगे आपको पता है जब आपका गाना आता है और ख़त्म हो जाता है तो लोग पैसे फेंकते हैं स्क्रीन की तरफ। तो मैंने सोचा मुझे खुश करने के लिए कह रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, फिल्मों में मैंने तो कभी नहीं देखा लोग पैसे फेंकते हैं और जब मेन आर्टिस्ट नहीं हो। तो फिर मैं और मेरी वालदा और मेरी बहन सब मिलके देखने गए थे थिएटर में। हाँ, तो वाकई लोग पैसे फेंक रहे थे और कहते थे इसको दोबारा दिखाया जाए। तो मेरी नहीं समझ में आया दोबारा फिल्म एक चल रही है कैसे हो सकता है। तो फिर हमको वो एग्जिबिटर थे उन्होंने कहा पॉसिबल है क्योंकि वो रील निकालते हैं फिर दोबारा चलाते हैं। तो कई शहरों में वो निकाल के फिर एंड के बाद एंड से पहले मतलब वो गाने को दोबारा प्ले करते थे। तो वो इतना ज्यादा कामयाब हुआ था वो गाना।
1: क्या कह रहे हैं?
0: और फिर इसके लिए मैं अपनी डेस्टिनी पे बहुत मानती हूँ। और ये इसके सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस हो रहे थे पूरे आंध्र प्रदेश में। तो हम हैदराबाद गए तो वहाँ इत्तेफाक से गुरुदत्त जी क्यों गए थे वो खुदा ही बेहतर जाने, वहाँ थे वो। तो वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस में बैठे हुए थे तो काफ़ी शोर शराबा, दो तीन मोटरें जा रही थी, लोग भाग रहे थे। तो उन्होंने पूछा भाई क्या हो रहा है बाहर। तो उन्होंने कहा एक बहुत कामयाब तेलुगु फिल्म बनी तो उसके आर्टिस्ट हैं तो लोग। अच्छा। तो फिर वो उन्होंने गुरुदत्त जी से कहा कि उसमें एक नई लड़की ने काम एक डांस किया है तो बहुत कामयाब हुआ और उस लड़की का नाम है वहीदा रहमान। तो उन्होंने सुना के बोले वहीदा रहमान तो मुसलमान मुस्लिम लड़की होगी। बोले नहीं है भी मुस्लिम तो वो उर्दू बोल सकती है। तो उन्होंने कहा हाँ जरूर बोल सकती है क्योंकि क्या है डाउन साउथ इंटीरियर गांवों में वो अब तेलुगु बोलते हैं। आंध्र प्रदेश में तमिल वाले तमिल बोलते हैं हालांकि हैं मुसलमान, केरला उस तरफ मलयालम बोलते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ये बोलती हैं। तो बोले आपको कैसे पता। तो उन्होंने कहा कल फंक्शन था तो स्टेज पे गए थे वो, स्टेज पे आर्टिस्ट आए थे तो मैं भी उसमें था तो ये लड़की आई स्टेज पर उर्दू में बोल रही थी। बोले अच्छा, तो क्योंकि आजकल मुझे नए चेहरों की तलाश है तो ये क्या मुनासिब है कि मैं उससे मिल सकूं। तो उन्होंने कहा मैं कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने अपने हमारे जो प्रोड्यूसर थे उनके जरिए एक मीटिंग अरेंज की तो वहाँ मुलाकात हुई। तो कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई, थोड़ी देर 10-15 मिनट मैं और मेरी वालिदा थे फिर चुप। कुछ खास कहा नहीं उन्होंने, नहीं ये नहीं कहा कि आप बॉम्बे आइए। खैर हम वापस मद्रास पहुंचे तो इस चीज को भूल गए हम। 6 महीने बाद फिर उन्होंने किसी को भेजा मद्रास। तो उन्होंने कहा वो हम मिले थे हैदराबाद में, उनको कहिए बॉम्बे आने के लिए तो उनका टेस्ट फिर से लेंगे हम, फिर हम साइन करना चाहते हैं उस तरह से यू नो।
1: तो उसके बाद में आपको सीआईडी मिली।
0: सीआईडी पहली मेरी हिंदी फिल्म थी और दूसरी प्यासा।
1: तो सीआईडी और प्यासे की बातें करें उसके पहले हम वेदा जी चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का कोई गाना यहाँ हमारे श्रोताओं को सुनाएं।
0: मुझे प्यासा का वो गाना बहुत पसंद है जिससे मेरा काम लोगों को भी बहुत पसंद आया, जाने क्या तूने कही जाने क्या मैंने सुनी।

0: बहुत ही खूबसूरत गाना है और खासतौर से सचिन दा का जो म्यूजिक है उसका जवाब ही नहीं है। आपको याद है जब आपने गुरदुत साहब के डायरेक्शन में पहली बार वो कैमरा फेस किया था, हिंदी की अगर हम बात करें कौन सा दृश्य था, कुछ याद है आपको?
1: नहीं, पहले तो सीएडी बनी थी, उसके डायरेक्टर थे राज खोसला।
0: हाँ जी।
1: तो एक महीने दो महीने तो सिर्फ सीएडी की शूटिंग हो रही थी, उसके बाद उन्होंने साइमल्टेनियसली दो तीन महीने के बाद प्यासा की भी शूटिंग शुरू हुई थी। और दोनों डायरेक्टरों में मैंने फर्क बहुत पाया, क्योंकि राज खोसला जो थे वो अच्छे डायरेक्टर थे फिल्मों में के लिए, मगर नए आर्टिस्ट को हैंडल करना उनको इतना नहीं अच्छा आता था। हालांकि गुरदत्त जी तो वो आर्टिस्ट की क्या परेशानी है वो सोचते थे, गौर से देखते थे, फिर पूछते थे आर्टिस्ट को कि आपको तकलीफ क्या है, आप समझ नहीं पाए या ये करते वक्त आपको किस चीज़ की तकलीफ हो रही है, तो उससे फिर लगता था हाँ मैं कह सकती हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। और राज खोसला थे कि ये ऐसे करना है, कर दिया, अगर कोई बात मेरी समझ में नहीं आए, और चूंकि मैं नई नई थी और बहुत शाई थी तो पूछती नहीं थी। यहाँ गुरुदेव जी पूछते थे कि आपका कुछ प्रॉब्लम है लगता है, क्या है, क्या तकलीफ हो रही है, आपको डायलॉग नहीं ठीक लग रहा है या मूवमेंट नहीं ठीक लग रहा है, तो उससे एक कॉन्फिडेंस आया कि ये तकलीफ हमारी पूछ रहे हैं तो मैं उनको बता सकती हूँ कि ये नहीं हो रहा है मुझसे।
0: गुरुदेव साहब
1: हाँ
0: को कैसा डायरेक्टर मानती थी?
1: डायरेक्टर तो वो बहुत ही बढ़िया थे, क्योंकि वो बहुत

0: और से देखते थे, वो खामोश रहते थे तो स्टडी करते थे कि किस कौन सा आर्टिस्ट क्या का किस हद तक क्या क्या कर सकता है। उसीलिए उनके मेरे परफॉर्मेंस या माला सिन्हा के प्यासा में या रहमान साहब या जॉनी वॉकर या महमूद वगैरह, वो सबके परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे होते थे क्योंकि उनके वो समझते थे इनकी लिमिट ये है, ये इनसे इतना ही ऐसे करवाओ,
1: उनके डायरेक्शन में कौन सा सीन आपको सबसे बेहतरीन लगता है, यादगार लगता है अपना, कौन सा सीन?
0: कागज के फूल में वक्त ने किया क्या हंसी सितम, वो एक गाना है जो अब तक मुझे बहुत यूनिक लगता है, इसलिए कि वो अपने जो कैरेक्टर है वो अपने ख्यालात को जाहिर कर रही हैं मगर बिना लिप मूवमेंट के, ये जैसे दिल की आवाज है। और मैंने कहा लिप मूवमेंट नहीं होगा ये कैसे गाना होगा, तो बोले आप कीजिए जैसे मैं कह रहा हूं, तो ये इससे फीलिंग है, ये लड़की अब वो इसमें नहीं है कि खुले खुले जाहिर करे अपने फीलिंग्स को, जैसे शॉट्स होंगे उस पे वो जैसे उसका विजुअली जैसे हम प्ले करेंगे तो गाना पीछे से बजेगा तो ज्यादा इफेक्टिव होगा।
1: आपको सिर्फ एक्सप्रेशन लाना
0: हाँ
1: चाहिए।
0: एक्सप्रेशन लाने थे और उसमें तो मैं कहूँगी एक्सप्रेशंस बहुत उन्होंने अच्छे एक्सप्लॉइट किए और उसकी जो फोटोग्राफी थी और लाइटिंग थी उससे और भी वो चीज़ एनहांस हुई थी, मैंने और बढ़िया दिखती थी।
1: आपने जिस गाने का जिक्र किया कागज के फूल का, ये गाना भी बड़ा
0: हाँ जी
1: हॉन्टिंग है और इसकी मेलोडी जो है आज
0: हाँ
1: तक बहुत दिल को छू लेने वाली है।
0: बिल्कुल
1: क्यों ना ये गाना सुना जाए?
0: बिल्कुल क्यों नहीं।

0: कागज के फूल का हमने गाना सुना। ये एक जो फिल्म है इंडियन क्लासिक्स में इसका शुमार होता है, लेकिन ये फिल्म असफल रही और कई लोग कहते हैं वक्त से पहले बन गई थी इसलिए ऐसा हुआ। तो आप ही क्या राय है इसमें?
1: ये सही बात है, वो वक्त से पहले बनी थी और जब पूरी फिल्म बन गई थी तो ट्रायल पे हमने सबने देखी तो सब एक दूसरे आपस में बात करते हैं कैसी है क्या है, तो मैंने फट से कह दिया कि पिक्चर चलेगी नहीं। तो
0: आपने कह दिया?
1: हाँ मैंने कह दिया। तो अबरार साहब जो थे, हाँ, जो डायलॉग राइटर थे, उनको बहुत बुरा लगा, बोले अभी तुम अभी छोटी बच्ची हो, तुम्हें क्या पता क्या किस हिसाब से कह रही। मैंने कहा बहुत हैवी है पिक्चर, बहुत ज़्यादा हेवी है और पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि चलेगी नहीं क्योंकि इट्स टू सैड एंड टू हैवी। तो बोले अच्छा एनीवे देखते हैं। तो वो इत्तेफाक से वो हो गई। तो इतनी उस वक्त कमर्शियली बुरी थी कि बहुत तो दुख तो हुआ और मुझे इतना शौक नहीं लगा कि मैंने कहा मुझे तो पता ही था कि पिक्चर नहीं चलने वाली।
0: लेकिन बाद में वो बिल्कुल ऐसे लगने लगा कि जैसे वो अपनी कहानी कह रहे हो।
1: नहीं मगर जब वो गुजरे तो उनके डाउनफॉल तो नहीं हुआ था ना। उसके बाद चौदहवीं के चांद बनी तो सुपर हिट हो गई थी फिल्म। फिर अपनी क्या उसके बाद बनी थी साहेब बीबी और गुलाम, उसको भी अप्रिशिएट बहुत किया गया अप्रिशिएट और फिर वो फेस्टिवल में गई थी।
0: अच्छा विधि जी, हाँ। साहेब बीबी और गुलाम का जिक्र आया है, डायरेक्टर के रूप में नाम आता है अबरार अलवी साहब का, लेकिन पूरी फिल्म में ऐसा लगता है कि शैडो के रूप में गुरदत्त साहब मौजूद हैं। पूरी फिल्म में वो झलक जो है गुरदत्त साहब की जरूर दिखाई पड़ती है, उनके निर्देशन की झलक दिखाई पड़ती है।
1: अभी देखिए अबरार साहब क्योंकि उनसे उनके साथ शुरू से काम कर रहे थे तो नेचुरली उनका इन्फ्लुएंस तो होगा ही ना। तो उन्होंने हमेशा गुरदत्त जी के पॉइंट ऑफ व्यू से शूटिंग की होगी और डिस्कशन होते थे होंगे उन दोनों के आपस में। क्योंकि जब मैं अकेली काम कर किया जैसे चंद सीन्स थे जहाँ गुरदत्त जी नहीं थे तो उसमें गुरदत्त जी नहीं आए थे सेट पे, और जब गुरदत्त जी थे सीन में एज ए लीडिंग मैन तो नेचुरली होते थे। मगर जब ऑब्वियसली आई एम श्योर कि अबरार साहब और गुरदत्त जी के डिस्कशन जरूर होते थे होंगे आपस में कि इस चीज को इस तरह से किया जाए इस तरह से किया जाए।
0: हमने सुना है कि उसमें जो छोटी बहू का किरदार जो मीना कुमारी जी ने प्ले किया वो आप करना चाहती थी?
1: बिल्कुल, जब कहानी सुनाई गई और नॉवल से लिया गया बंगाली नॉवल से तो मुझे बहुत दिल किया कि मैं रोल करूं। तो गुरदत्त जी ने कहा देखो आप नहीं कर सकती ये रोल। तो मुझे बहुत इंसल्टिंग लगा। तो मैंने कहा आपका मतलब ये है कि मैं अच्छी आर्टिस्ट नहीं हूं? तो बोले नहीं नहीं ये मतलब नहीं है, आप समझ नहीं रही, एक मेच्योर औरत का रोल है जो औरत अपने हस्बैंड के प्यार के लिए बहुत ज़्यादा तड़पती जो उसको मिलता नहीं है, ये आप नहीं कर पाएंगी। तो फिर मैंने कहा क्या आपका मतलब कि औरत शादीशुदा होना चाहिए तो शादीशुदा औरत का रोल करें? नहीं बोले वो नहीं आप समझेंगे नहीं, आप अभी बहुत छोटी हैं इस चीज़ को कि हाउ यू वेट एंड पाइन फॉर योर हस्बैंड। खैर फिर भी मैंने कहा नहीं कुछ तो कोशिश तो करते हैं। तो उन्होंने वैसा गेटअप देके स्टिल फोटोग्राफ्स लिए। लेने के बाद मूर्ति साहब जो उनके कैमरामैन थे वो हमने सब ने स्टिल्स देखी। मैं तो बड़ी खुश थी कि मैं बुरी नहीं लगती हूँ अच्छी लग रही हूँ। तो मूर्ति साहब ने कहा नहीं गुरदत्त जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, आप यू नो यू लुक वेरी यंग, कि ऐसा नहीं कि शादी हो के कुछ 5-10 साल हो गए हस्बैंड की तवज्जो नहीं मिलती, ये तुम्हारे फेस पे ये आ नहीं सकती बात, तो भूल जाओ इस चीज को। तो मैं समझ गई बाद में क्या कहना चाह रहे हैं। सो
0: इस फिल्म का शुमार भी बहुत बेहतरीन फिल्मों में होता है, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। कोई यादगार संस्मरण इस फिल्म से जुड़ा है, कोई आपको याद आता हो, कोई प्रसंग याद आता हो?
1: मुझे रोल अच्छा लगा था क्योंकि हाँ उसके बाद गुरदत्त जी ने कहा आप नहीं करेंगे तो बात खत्म हो गई। तो जब अबरार साहब डायरेक्ट करने लगे तो वो एक दिन घर पे आके कहने लगे देखो मैं पहली बार डायरेक्शन कर रहा हूँ, अगर आप नहीं करोगे तो लोग सोचेंगे क्योंकि मैं नया डायरेक्टर हूँ इसके लिए नहीं करें। मगर मैंने कहा उसकी तो कास्टिंग हो गई है अभी मीना जी के साथ। बोले नहीं जबा का रोल है वो भी तो कर सकते हो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं कर लूँगी। तो गुरुदेव, उन्होंने जाके गुरुदेव जी को बताया तो उनको ताज्जुब हुआ, भाई तुम आप समझ नहीं रहे हैं, चौदहवीं के चांद के बाद आप एक बहुत बड़ी स्टार बन गई हैं, ये तो सेकेंडरी रोल है, टाइटल रोल नहीं है, क्यों करेंगी आप? तो मैंने कहा मुझे कोई हैंग अप नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैंने कहा वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, जबा का रोल डिफरेंट है, डेफिनेट कैरेक्टर है। तो बोले आप सोच लीजिए, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ आपको करने के लिए।

0: तो मैंने कहा नहीं नहीं अबरार साहब ने इतना कहा तो मैं कर लूंगी, तो इसलिए मैंने किया।
1: तो इसका जिक्र चला है, क्यों ना इस फिल्म का कोई गाना जो आपको बहुत अच्छा लगता हो।
0: एक तो मेरा अपना गाना है भंवरा बड़ा नादान, उसके उसमें जो शरारत कैरेक्टर की थी वो बहुत अच्छी थी, मगर उसका दूसरा जो गाना जो मुझे बहुत पसंद है कि ना जाओ सैया छुड़ा के बैया।

0: अब इसके पहले बातचीत में आपने जिक्र किया था चौधरी का चांद का, एक बड़ी, वो भी एक बहुत अलग तरह की फिल्म आपकी, बड़ी खूबसूरत फिल्म, और उसमें भी गुरुदत्त जी आपके साथ में थे। तो उनके साथ में आपकी ट्यूनिंग कैसी थी बतौर, जैसे वो एक एक्टर एक्ट्रेस के बीच में जो ट्यूनिंग होनी चाहिए, कहते हैं कि वो बहुत जरूरी है, मायने रखती है, खासतौर से परफॉर्मेंस को लेकर के।
1: नहीं, क्या हुआ, प्यासा जब शुरू हुई, क्योंकि कई सीन में गुरुदत्त जी नहीं सिर्फ डायरेक्ट कर रहे थे, तो मेरे दिलो दिमाग में गुरुदत्त जी इज मोर अ डायरेक्टर देन एन एक्टर। तब तक आदत हो गई थी कि वो के समझने लगे हमारे प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करती है, अच्छा ऐसे नहीं हो सकता तो ऐसे कर लो, तो वो एक रैपोर क्रिएट हो गया था उनके साथ, हाँ इनके साथ बात कर सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई ये नहीं हो रहा है हमसे, तो वो समझाते थे, वो था। फिर गुरुदत्त फिल्मों की एक बड़ी अच्छी बात थी कि वो एक ही किस्म के नई फिल्में बनाते थे, जैसे CID बनाए, सस्पेंस थ्रिलर थी, फिर प्यासा इतनी सीरियस पोएट की थी, फिर चौदहवीं का चांद रोमांटिक मुस्लिम बैकग्राउंड पे थी, फिर साहेब बीबी खान, बड़ी वैरायटी हुआ करती थी, वो बड़ी अच्छी बात थी। और फिर चौदहवीं का चांद फिर उन्होंने खुद नहीं डायरेक्ट की, एम सादिक साहब ने की, तो तब मैंने पूछा ये किस लिए आप किसी और को दे रहे हैं, तो कहने लगे भाई कुछ भी कहो मैं तो रहूंगा सेट पे, मगर वो जो उर्दू जबान का वो जो मजा है वो कोई छोटी सी बात मैं नहीं समझ सकूंगा, क्योंकि ये मेरी अपनी जबान है ही नहीं, अगर सादिक बाबू करेंगे तो छोटी छोटी बातें होंगी, हाय

0: ला कहने का भी अंदाज उनको जो मालूम होगा जो मुझे नहीं पता होगा,
1: क्या कहना
0: यू नो, और खासकर वो लखनऊ के हैं उस तरफ है, सही बात थी, तो उनका अगेन डिस्कशन जरूर होते थे होंगे, बट ऑन द सेट सिर्फ सादिक बाबू, ऐसा नहीं महसूस हुआ कि गुरदत्त जी बैठे हो कह रहे नहीं आप बैठिए मैं ये शॉट ले रहा हूँ, ये वो उतनी रेस्पेक्ट देते थे अपने डायरेक्टर्स को।
1: आप लोग की राय ली जाती थी डिस्कशंस में?
0: नहीं, मैं तो यू नो ऐसी वैसी कोई बड़ी आर्टिस्ट नहीं थी कि मेरी राय लिया जाए, अगर कोई गलत ऐसा लगे तो मैं पूछती थी लॉजिकली ये कैसे हो सकता है, तो कहते थे भाई आप लॉजिक में बहुत जाती हैं, एक चीज होती है फिल्मों में उसको कहते हैं सिनेमैटिक लिबर्टी, तो वो हमको लेनी पड़ती है।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जानी मानी फिल्म अभिनेत्री वहीदा रहमान, इनसे बातचीत कर रहे हैं कमल शर्मा।
1: देव साहब के साथ में कैसी जुड़ी थी आप?
0: देव साहब के साथ क्योंकि पहले वो सीआईडी में थे तो मेरा उनका बहुत अच्छा एक वो भी अगेन ही वाज अ वेरी क्वाइट पर्सन, बट ही वाज नॉट अ टॉकेटिव पर्सन, मगर वेरी नाइस वेरी डिसेंट और बहुत अच्छा था उनके साथ।
1: उनके साथ कोई यादगार संस्मरण आपका किसी फिल्म का?
0: हाँ, एक बार हम उनकी प्रोडक्शन थी काला बाजार नवकेतन की, उसकी शूटिंग चल रही थी ऊटी में, तो यूनिट होटल से कुछ डेढ़ घंटे की ड्राइव थी दूर लोग के आउटडोर शूटिंग के लिए जा रहे थे, तो यूनिट पहले जा चुका था, तो देव मैं और मेरी सिस्टर थी और मेरी हेयर ड्रेसर थी, हम जा रहे थे, देव ने कहा मैं खुद गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है। हो एक आधे घंटे के बाद देव कहने लगे, फॉग आने लगी पहाड़ियों में, तो कहने लगे वहीदा मुझे दिख नहीं रहा है। मैंने कहा क्या मतलब आपका दिख नहीं रहा, क्योंकि पहले कभी मैंने उनको देखा नहीं चश्मा पहनते हुए। नहीं एक तो फॉग है, मैंने कहा हाँ फॉग तो है मगर ये क्या मतलब आपका दिख रहा है, तो बोले मैं चश्मा लगा था, तो फिर मैंने कहा आपने चश्मा क्यों नहीं लगाया, तो बोले जी मैं अपने कमरे में भूल आया, तो मैंने कहा अब क्या होगा, तो बोले ऐसा करो मैं गाड़ी रोकता हूँ तुम आगे बैठो और अपनी दीदी और हेड्रेस को पीछे बैठने दो और तुम मुझे बताते रहना राइट में कि लेफ्ट में जाना है। मैंने कहा भाई ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है, फिर उससे बढ़कर टेंशन ये हुई एक तो फॉग और पहाड़ी का रास्ता, आगे से एक मिलिट्री कॉन्वॉय आ रहा था। ओह मैंने कहा देव भाई आगे से मिलिट्री कॉन्वॉय, और ये रास्ता इतना नैरो था कि कोई एक दूसरे को ये नहीं कह सकता, मैंने कहा तो मरवा दिया आपने, हम पीछे भी नहीं जा सकते और आगे तो जाना ही है, और वो जो ट्रक्स आ रही हैं, तो बोले मैं बहुत आहिस्ता चलाऊंगा। अच्छा आहिस्ता चलाइए, और कोई और रास्ता ही नहीं था। ओ इतनी टेंशन में हम अपने लोकेशन पहुंचे तो एक घंटा देर पहुंचे, तो वहाँ यूनिट वाले परेशान और विजय आनंद जो थे गोल्डी वो डायरेक्टर थे वो पहुंचे, भाई क्या हुआ आप लोगों को, तो मैंने कहा विजय आनंद को सब गोल्डी बुलाया करते थे, गोल्डी आपके भाई साहब चश्मा छोड़ा है और फॉग थी और मिलिट्री कॉन्वॉय आ रहा था, तो तुम्हें नहीं पता हम कितने टेंशन में खैरियत से पहुंच गए, तो दैट वाज अ वेरी डेंजरस एक एपिसोड हुआ था।
1: तो उसी फिल्म में भी गाने बहुत अच्छे हैं, कोई गाना याद करिए आप?
0: खोया खोया चांद।

0: मेहता जी, गुरली साहब का भी जिक्र आया और इसके पहले हमने बात की गाइड की, और गाइड में डांस बड़े खूबसूरत फिल्माए. वैसे गुरली साहब बहुत अच्छे डायरेक्टर माने जाते हैं, और सुना कि उसका जो एक डांस का सीक्वेंस था जिसमें आप थोड़ी सी घबरा गई थी, वो कौन सा सीक्वेंस था जिसमें दीवार पर चढ़ के डांस करना था?
1: या, या, या। आज फिर जीने की तमन्ना है, बहुत अच्छी तरह से पिक्चराइज किया गया था. उसका जो मूड था वो गाने में, उस म्यूजिक में, उसके लिरिक्स में और पिक्चराइजेशन में इतना उभर के आया, तो वो एकदम परफेक्ट था. तो चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, कुछ खंडर थे वहाँ पर, वो ऊंची सी दीवार थी, कुछ 6-7 फुट की और ज़्यादा चौड़ी भी नहीं थी, और बीच में एक गैप था. तो वो कहने लगे, आप इतनी खुश और इतनी, मतलब लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं, मगर खुश हैं. तो गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं. तो मुझे थोड़ी कभी कभी हाइट से वर्टिगो सा होता है. मैंने नीचे देखा, मैंने कहा अरे बाप रे, मैंने कहा टूटे हुए पत्थर, खंडर, मैंने कहा गिरे तो हड्डी तो जरूर टूटने वाली है, मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है? तो बोले 2-4 बार आप मेरे साथ रिहर्सल कीजिए, अगर आपको थोड़ा सा भी लगा कि पैर ये हो तो रुक जाना. मैंने कहा वो तो बाद में पता चलेगा, पैर फिसलेगा तो फिसलेगा. खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं.
0: गाइड की पूरी बात कर रहे हैं तो भी कम है, उसमें बहुत सारे दृश्य एक से बढ़कर एक हैं. वैसे जी, इसमें आपने रोजी का एक करेक्टर किया था, और उस दौर में विमेन लिप की बात अगर हम कर रहे हैं या नारी की मुक्ति की बात करें, इस तरह के आंदोलनों का नाम भी शायद लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन रूसी एक ऐसा करेक्टर जिसने उस स्त्री की जो एक परंपरागत इमेज थी, ट्रेडिशनल इमेज, उसको तोड़ा उसने. वो विद्रोही उसमें रिबेलियस है. तो अमूमन इस तरह के खतरे लेने से जो अभिनेता हैं, अभिनेत्रियां डरते हैं कि इससे उनकी इमेज पे फर्क पड़ेगा, पता नहीं पब्लिक उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी.
1: ये क्या हुआ, जब मैं फिल्मों में आई, मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी कि जो भी रोल हो उसका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए. और क्योंकि हो सकता हमारी फैमिली में कोई फिल्मी कनेक्शन नहीं था, परफॉर्मेंस से मेरा मतलब था. क्योंकि आजकल भी लोग पूछते हैं आपने CID का रोल कैसे किया, वो तो वैम्प का रोल था. फिर मैं कहती हूँ वो वैम्प का रोल नहीं था. अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से वैम्प वो होती है जो इंटेंशनली किसी का बुरा चाहती है. वो कैरेक्टर वैसा नहीं था, वो फंसी हुई थी, एक गरीब लड़की थी किसी के चुंगल में, उनके कहने पे जो भी कर रही है वो कर रही थी. रोजी का कैरेक्टर रोल लिया, मेरे दूसरे डायरेक्टर्स उन्होंने कहा आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं, आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मार रही हैं. मैंने कहा क्यों? तो बोले एक तो रोजी नाम है, और पहले सीन में ये दिखाया जाता है कि आप शादीशुदा औरत हैं, उसके बाद जाके आपका राजू से इश्क होता है, व्हाटएवर, तो ये कैसे हो सकता है, ये तो नेगेटिव कैरेक्टर है. फिर मैंने कहा भाई मैं नहीं मानती नेगेटिव कैरेक्टर या पॉजिटिव कैरेक्टर, ये एक कैरेक्टर है, एक नॉवल लिखी गई है. और ये नहीं कि अक्सर फिल्मी कहानियां क्या होती हैं, दिमाग में जिस आर्टिस्ट को लेने वाले हैं उनके पर्सनालिटी के हिसाब से लिखी जाती है. ये एक प्रोफेशनल ऑथर ने लिखी, उसको हम प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं. तो एक मेरी बन रही थी फिल्म नीलकमल, उसमें मेरा नाम था सीता और मनोज का नाम था मेरे ख्याल से राम, ऑब्वियसली. तो वो उन्होंने बहुत ऑब्जेक्ट किया, आपने ये रोजी का रोल किया, मेरी तो आपने बर्बादी कर दी, ये पिक्चर मेरी नहीं चलेगी, तो सीता का क्या होगा.

0: तो मैंने कहा एक बात बताइए, उसमें राजकुमार का एक कैरेक्टर है जो पिछले जन्म में हम दोनों का बड़ा प्यार है, तो इस जन्म में आते रहते मैं एज ए स्लीप वॉकर चली जाती हूँ, तो वो सीता का राम पिछले जन्म में कहाँ चला गया? जो तो इस जन्म में आप कह रहे हैं सीता को तो हर वक्त सीता के राम के साथ ही होना चाहिए, तो ये आर्ग्यूमेंट उनको अच्छा नहीं लगा, चुप हो गए। फिर भी मेरे ख्याल से गलत थी, आपकी गाइड जो है वो चलेगी नहीं और आपको बहुत मतलब क्रिटिसिज्म मिलेगा। मैंने कहा आई डोंट केयर, मुझे करना है, मुझे रोल बहुत अच्छा लगा।
1: और दोनों ही फिल्मों ने इतिहास रचा। आपको गाइड के लिए भी फिल्म फेयर अवार्ड मिला,
0: बिल्कुल सही है,
1: कमल के लिए भी मिला।
0: बिल्कुल,
1: कभी आपको ऐसा लगा कि ये दो फिल्मों को अगर हम छोड़ दें, किसी फिल्म में आपने बहुत अच्छा काम किया और उसके लिए आपको अवार्ड नहीं मिला, कभी अखरा कि नहीं इसके लिए भी मिलना चाहिए था मुझे?
0: मुझे अपना रोल मुझे जीने दो में बहुत अच्छा लगा था, वो भी कंप्लीट कस्म का रोल था, उसमें वेरिएशन बहुत थे इमोशंस के, कि एक तवायफ है उसको किडनैप किया जाता है, फिर उससे शादी होती है, फिर वो माँ बनती है, कैसे उसमें चेंज आता है, कैसे वो अपने हस्बैंड को डाकू को समझाती कि भाई छोड़ दो इन सब चीज़ों को, सरेंडर कर दो बच्चे की खातिर। सो देयर द इमोशंस के जो वेरिएशन और अप्स एंड डाउन्स थे, वो बहुत अच्छा कैरेक्टर था। मुझे लगा शायद उसमें अवार्ड मिलने का चांस है, वो नहीं हुआ, इट्स ओके।
1: डाकू की समस्या पर वो फिल्म थी।
0: हाँ।
1: सुनील दत्त साहब के साथ में।
0: हाँ जी।
1: और सुनील दत्त साहब के साथ में आपने खूब दौरे वाले भी किए फौजियों के साथ में, बीच में जाकर के खूब काम किया। हाँ। उनके साथ में, उनकी ट्रूप के साथ में जाते रही ना?
0: तो उनका था एक अजंता आर्ट्स ट्रूप एंटरटेनमेंट समथिंग ऐसे तरह का, तो हम लद्दाख गए थे उनके साथ, और रास्ते में जो भी सिलीगुड़ी जहाँ भी जाते जवान थे वहाँ, बहुत अच्छा भी लगता था उन लोगों को देखकर, खुशी भी होती थी, दुख भी होता था, यू नो। और काफ़ी प्रोग्राम वगैरह हमने किए। फिर बांग्लादेश वॉर के बाद वहाँ भी गए थे ट्रूप को एंटरटेन करने के लिए।
1: तो ऐसा है कि कुछ देर पहले ही हमने मुझे जीने दो की बात की है, तो उसमें भी बहुत अच्छा संगीत है, उसका कोई गाना जो आपको बहुत पसंद हो?
0: उसमें जयदेव जी का म्यूजिक था।

हजरत साहब ने ही उसका निर्माण किया। जयदेव साहब का उसमें संगीत था, रेशमा और शेर, और अमिताभ बच्चन साहब खास तौर से जो अपने खूबसूरत और गहरी दानेदार आवाज के लिए जाने जाते हैं, असरदार आवाज के लिए जो उनके डायलॉग सुनने जाते हैं, उसमें उनको गूंगा बना दिया गया।

0: बड़ा मजा आया। और हाँ, मैं मानती हूँ, मगर उस वक्त अमिताभ बच्चन इतने बड़े स्टार नहीं बने थे, और उससे पहले उन्होंने एक फिल्म की थी सात हिंदुस्तानी, ये उनकी दूसरी फिल्म थी। और सब उस वक्त सोचते थे कि इसमें अमिताभ बच्चन आगे क्या होगा इनका, क्योंकि एक तो माशाल्लाह बहुत लंबे हैं, और सब कहते थे थोड़े ऑकवर्ड से लगते हैं उनकी लंबाई की वजह से। तो मैंने कहा सुनील साहब भी बड़े लंबे हैं, वो भी उनको 6 फुट तो हैं होंगे ही। और जब पैकअप हो जाता था, कुछ करने को नहीं, रेगिस्तान में टेंटों में रहते थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो उस वक्त अमिताभ ये जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा काम है, रोज ढोलकी बजा के गाया करते थे। मगर उनके एक दो शॉट देखे मैंने रेशमा शेरा में, तो जब सुनील जा रहे हैं तो माँ कहती है छोटू उसको ये खाना दे दे, तो वो भागते हैं, तो तब तक वो ऊंट निकल चुके हैं, बहुत दूर चले गए। तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट का जो एक्सप्रेशन था अमिताभ का, जो बहुत अच्छा था। तो हम आपस में नरगिस जी हुआ करती थी बैठे, हम दूसरा शॉट हो रहे तो बैठे गप्पे मार रहे हैं। मैंने कहा मुझे लगता है ये एक दिन बहुत बड़े आर्टिस्ट बनेंगे। तो बोले कैसे, एक तो डायलॉग नहीं बिचारेगा, तुम किस हिसाब से कह रही हो। मैंने कहा नहीं, इस फिल्म में साइलेंट एक्सप्रेशन देना बहुत मुश्किल होता है, अगर इफ यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन अ साइलेंट एक्सप्रेशन तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और डायलॉग साथ में, मैंने कहा उसकी बाद उनकी आवाज इतनी अच्छी है, जब वो टॉकिंग डायलॉग आई मीन रोल मिल जाएगा, मेरे ख्याल से ही डू वेरी वेल। तो फीलिंग होती है कि ये बहुत बड़े आर्टिस्ट और स्टार बनेंगे, वो जो हो चुका।
1: मैंने तो अखबारों में पढ़ा कि अमिताभ बच्चन साहब ने भी कहा और अभिषेक बच्चन ने, उनके बेटे ने भी कहा कि हमारी फेवरेट एक्ट्रेस में से वहीदा जी हैं। और अमिताभ बच्चन साहब की बात करें तो आपने उनकी नायिका की भूमिका भी की है और उनकी
0: हाँ
1: माँ का किरदार भी अदा किया
0: हाँ
1: है।
0: बिल्कुल
1: कैसे कलाकार आगे चल के लगे आपको, वो जो शुरू में वो जो बात होती
0: हाँ
1: थी उस समय, बाद में तो सब कुछ बदल ही गया है पूरा,
0: या
1: उन्होंने साबित भी कर दिखाया, लेकिन आपका अनुभव कैसा रहा उनके
0: मेरा
1: साथ?
0: अनुभव उनके साथ बहुत ही अच्छा रहा है आज तक, रेशमा शेरा से लेकर आज तक। और क्या, हर इंसान बदलता है, उसमें बदलना भी चाहिए, स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए। मगर मेरे साथ तो उनका स्वभाव, जो भी कहिए, उनके बच्चे जया, सब कुछ का बहुत ही अच्छा रहा है। और वो इतने ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, पंक्चुअल हैं, उनके साथ कई फिल्में काम की तो कोई तकलीफ परेशानी कुछ भी नहीं हुआ। ये नहीं कि बहुत बड़े स्टार हो गए, जब मैंने कैरेक्टर रोल शुरू कर दिए तो उनमें बदलाव आ गया कि नहीं, बहुत ही है, मतलब इट्स वेरी क्रेडिटेबल, बहुत ही
1: कोई
0: अच्छा है उनका ये।
1: दिलचस्प सीन याद है उनके साथ किया हुआ आपको किसी फिल्म का?
0: हाँ, रेशमा और शेरा में वो न्यू कमर थे, एक सीन था एंड में कि मैं उसको तमाचा मारती हूँ बड़े जोर का, तो इत्तेफाक से आंटी बच्चन मतलब अमिताभ की वालदा सेट पे बैठी थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोले वहीदा बहुत जोर का नहीं लगाना तमाचा। ओ, मैंने कहा, उधर से सुनील दत्त ने कहा जी एक कसके लगाइए ताकि रीटेक की जरूरत नहीं। मैंने कहा ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। फिर मैं वापस गई जहाँ आंटी बैठी थी, तो मैंने कहा आंटी आप क्यों नहीं थोड़ा बाहर घुमाइए, कितनी देर से गर्मी में कहाँ बैठी हैं आप सेट पे, आप जरा बाहर ताजी हवा खाइए। फिर कहे तुम पता है मुझे क्यों बाहर भेज रहे हो, मैंने कहा क्यों, तुम कस के मारने तो मैंने कहा देखिए अगर मैं एक कस के मारूं तो वो शॉट खत्म हो जाएगा, अगर गलत ठीक नहीं हुआ वो डायरेक्टर कहेंगे और एक टेक और एक टेक, फिर 6 तमाचे पड़ेंगे उसको, तो हंसने लगी। बोले नहीं नहीं अच्छा मैं जाती हूँ। फिर मैंने सुनील दत्त को कहा डायरेक्टर को, देखिए अगर तमाचा पड़ने से पहले कोई गलत पोजीशन मेरी या डायलॉग गलत बोल दिया कुछ भी हो तो पहले काट दीजिए, बेचारे को क्यों इतने तमाचे मारूं, पहले तो आंटी ने मुझे कॉन्शियस कर दिया क्या कस के नहीं मार रहे, बाद में एक दिया मैंने बहुत कस के
1: यहाँ हम रेशमा और शेरा, जिसका संगीत बहुत ही खूबसूरत है, जयदेव साहब ने इसका बहुत ही दिल को छू लेने वाला संगीत दिया है, कोई गाना हो जाए। रेशमा और शेरा का?
0: रेशमा का सर वो एक मीठी सी चुबन, एक हाँ बहुत मीठा गाना, बहुत अच्छा है।
2: एक मीठी सी चुबन, एक ठंडी सी अगन,

0: सुहैना जी, आपको अपनी मतलब किस फिल्म की भूमिका बहुत चुनौतीपूर्ण लगी, बहुत चैलेंजिंग लगी?
1: मैं तो कहूंगी गाइड का रोल, इसलिए तो 40 साल पहले बनी फिल्म, 40 साल हो गए हैं, बियॉन्ड इट्स टाइम, और इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट रोल. कभी वो रोल देख के ये नहीं लगा कि ये बुरी औरत है, यू नो, जस्टिफिकेशन था. और एक था, दे वर नॉर्मल कैरेक्टर्स, जैसे कि मार्को का या राजू का या रोजी का, कि हर इंसान हर वक्त कोई सेंट तो होता नहीं है और ना ही पूरा बुरा होता है. और एक पॉइंट आता है लाइफ में, सिर्फ जो अपने आप के लिए जीना चाहते हैं, जो भी चीज़ हम अपने लिए करना चाहते हैं. तो रोजी का पैशन था डांस करना, वो उसको मार्को से नहीं मिलता, तो उसको एंकरेजमेंट राजू से मिलता है. फिर एक पॉइंट आता है जहाँ सडनली राजू सेल्फिश हो जाता है, कि वो एक जगह एक सीन कहते हैं, अभी बस मैं रिटायर होना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ. राजू कहते हैं, नहीं अभी तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने हैं, अभी जल्दी क्या है. ये कहती है, नहीं मुझे बच्चे चाहिए. अरे बच्चे भी हो जाएंगे, इसकी क्या. उस वक्त राजू सेल्फिश हो जाता है, उसको एक अय्याशी की आदत पड़ जाती है, पत्ते खेलना, शराब पीना. वो कहते हैं, कहाँ से जिम्मेदारी लें शादी बच्चों की. सो हर एक मौके पे, कभी मार्को सेल्फिश हो गया था तो अपने पैशन में, तो उसने अपनी बीवी को भूल जाता है. अब रोजी पैशनेटली डांसर बनना चाहती, वो बन जाती है, फिर कहती है, नाउ आई वांट टू गेट सेटल्ड. फिर उस वक्त राजू कहते हैं, नहीं अभी कहाँ सेटल होंगे. तो ये चीज जो थी उसको बड़े डेलिकेट ये था. सो यू नेवर फील, जब आप मूवी देखते हैं, कि ये कैरेक्टर अच्छा नहीं है, ए बैड पर्सन. नो, नोबडी इज बैड एंड नोबडी इज गुड.
0: देव साहब के साथ में, और जो आपके क्योंकि वो भी बड़े सदाबहार अभिनेता रहे हैं, और उनके साथ में आपकी बड़ी यादगार फिल्में रही हैं, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे उनके बारे में कुछ, और आपकी मन की बातें कुछ और बताइए उनके बारे में, कैसा है उनके साथ में केमिस्ट्री थी आपकी खास उससे. एक होता है कि अभिनेता और अभिनेत्री के बीच में एक वही ट्यूनिंग वाली बात है, फिर एक इंसान के रूप में भी हमारे रिश्ते होते हैं, कैसे थे वो.
1: जैसे मैंने कहा, वो भी बड़े टॉकेटिव नहीं, उनको बात करने बाहर निकालना पड़ता था सवाल कर करके. तो हम प्रेम पुजारी जब सुनाने आए, तो वो उनकी पहली डायरेक्टोरियल डेब्यू डायरेक्टोरियल मूवी थी, तो कहने लगे, मैं पहली बार डायरेक्ट कर रहा हूँ तो तुमको तो करना ही पड़ेगा. मैंने कहा, अच्छा ठीक है, कर लेंगे.
0: इतना हक,
1: हाँ हक.

0: बता रहे थे जैसे, तो बड़े कोऑपरेटिव, बड़े अच्छे प्रोड्यूसर हैं, उनके साथ कोई ऐसी तकलीफ नहीं होती। जब हम यूरोप गए थे प्रेम पुजारी की शूटिंग के लिए, लंदन, स्विट्जरलैंड, बार्सिलोना वगैरह, तो वो काफ़ी केयर लेते थे बहुत अच्छी तरह से। तो ही इज वेरी नाइस एज अ प्रोड्यूसर,
1: और एक एनर्जी से भरे हुए
0: बेहिसाब। मैं तो उनको मजाक में एवर रेडी बैटरी बुलाती हूँ क्योंकि वो कभी थके, कभी मैं तो कहती भाई मैं थक गई अभी पैकअप कर लें, तो वो तो कभी नहीं कहते थे। वो उतने, जब खासकर जब वो प्रेम पुजारी डायरेक्ट कर रहे थे तो शॉट देते थे, शॉट अरेंज किया, ओके हो गया, फिर कैमरामैन को कहते थे ये शॉट है ऐसा है, फिर भाग दौड़, फिर वो पसीना पसीना हो जाते थे, तो ऊपर कमरे में मेकअप रूम में जाते थे, फिर ताज़ी शर्ट पहन के आते थे ताकि पसीने वाली शर्ट नहीं हो शॉट के लिए। फिर वो हुआ, फिर उसको सुखाते थे, वो कहते थे, मैं कहते देव आप हमेशा all the time you're full of energy, so you I will call you ever ready battery.
1: अभी भी उनके अंदर जैसे एक नौजवान होता है,
0: बिल्कुल,
1: और वो फिल्में बनाए जा रहे हैं और बेशक वो सफलता मिले ना मिले लेकिन वो कारवां नहीं रुका है, उनका वो जज्बा अभी भी वैसे ही है और फिल्में बनाए जा रहे हैं। तो अभी उनसे कभी फोन पे आपकी बातचीत होती, मुलाकात होती है?
0: नहीं, तो एक बार फिल्म खत्म हो जाती है हम कभी एक दूसरे से मिलते ही नहीं किसी से भी, क्योंकि सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं। मेरे जो फिल्मों में दोस्त हैं वो एक्सेप्ट नंदा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और उसके बाद सिवाय काला बाजार के बाद हमने कोई काम ही नहीं किया, मगर 40-45 साल की दोस्ती रही है। सलीम साहब हैं, यश जौहर हैं, जो जौहर थे बेचारे, उनसे, उनके फैमिली से, वैसे भी काम से कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि उनकी फिल्मों में तो यश जौहर के काम नहीं किया। हालांकि यश जौहर को मैं तब से जानती हूँ जब वो मुझे जीने दो में थे प्रोडक्शन कंट्रोलर, और फिर नवकेतन में थे गाइड के वक्त, प्रेम पुजारी में थे, तो तब से मुलाकात दोस्ती है, वो हमेशा मिलते रहे हम।
2: दोस्तों वहीदा जी से कर

0: श्रोता नमस्कार। मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजने को हैं। आरंभ होती है आज की सायंकालीन सभा। सभा की शुरुआत में सुनिए हिंदी में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र के माध्यम से रिले कर रहे हैं।
1: 366.3 मीटर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी ने कुवैत में रहने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा के प्रति ध्यान देने के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जैसे विशाल भू सीमा वाले देश में सीमा प्रबंधन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।
1: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर स्थित रक्षा भूमि पर बड़े पैमाने की पहली सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधा शामिल है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये 250 मेगावाट की सौर परियोजना उत्तर प्रदेश में रक्षा प्रतिष्ठानों की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी और बिजली खर्च में दीर्घकालिक बचत भी करेगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। श्री प्रधान ने कहा कि सरकार राज्यों के साथ भी सक्रिय रूप से समन्वय कर रही है।
1: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्ष में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ देश को मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। भारत की विदेश नीति में पिछले 12 वर्षों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इसमें ब्रांड इंडिया और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत संकट के समय सबसे पहले मदद करने वाले देश के रूप में विकासशील और अल्पविकसित देशों की आवाज बनकर उभरा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वो धार्मिक शब्दावली के जरिए अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना उल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया है। श्रीलंका के दामुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका को 278 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ए ने ताजा समाचार मिलने तक 36 ओवर में 5 विकेट पर 200 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी देर में युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: लीजिए बारा, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आपकी पसंद आपका गाना और आवाज होगी आपकी। जी हाँ, आकाशवाणी का सबसे चहेता प्रोग्राम हेलो फरमाइश अब आप सुनेंगे हर रविवार प्रातः 10:05 पर। कर लीजिए तैयारी क्योंकि हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच होगी हमारी रिकॉर्डिंग। तो देर किस बात की, अभी उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0551220 5386। 0551 हमारा STD नंबर है गोरखपुर का। नंबर एक बार फिर से 2205386। अपनी फरमाइश हमें बताइए और जुड़िए आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। कॉल करना भूलिएगा मत, हर शनिवार दोपहर 11 बजे से 12 बजे के बीच।
5: नमस्कार, आज के शिववाणी कार्यक्रम में मैं प्रकृति आप सभी युवाओं का स्वागत करती हूँ। शुरू करते हैं आज के सुविचार से। साथियों, जीवन में किसी भी स्थान में अगर आपको हार हासिल करने के बाद, किसी भी जीवन के किसी भी हिस्से में अगर आपको हार का सामना करना पड़ता है, ऐसे में अगर आप हारने के बाद अपने साथ एक चीज़ हमेशा थामे रखें या एक चीज़ अपने व्यक्तित्व में बनाए रखें, वो है प्रयास करना। यानी कि अगर आप प्रयास करते रहने के लिए तत्पर हैं, तो विश्वास मानिए आप जीवन के किसी भी हिस्से में हार नहीं सकते हैं, क्योंकि आप एक प्रयासरत व्यक्ति हैं। ये था आज का सुविचार, इसी के साथ चलते हैं चर्चा की ओर। भारत की स्वतंत्रता के इतिहास में अनेक ऐसे वीरों का योगदान रहा है जिन्होंने अपने साहस, त्याग और बलिदान से देशवासियों को अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा दी है। इन्हीं महान स्वतंत्रता सेनानियों में भगवान बिरसा मुंडा का नाम अत्यंत सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है। वे केवल एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, बल्कि आदिवासी समाज के महान जननायक, समाज सुधारक और क्रांतिकारी नेता थे। उनके द्वारा चलाया गया आंदोलन अंग्रेजी शासन और शोषण के विरुद्ध एक सशक्त आवाज बनकर उभरा। प्रत्येक वर्ष 9 जून को उनका शहादत दिवस मनाया जाता है और उनके अद्वितीय योगदान को स्मरण किया जाता है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलिहात गांव में हुआ था। बचपन से ही उन्हें आदिवासी समाज पर हो रहे अत्याचार, शोषण और भेदभाव को देखा और अंग्रेजी शासन साथ ही जमींदारों द्वारा आदिवासियों की भूमि छीनने और उन पर अत्याचार करने के विरुद्ध का उन्होंने संघर्ष का मार्ग चुना। अंग्रेजी सरकार बिरसा मुंडा के बढ़ते प्रभाव से भयभीत हो गए। वर्ष 1900 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और रांची जेल में बंद कर दिया गया। 9 जून 1900 को मात्र 25 वर्ष की आयु में, यानी कि आज ही की तारीख को, सन 1900 को मात्र 25 वर्ष की आयु में उनका जेल में निधन हो गया। हालांकि उनका जीवन अल्पकालिक रहा, लेकिन उनके विचार और संघर्ष आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। बिरसा मुंडा शहादत दिवस हमें उनके साहस, देशभक्ति और सामाजिक न्याय के प्रति समर्पण की याद दिलाता है। उन्होंने आदिवासी समाज को स्वाभिमान और अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। उनका बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सदैव अमर रहेगा। आज आवश्यकता है कि हम उनके आदर्शों को अपनाएं और समाज में समानता, न्याय, भाईचारे की भावना को मजबूत करें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साथियों, ये थी चर्चा, इसी के साथ आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है। मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना

साथियों, आप सुन रहे थे एक प्यारा सा गीत और अब इसी के साथ चलते हैं चर्चा की ओर। साथियों, आज पृथ्वी अगर देखा जाए तो वो तप रही है। गर्मी के इस मौसम में पारा 50 डिग्री तक चला जा रहा है और सबके पास इस वक्त केवल एक शिकायत है, आखिर इतनी गर्मी पड़ क्यों रही है। ऐसे में ये समझना महत्वपूर्ण है कि हमें यह पृथ्वी बहुत कुछ देती है, लेकिन क्या हम बदले में इसको सहेज भी पाते हैं। हम सभी को हमारे माँ बाप या हमारे घर के बड़े बुज़ुर्ग कुछ तोहफा देते हैं जिसको हम एक धरोहर के रूप में कह सकते हैं। वो घर का पुराना बक्सा, अलमारी, कोई जेवर या फिर कोई भी वस्तु, हम अक्सर उसे जतन से रखते हैं अपने आने वाली पीढ़ी को दे सके इसलिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस पृथ्वी पर जब हम आते हैं तो ये भी एक तोहफा है जो हमें संरक्षित करने के लिए मिलती है, ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ी को सहेज कर ठीक उसी तरह से दे सकें जैसे हमें मिली थी। ऐसे में चाहे वो तपता मौसम हो या फिर सूखा, हमें पृथ्वी से मिल रही हर चीज़ का सही तरीके से उपयोग करना है, क्योंकि संचय से ही बचत की जा सकती है। इसलिए पृथ्वी को संरक्षित रखने के लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें। इस तपती गर्मी में एकमात्र पेड़ ही है जो आपको छांव, ठंडी हवा और ऑक्सीजन, वो तीनों चीज़ों की जो सबसे ज़्यादा आपको इस वक्त ज़रूरत इस मौसम में लग रही है, वो तीनों चीज़ें आपको एक पेड़ के माध्यम से मिल सकती है। लेकिन आप अपने आसपास एक दौर याद करिए, जब आप सड़कों पर निकलते थे, बहुत उस समय भी गर्मी जब होती थी, तो आपको छांव देने के लिए सड़कों पर पेड़ हुआ करते थे। लेकिन अब जिस तरीके से नवीनीकरण होता जा रहा है, सड़कों का चौड़ीकरण होता जा रहा है, नई नई इमारतें बनती जा रही हैं, हम बहुत तेज़ी से विकास तो कर रहे हैं, लेकिन उस विकास के साथ साथ हम ये भूलते जा रहे हैं कि हमारी पृथ्वी किस ओर जा रही है, हमारी पृथ्वी पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में अगर आप कोई एक चीज़ है जिसको मुझे लगता है कि अपना कोई एक दिन, अपना जन्मदिन या अपने परिवार में कोई भी एक ऐसा दिन तय कर लें साल भर में, या साल भर में 3 से 4 बार जब भी आपसे मुमकिन हो पाए, कि आप उस रोज़ वृक्षारोपण करें। अच्छा, वृक्षारोपण करने के बाद आपकी ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे घर में एक बच्चा आता है। एक पेड़ लगाने के बाद अक्सर ऐसे बहुत से पेड़ लगाए जाते हैं, जैसे कि अभी हाल ही में 5 जून की तारीख बीती है तो बहुत से पेड़ लगाए गए होंगे, लेकिन क्या उस पेड़ को कभी आप झांकने भी जाते हैं कि उसकी स्थिति क्या है 6 महीने बाद, साल भर बाद, या शुरुआती दौर में, जैसे बच्चा जब एक जन्म नवजात शिशु होता है उसको 6 घंटे तक बहुत ही ध्यान देना पड़ता है कि वो उसको सही से श्वास प्रणाली उसकी सब कुछ सही चल रही हो। ठीक उसी प्रकार हम अगर एक पेड़ को लगाते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उसको शुरुआती समय में ध्यान से रखें, सहेज के रखें, ताकि वो संरक्षित हो सके। तो केवल वृक्षारोपण ना करें, वृक्षारोपण तो करें ही करें, उनका सेवन अच्छे से करें और अपने पर्यावरण को बचाएं, उनको संरक्षित करें। ये था साथियों चर्चा, इसी के साथ आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

की स्थिर भविष्य, सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक सुरक्षा का प्रतीक भी है। इसी के साथ जून 2026 में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण भर्तियां निकाली गई हैं, जिनसे लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। ये भर्तियां कुछ इस प्रकार हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि RRB में सहायक लोको पायलट ALP की पोस्ट जारी है। भारतीय रेलवे ने 11,127 सहायक लोको पायलट ALP पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की है। आवेदन प्रक्रिया मई से शुरू होकर जून 2026 तक जारी है। रेलवे क्षेत्र में नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह एक बड़ा अवसर माना जा रहा है। इसी के साथ साथियों, बैंक ऑफ बड़ौदा अप्रेंटिस भर्ती में के द्वारा 5,000 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है, जिससे अधिक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाने वाले युवाओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रेड बी अधिकारी के 60 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। यह देश की सबसे प्रतिष्ठित बैंकिंग नौकरियों में से एक मानी जाती है। प्रारंभिक परीक्षा 13 जून 2026 को आयोजित की जानी है। संघ लोक सेवा आयोग ने NDA सेकेंड और CDS 2 परीक्षाओं के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। सेना, नौसेना और वायुसेना में अधिकारी बनने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 15-16 प्रवक्ता लेक्चरर पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। यह भर्ती राज्य के सरकारी इंटर कॉलेजों के लिए जारी की जा रही है। तेलंगाना लोक सेवा आयोग ने 222 असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के लिए यह महत्वपूर्ण अवसर है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार SSC, UPSC, रेलवे, रक्षा, बैंकिंग तथा विभिन्न मंत्रालय में कुल 3.78 लाख से अधिक पद विभिन्न चरणों में रिक्त हैं। यह भर्ती प्रक्रिया है। इससे स्पष्ट है कि सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से आप भर्ती की सूचनाएं देखते रहें। एक निश्चित अध्ययन योजना बनाकर तैयारी करें। करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान पर विशेष ध्यान दें। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अभ्यास करें। आवेदन की अंतिम तिथि का विशेष ध्यान रखें। साथियों, ये था रोजगार समाचार। इसी के साथ आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

साथियों, आप सुन रहे थे एक प्यारा सा गीत और अब वक्त हो चला है रोजगार समाचार का। आज के समय में सरकारी नौकरी युवाओं के लिए केवल रोजगार का माध्यम नहीं बल्कि

साथियों, आप सुन रहे थे एक मनमोहक गीत, और अब इसी के साथ वक्त हो चला है प्रश्नोत्तरी का। कल का प्रश्न था, रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? कल का प्रश्न था, रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, हर वर्ष रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। हर वर्ष 14 जून को रक्तदान दिवस मनाया जाता है। साथियों, इसी के साथ आज का प्रश्न है, विश्व का पहला ग्लोबल यूनिवर्सिटी फॉर वाइल्ड लाइफ एंड वेटनरी साइंसेस किस संस्था ने शुरू किया है? प्रश्न एक बार और, विश्व का पहला ग्लोबल यूनिवर्सिटी फॉर वाइल्ड लाइफ एंड वेटनरी साइंसेस किस संस्था ने शुरू किया है? साथियों, इसका उत्तर आपको कल के कार्यक्रम में मिलेगा। तो अब इसी के साथ आपकी दोस्त प्रकृति के जाने का वक्त हो चला है। मिलते हैं अगली बार कुछ नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का खास ख्याल रखिएगा। नमस्कार।

आज का युवाणी लेकर के आई थी प्रकृति त्रिपाठी। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आपसे थोड़ी देर में ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: कैंडल हर पल चंदन का एहसास।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी पसंद आपका गाना और आवाज होगी आपकी। जी हाँ, आकाशवाणी का सबसे चहेता प्रोग्राम हेलो फरमाइश अब आप सुनेंगे हर रविवार प्रातः 10:05 पर। कर लीजिए तैयारी क्योंकि हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच होगी हमारी रिकॉर्डिंग। तो देर किस बात की, अभी उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0551220 5386। 0551 हमारा STD नंबर है गोरखपुर का। नंबर एक बार फिर से 2205386। अपनी फरमाइश हमें बताइए और जुड़िए आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। कॉल करना भूलिएगा मत हर शनिवार दोपहर 11 बजे से 12 बजे के बीच।
4: पंचों जय हिंद। हाँ, पंच भाई लोगन नारा लगल और यही नारा के साथ ही जौन अपन बैठ की शुरू हो भाई।
5: बिल्कुल सही।
4: और कहल जाला कि जौन आज हमन जा इतनी आजादी से कहीं भी आ जा रहल हैं, अपन बात रख सकत हैं, इस सब कुछ पहले ऐसा नारा कहें कि अपन देश जौन रहा अंग्रेजन का गुलाम रहा और सारा नियम कानून जौन रहा तौन अंग्रेज ही बनावा। यहाँ तक कि जौन हमन जा खेती भी करी ओमे कौन फसल बोए खे वो भी जौन है अंग्रेज ही तय करत रहना और अनाज का ज्यादा से ज्यादा भाग जौन है वो कर के रूप में सबसे लेत रहना। और क्या ये सबसे सब परेशान जब जनता हो गई तो आजादी का एक संग्राम छेड़ दहला और सबके भी 1857 का क्रांति थे याद है, उसमें कितना लोग तभी से शुरुआत मानल गए, उसमें बहुत सारे लोग वो आंदोलन में अला, वही में से एक ठो आंदोलन छेड़े रहना बिरसा मुंडा। और ये आजादी चूंकि आदिवासी रहला और आदिवासी लोग इनके भगवान के रूप में मानत रहला।
5: बिल्कुल सही है। देखल जा आप कहानी की आदिवासी लोग इनके भगवान के रूप में मानत रहना और इतना बढ़िया आप शुरुआत ही कहनी बतावले को कोशिश ही कहनी लोगन के कि देश के प्रत्येक भाग से चाहे वो कौनो समाज से हो के चाहे कौनो समुदाय से हो के वो आज़ादी के लड़ाई में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे, चाहे परोक्ष रूप से चाहे प्रत्यक्ष रूप से। ऐसने में एगो राणा बिरसा मुंडा जौन अल्पायु में ही अंग्रेजन से जल जंगल और जमीन के सुरक्षा संरक्षा के खातिर अंग्रेजन से लड़ गई ने। काहे से अंग्रेज जौन है उनकर मुख्य उद्देश्य रहल कि जौन भी यहाँ के मूल वस्तु बा चाहे मूल धरोहर बा उके नष्ट कर दिया जाए तो जौन यहाँ के रहे वाले लोग बा उनके अपने आप तहस नहस हो गई हैं और उनके गुलामी स्वीकार करी हैं। लेकिन यही में एगो बिरसा मुंडा जौन रहले वो उनके बात के स्वीकार नहीं कैले और इन्हन के जुल्म जाति के खिलाफ जौन अंग्रेज रहले उनके जुल्म जाति के खिलाफ अपन लड़ाई अभियान तेज कैले जल जंगल जमीन के बचौले खातिर वो हर संभव प्रयास कैले कि जैसे भी हो के वो अपने समाज के लोग के जो आदिवासी लोग बट उनके जगा के शिक्षित कई के तरह तरह के तैयारी कई के समझौले के कोशिश कैले कि ये जो अंग्रेज बाटे हमहन खातिर और हमारे संरक्षा सुरक्षा और अपने धरोहर खातिर बहुत बड़बर दुश्मन है। अंत में ये भाई कि उनके 25 वर्ष के आयु में जेल में डाल दिया गए और जेल में अब कहे के तो बहुत कुछ कहा जाला लेकिन उनके जो है

0: आजू के दिन जो आज 9 जून है उनका निधन हो गए, और यही निधन पे आज के दिन में पूरे भारतवर्ष में उनके शहीदी दिवस
1: मनावल
0: मनावल
1: जा
0: जाला।
1: रहल बा। ये एगो जौन है महान जौन है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहला, इनके समाज सुधारक और धार्मिक नेता रहला, और कहल जाला कि इनके ही नाम से है जौन बिरसा मुंडा विद्रोह भी जानल जाला, और कहल जात रहल कि एके जौन है उल गुलान विद्रोह के नाम से भी जानल जाला, जेकर नेतृत्व ही कैले रहला। तो आज इनके शहीदी दिवस पर उनके सब लोग नमन करत हवा और उनके योगदान के आज भी याद कईल जा रहल बा।
0: बिल्कुल सही बात। यही योगदान के याद कैले के साथे साथे हम चाहता थी कि पंच भाई जो है एगो कविता पाठ सुना। कविता पाठ है हिंदुस्तान जिंदाबाद, ओकरे बाद बैठ के आगे बढ़े।
2: मैं डॉक्टर मुकेश कबीर, गीतकार। मैं भोपाल से और गोरखपुर आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आप सबसे रूबरू हो रहा हूँ और मैं अपने कुछ गीत आपको सुनाना चाहता हूँ, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप सबके बीच में आने का मौका मिला है। क्योंकि मैं देश प्रेम का कवि हूँ, तो मैं सबसे पहले अपने भारत देश की वंदना आपके सामने करना चाहता हूँ, आपके साथ करना चाहता हूँ। भारत के रहने वाले हैं, भारत की महिमा गाएंगे। भारत के रहने वाले हैं, भारत की महिमा गाएंगे। भारत के रहने वाले हैं, भारत की महिमा गाएंगे। भारत के रहने वाले हैं, भारत की महिमा गाएंगे। चाहे जितने कष्ट मिले पर जन्म यहीं पर चाहेंगे। वो खुद मिटकर भी करते रहेंगे इसको हम आबाद। वो खुद मिटकर भी करते रहेंगे इसको हम आबाद।

हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और ये बंद देखिए, भारत में ही गंगा जैसी नदियां कल कल करती हैं, भारत में ही गंगा जैसी नदियां कल कल करती हैं, जिनकी लहरें दुष्टों को भी पल में निर्मल करती हैं, जिनकी लहरें दुष्टों को भी पल में निर्मल करती हैं। वो यहाँ के अमृत सर का अमृत महादेव भी चखते हैं, वो यहाँ के अमृत सर का अमृत महादेव भी चखते हैं, वो बाबा अमरनाथ के घर मुर्दे भी जीने लगते हैं, बाबा अमरनाथ के घर मुर्दे भी जीने लगते हैं। वो यहाँ के कंकर पत्थर भी, वो यहाँ के कंकर पत्थर भी भक्ति का भाव समझते हैं, वो यहाँ के कंकर पत्थर भी, यहाँ के कंकर पत्थर भी भक्ति का भाव समझते हैं, भगवान की राह बनाने को पानी पे तैरने लगते हैं, भगवान की राह बनाने को पानी पे तैरने लगते हैं। वो यहीं पे दुनिया का हर मजहब होता है आबाद, यहीं पे दुनिया का हर मजहब होता है आबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और दूसरा बंद देखिए, जो भारत की संस्कृति को लेकर है। और यहाँ के गालिब मीर की गजलें पत्ता पत्ता बोलता है, यहाँ के गालिब मीर की गजलें पत्ता पत्ता बोलता है, और बिस्मिल्ला की शहनाई पे अमरीका भी डोलता है, बिस्मिल्ला की शहनाई पे अमरीका भी डोलता है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम केरल की कथक कलिया, तमिलनाडु का भरतनाट्यम केरल की कथक कलिया, गुजराती गरबा पंजाबी गिद्धा राजस्थानी कलबेलिया, गुजराती गरबा पंजाबी गिद्धा राजस्थानी कलबेलिया। अलग अलग भाषा संस्कृति के, अलग अलग भाषा संस्कृति के, वो चाहे रंग अनेक हैं, अलग अलग भाषा संस्कृति के, वो चाहे रंग अनेक हैं, वो फिर भी केरल से करगिल तक सारा भारत एक है, फिर भी केरल से करगिल तक सारा भारत एक है। वो इसकी एकता तोड़ने की, इसकी एकता तोड़ने की, अरे सोचने वालों मुर्दाबाद, हिंदुस्तान

मानकर पूजा गया है, तो पूरी दुनिया में इससे अच्छी कहीं मिसाल नहीं मिलेगी पर्यावरण के को बचाने के लिए, पर्यावरण को संवारने के लिए, पर्यावरण को सम्मान देने के लिए। हमारे जिंदगी में वन का क्या महत्व है, पेड़ का क्या महत्व है, उसके लिए मैं आपको एक मुक्तक सुनाना चाहता हूँ, फिर ये वाला अपना बंद रखूंगा।

जीवन में एक पेड़ लगा लो समझो चारों धाम हुए, जीवन में एक पेड़ लगा लो समझो चारों धाम हुए। क्योंकि पेड़ को जब हम बचाते हैं तो हम अपनी खुद की रक्षा कर रहे हैं, और इसलिए हमारे देश में परंपरा रही है जंगलों को पूजने की, जंगलों को सम्मान देने की। तो उसी सिलसिले का मैं आपको बंधु सुनाना चाहता हूँ। भारत ऐसा देश जहाँ पर जंगल पूजे जाते हैं, भारत ऐसा देश जहाँ पर जंगल पूजे जाते हैं, बरगद पीपल बैर आंवला देवता माने जाते हैं, बरगद पीपल बैर आंवला देवता माने जाते हैं। बेल पत्र ना हो तो भोले बाबा खुश नहीं हो पाते, बेल पत्र ना हो तो भोले बाबा खुश नहीं हो पाते, तुलसी के बिन हम भगवान को भोग भी नहीं भोग भी ना लगा पाते, तुलसी बिन हम भगवान को भोग भी नहीं लगा पाते। भारत के राजकुमारों को जब, भारत के राजकुमारों को जब महलों ने ठुकराया है, भारत के राजकुमारों को जब महलों ने ठुकराया है, तब जंगल ने अपना कर उनको भगवान बनाया है, तब जंगल ने अपना कर उनको भगवान बनाया है। जंगल ना होगा तो कौन करेगा राम को याद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमारे देश में हमने भगवान की पूजा करना दुनिया को सिखाया है, वृक्षों की पूजा करना हमने दुनिया को सिखाया है, गुरु की पूजा करना हमने सिखाया है, और बुजुर्गों की पूजा करना हमने सिखाया है। सारी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है भारत जहाँ पर हमने बुजुर्गों को भी भगवान की मान्यता दी। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बुजुर्ग लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं अपने बच्चों के बारे में, उन्होंने जो परवरिश की वो उसके बारे में वो क्या बोलते हैं और क्या उनकी फीलिंग है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और हमें क्या करना चाहिए, बुजुर्गों का सम्मान हमें करना चाहिए, उसी के लिए मैंने ये गीत आपको सुनाना चाहता हूँ। और जिन पौधों को सींचा था हमारे खून से हमने, बच्चों के बारे में बोल रहे हैं बुजुर्ग, जिन पौधों को सींचा था हमारे खून से हमने, के जिन पौधों को सींचा था हमारे खून से हमने, उन्हीं पेड़ों की पत्ती अब हमारा घर जलाती है, उन्हीं पेड़ों की पत्ती अब हमारा घर जलाती है। वो फल मिलते हैं गैरों को हमें बस गंध आती है, फल मिलते हैं गैरों को हमें बस गंध आती है, फल मिलते हैं गैरों को हमें बस गंध आती है। ये उनका दर्द है बुजुर्गों का, और वो क्या कहना चाहते हैं परवरिश के बारे में, किस तरह से उन्होंने पाला है कष्ट सहकर। चलती थी हवा कातिल तो हम आंचल से ढकते थे, चलती थी हवा कातिल तो हम आंचल से ढकते थे, कुल्हाड़ी दिखती तो अपने कलेजे ढाल बनते थे, कुल्हाड़ी दिखती तो अपने कलेजे ढाल बन

गिर जाती है जब उनकी टहनियां हम पर कुल्हाड़ी अब चलाती है, जब उनकी टहनियां हम पर कुल्हाड़ी अब चलाती है। फल मिलते हैं वैरों को हमें बस गंध आती है, फल मिलते हैं वैरों को हमें बस गंध आती है। और ये जो जनरेशन गैप है उसके बारे में बुजुर्गों का क्या सोचना है, क्या मानना है? कहते थे मेरे बाबा के सच्चा आशियाना वो, कहते थे मेरे बाबा के सच्चा आशियाना वो, कि जिसकी छत पे बूढ़े बरगदों का शामियाना हो, जिसकी छत पे बूढ़े बरगदों का शामियाना हो। कहते थे मेरे बाबा के सच्चा आशियाना वो, कि जिसकी छत पे बूढ़े बरगदों का शामियाना हो, जिसकी छत पे बूढ़े बरगदों का शामियाना हो। मगर शो प्लांट की दुनिया मेरे बच्चों को भाती है, मगर शो प्लांट की दुनिया मेरे बच्चों को भाती है। तभी तो बाग में जड़ बरगदों की

0: की है, कभी तो बाग में जड़ बरगदों की हार जाती है। फल मिलते हैं वैरों को हमें बस गंध आती है, फल मिलते हैं वैरों को हमें बस गंध आती है, हमें बस गंध आती है, हमें बस गंध आती है।
1: पंच भाई अभी आप सुनल गेल काव्य पाठ हिंदुस्तान जिंदाबाद, जे के सुनात रहने डॉक्टर मुकेश कबीर। इतना बढ़िया काव्य पाठ सुनौल और लगे हाथ एगो और वार्ता सुन लिहल जा। लोक जीवन में कवित्व व मुहावरे जे पर जानकारी दे रहल बटन श्री नीरज कुमार वर्मा ताई सुनी जा।
2: लोक जीवन को यदि हम सामान्य रूप से परिभाषित करें तो इसका अर्थ हम आम जन जीवन से लगाते हैं। भारत के संदर्भ में देखें तो इस देश की अधिकांश जनसंख्या गांव में बसती है। गांव ही भारतीय संस्कृत व सभ्यता की आत्मा है। यह सही है कि आज के इस वैज्ञानिक युग में लोगों के रहन सहन, खान पान तथा सोच विचार में परिवर्तन के साथ साथ विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण खेती किसानी के तरीके में भी परिवर्तन हुए हैं। मौसम संबंधी जानकारी तथा बीज की गुणवत्ता के विषय में हम ज्ञान विज्ञान के माध्यम से सहज ही जान सकते हैं। अब यहीं पर यह प्रश्न उठता है कि जब हम आर्थिक तथा यांत्रिक रूप से इतने समृद्ध नहीं थे तो हम सभ्यता, संस्कृत, कृषि तथा मौसम आदि के विषय में कैसे अनुमान लगाते थे। जी हाँ, तब हमें इन पहलुओं का बोध लोक जीवन में प्रचलित कवित्व तथा मुहावरे करते थे। भारत के संदर्भ में देखें तो घाघ और भड्डरी के साथ न जाने कितने ऐसे गुमनाम कवि हुए जिनके कवित्व में जनजीवन से जुड़ी प्रायः हर तरह की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, कृषि, व्यापार, वाणिज्य से जुड़ी भविष्यवाणियां समाहित हैं। ये कवित्व न केवल आम जनजीवन का मार्गदर्शन करते हैं अपितु उनकी हर छोटी बड़ी समस्याओं के समाधान ढूंढने में मदद करते हैं। यदि हम कवि घाघ के कवित्व की बात करें तो इन्होंने नीत, जुताई बुआई, सिंचाई, बैल भैंस और न जाने कितने आमजन से संबंधित उपयोगी विषयों के संदर्भ में लोगों को जागरूक किया है। जीवन के मूल्य परकता और नीत परकता के संदर्भ में उनके इस कवित्व से समझ सकते हैं। भुइयां खेड़ है, हर है चार, घर होए गेहथिन गऊ दुधार, रहर की दाल जड़हने का भात, पाकल नींबू औ घ्यूतात, दही खाड़ जो घर में होए, तिरछे नयन परोसे जोए, घाघ कहे सब ही है झूठा, वहां छाड़ यहूं बैकुंठ। अर्थात कवि का कथन है कि यदि खेत घर के पास हो, चार हलों की खेती हो, गृह कार्य में कुशल स्त्री हो, दूध देने वाली गाय हो, खाने के लिए अरहर की दाल, जड़हन चावल का भात रहे, साथ ही साथ उसमें पके हुए नींबू का रस और घी मिला हो, घर में दही और खाड़ हो, खाना को तिरछी आंखों वाली स्त्री परोसे, तो स्वर्ग सुख की बातें झूठ हैं। अर्थात ऐसे भाग्यवानों के लिए तो बैकुंठपुरी यही है। खेती किसानी ग्रामवासियों का मुख्य पेशा है। ऊख गुड़ाई की रीत के विषय में उनके इस कवित्व की सार्थकता को देख सकते हैं। ऊख गोड़ के तुरत दबावे, फिर तो ऊख बहुत सुख पावे। अर्थात ऊख की गुड़ाई करने के बाद उस पर मिट्टी डाल देनी चाहिए, ऐसा करने से पैदावार अच्छी होती है। विभिन्न फसलों को उनकी जरूरत के हिसाब से पानी की आवश्यकता होती है। घाघ ने कहा है, धान पान औ केला, ये तीनों पानी के चेला अर्थात धान पान और केले की खेती के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। पानी के अभाव में यह फसलें कदाप नहीं हो सकती। जिस प्रकार घाघ के कवित्व लोक के जुबान में बसते हैं, कुछ वैसे ही भड्डरी की

0: चेतनाएं लोगों के मनो मस्तिष्क में विद्यमान रहती हैं। ज्यादातर लोग दोनों के कवित्व की शैली तथा विषय वस्तु एक जैसी होने के कारण अंतर ही नहीं कर पाते हैं। ऐसे में घाघ बड्डरी का नाम एक साथ ले लेते हैं। अकाल के लक्षण के संदर्भ में भड्डरी का कवित्व है कि रात सफाई दिन को छाही, भड्डरी कहें कि पानी नाही। अर्थात यदि रात्र के समय आकाश साफ हो, दिन के समय बादल घिर आवे और उनकी छाया पृथ्वी पर पड़े, तो उनका कहना है कि ऐसी स्थिति में बारिश नहीं होती है। अनावृष्ट के साथ साथ उन्होंने वृष्ट के संदर्भ में भी वर्णित किया है, जेठ मास जो तपे निराशा, तब होवे वर्षा की आशा। अर्थात अगर जेठ के महीने में कड़ाके की गर्मी पड़े तो वर्षा होने की उम्मीद करनी चाहिए। खान पान के शुभ अशुभ दिन के विषय में भड्डरी का कवित्व है, रवि को पान सोम को दर्पण, धनिया खावे भूमि के संग, बुध को दही गुरु को गुड़, शुक्र राई शनि को मामी रंग। अर्थात यात्रा से पूर्व रविवार को पान खाना, सोमवार को शीशे में देखना, मंगल को धनिया, बुध को दही, बृहस्पति को गुड़, शुक्र को राई तथा शनिवार को मामी रंग खाना सुकून होता है। इसी प्रकार अशुभ के विषय में अपना मत जाहिर करते हुए कहते हैं कि सन्मुख छींख लड़ाई भाख है, पीठ पाछली सुख अभिलाख है, छींक दाहिनी धन बिनसावे, बाम छींक सुख सदा दिखावे, ऊंची छींक महा शुभकारी।
1: पंच भाई, अभी आप सुनल गेल वार्ता लोक जीवन में कवित्व व मुहावरे जे पर जानकारी देतना श्री नीरज कुमार वर्णा। इतना निमन जानकारी देवे खातिर इनके दिहल जा धन्यवाद। और यही के साथ ही अपने कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा बा। तो लेके बिता पंचो जय हिंद।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी देर में समाचार हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, समाचारन के साथे हम वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहले हमें कि उनकरे सरकार का बीतल 12 बरिस विश्वास, विकास आ जन कल्याण के समर्पित रहल हो। एगो सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री कहने कि 140 करोड़ देशवासियन के आशीर्वाद आ राष्ट्र प्रथम के भावना से वहाँ के नौजवानन, महिला आ अपने किसान भाई बहन के मजबूत बनौले में कौनो कोर कसर नहीं छोड़ले हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि यह उनके अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक आज देश को दुनिया भर में एक नई पहचान मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए सेवा, सुशासन और समृद्धि के इसी पंथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी अगुवाई में पिछला 12 बरिस में सबका साथ सब

0: सबका विकास, सबका विश्वास आ सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति भइल हो। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में सरकार के कोशिश के लेके प्रस्तुत बा एगो रिपोर्ट।
1: 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट प्रोजेक्ट गंगा का शुभारंभ कैले। ए मौका पर वहाँ के कहने की अभिनव पहल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के ओ संकल्प के आगे बढ़ावेला जौन विकसित भारत आ आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का मजबूत आधार हो। ए मौका पर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत मॉडलों का प्रशंसा कैले।
2: हमारा ग्राम पंचायत ग्राम सचिवालय का मॉडल है, वो पूरे देश के अंदर एक मॉडल के रूप में नीति आयोग ने स्वीकार किया। हमारा ग्राम सचिवालय एक कमरे का नहीं है, 4 से लेकर 6 कमरे हैं वहाँ पे, उनकी अपनी डिजिटल लाइब्रेरी है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काल लखनऊ में अग्निशमन आ आपात सेवा विभाग का समीक्षा कैने। इस दौरान वहाँ के प्रदेश में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के और यो बेसी मजबूत बनोले पर जोर देने।
3: मुख्यमंत्री के निर्देश पर अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग में विशेषीकृत रेस्क्यू ग्रुप SRG का गठन किया जा रहा है। पहले चरण में प्रदेश के 10 जनपदों में इसकी स्थापना की तैयारी पूरी कर ली गई है। बैठक में बताया गया कि प्रदेश की 350 तहसीलों में से 296 तहसीलों में 326 अस्थायी अग्निशमन केंद्र संचालित हैं। इसके अलावा 26 नए केंद्र लोकार्पण के लिए तैयार हैं, जबकि 25 केंद्रों का निर्माण कार्य जारी है। 47 अन्य प्रस्तावित केंद्रों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। समाचार कक्ष से अरुण।
0: विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष रहल पूर्व सांसद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आ समाजवादी चिंतक स्वर्गीय गौरी शंकर राय को 102वीं जन्म जयंती बिहने बलिया में मनावल जाये। एह मौका पर बलिया के करनई के गौरी शंकर राय कन्या महाविद्यालय में श्रद्धांजलि सभा आ गोष्ठी को आयोजन कैल जाये। मौसम विभाग बिहने से 11 जून ले कहीं कहीं बरखा आ गरज चमक के साथे बौछार पड़ने का संभावना जतौले हो। इस दौरान कहीं कहीं तेज लूह चलले, बिजली गिरले आ तेज झोंकेदार बेरियो चलले का चेतावनी दिहल गई बा। समाचार पूरा भइल, नमस्कार। आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार के बीते 12 वर्ष विश्वास, विकास और जन कल्याण को समर्पित रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद और राष्ट्र प्रथम की भावना से उन्होंने युवाओं, महिलाओं और अपने किसान भाई बहनों को सशक्त बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है।
4: श्री मोदी ने कहा कि यह उनके अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक आज देश को दुनिया भर में एक नई पहचान मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए सेवा, सुशासन और समृद्धि के इसी पंथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन

0: और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
2: 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट प्रोजेक्ट गंगा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह अभिनव पहल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के उस संकल्प को आगे बढ़ाती है जो विकसित भारत एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का सशक्त आधार है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत मॉडल की भी प्रशंसा की।
3: हमारा ग्राम पंचायत ग्राम सचिवालय का मॉडल है, वो पूरे देश के अंदर एक मॉडल के रूप में नीति आयोग ने स्वीकार किया। हमारा ग्राम सचिवालय एक कमरे का नहीं है, 4 से लेकर 6 कमरे हैं वहाँ पे, उनकी अपनी डिजिटल लाइब्रेरी है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में अग्निशमन और आपात सेवा विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने पर जोर दिया।
4: मुख्यमंत्री के निर्देश पर अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग में विशेषीकृत रेस्क्यू ग्रुप SRG का गठन किया जा रहा है। पहले चरण में प्रदेश के 10 जनपदों में इसकी स्थापना की तैयारी पूरी कर ली गई है। बैठक में बताया गया कि प्रदेश की 350 तहसीलों में से 296 तहसीलों में 326 अस्थायी अग्निशमन केंद्र संचालित हैं। इसके अलावा 26 नए केंद्र लोकार्पण के लिए तैयार हैं, जबकि 25 केंद्रों का निर्माण कार्य जारी है। 47 अन्य प्रस्तावित केंद्रों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। समाचार कक्ष से अरुण।
1: विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष रहे पूर्व सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व समाजवादी चिंतक स्वर्गीय गौरी शंकर राय की 102वीं जन्म जयंती कल बलिया में मनाई जाएगी। इस अवसर पर बलिया के करनई स्थित गौरी शंकर राय कन्या महाविद्यालय में श्रद्धांजलि सभा और गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। मौसम विभाग ने कल से 11 जून तक कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। इस अवधि में कहीं कहीं तेज लू चलने, बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवा चलने की चेतावनी भी दी गई है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।

मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी देर में किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी पसंद आपका गाना और आवाज होगी आपकी। जी हाँ, आकाशवाणी का सबसे चहेता प्रोग्राम हेलो फरमाइश अब आप सुनेंगे हर रविवार प्रातः 10:05 पर। कर लीजिए तैयारी क्योंकि हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच होगी हमारी रिकॉर्डिंग। तो देर किस बात की, अभी उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0551220 5386। 0551 हमारा STD नंबर है गोरखपुर का। नंबर एक बार फिर से 2205386। अपनी फरमाइश हमें बताइए और जुड़िए आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। कॉल करना भूलिएगा मत, हर शनिवार दोपहर 11 बजे से 12 बजे के बीच।
4: पंचों जय जवान जय किसान।
5: हाँ देखा लिया, बैठकी शुरू भइल यही नारा के साथे। और जब बैठकी शुरू होला तो अपने जौन पंच भाई बाटे ना, ये कार्यक्रम के सुने बदे जौन है पूरा हर तैयारी के साथ बैठ ही जाना है। काहे से कि ये कार्यक्रम के माध्यम से यही समय पे उनके कुछ नया जानकारी दिया हो जाला विशेषज्ञ लोगन से, और साथे साथे जौन भुलाइल भटकल रहे हैं ओके बतावल जाला। और रागिनी जी देखल जा ये समय जौन है खेती बाड़ी पशुपालन मन हर कम में शुरू बा।
4: हाँ।
5: पंच भाई जे किसान बा ते बैठल ना रहला कब्बो, चाहे झाड़ा हो गर्मी हो बरसात हो, हर मौसम में अपन एक काम के तैयारी पूरा कैले मनुकई के बैठल ना रहे ना ओके करे ना तो दूसरका के बारे में सोचे लगे कि ओकरे खातिर का होई। अब देखी यही के साथे साथे जौन आप लोगन के दिनचर्या बा सबके ओमें फल के बड़ा महत्वपूर्ण है। और आज के आपाधापी और जल्दबाजी के चक्कर में मुनाफा के चक्कर में जौन है कि जौन फल बाटे ओके लोग रसायन से पका के खात बा। रसायन से पकैले पे बाद और जे खात बा चाहे सभे खात बा ओकर उपयोग करत बा तो कई प्रकार के समस्या उत्पन्न हो जाला सेहत खातिर स्वास्थ्य खातिर, जौन एक बड़ा दुर्घटना के कारण भी बन सकाला।
4: कहले के मतलब बा कि समय से पहले हर फल जौन है मार्केट में आ जात बा।
5: हाँ,
4: अभी
5: हाँ।
4: जैसे जब ने समय टिकोरा आमे में लगत रहा है
5: वही
4: समय देखत है तब पका आम मिले शुरू हो गए बा।
5: बिल्कुल,
4: तो कोनो भी चीज अगर के अगर जो समय से पहले रसायन का प्रयोग करके पका दिया जात बा और के अधिक दाम पावे खातिर, और जनता भी इतनी मतलब मूर्खतापूर्ण काम कर रहा बा।
5: नहीं देखी जैसे कि जनता जोन है वो अपने काम के ये आपाधापी के चक्कर में और उपयोग के चक्कर में
4: मतलब मुनाफा खाते
5: वो जरूर। अब जैसे कि जब हर फलवे यही प्रकार के बात तो ओकर उपयोग कर ही है, और शरीर के भाई फल ऐसन चीज है कि हर प्रकार का तत्व तो ओके मिलाला।
4: कहले के मतलब बा कि पहले जौन रहा कि हमन जा जौन भी केला वाला भी जौन भी रतल तौन पेड़ से पकल सब लोग प्रयोग करत रहला, आदि प्राकृतिक जीवन जियत रहला। लेकिन आजकल जौन कल जा कि विलासिता पूर्ण जीवन जौन शैली बदलने के नाते सब लोग हर चीज जौन सुख सुविधा के साथ साथ फलन का जौन सेवन करल बा उस समय से पहले जौन कल जा रसायन का प्रयोग करके पका दिया जाता है, जौन से फल तो हम जाके मिला था लेकिन ओकरे साथ साथ कई तरीके का दुष्प्रभाव जो ना शरीर पर देखे के मिल जाता, जिसे वो रसायन जो ना शरीर में जाके कई तरीके का क्षति पहुँचाता और विभिन्न तरीके का जो ना रोग हवा वो कर संख्या दिन ब दिन जैसे बढ़ जाता। कैंसर पहले सुने में ना आवत रहा है, लेकिन आज देखा तो हर गांव में दो चार लोग ऐसा मिल जाए जो कैंसर से पीड़ित हवा।
5: बिल्कुल सही।
4: और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रसायन हम से

0: फल पकावल जात हवा उ हमन जा के पोषक तत्व देहले से ज्यादा नुकसान करत हवा, काहे कि वे रसायन से पाचन संबंधी बहुत गड़बड़ी होखे लगत है। आदमी पेट से परेशान आज देखा तो हर केहू पेट की समस्या से परेशान बा। ओकर सबसे बड़ा कारण है कि एक तो हमन जा फसल के बचावे खातिन भी रसायन का प्रयोग करत हैं और दूसरे के जल्दी पकौले खातिन भी रसायन का प्रयोग कर रहल बाती, तो ओकर कुछ ना कुछ अंश हमरे शरीर में भी जाता जे हमरे शरीर के क्षति पहुंचा रहल बा।
1: बिल्कुल सही कहत हैं, एकरे खातिर पंच भाई के चाहिए चाहे हमन के चाहिए प्राकृतिक रूप से जौन फल पकल बा वही के उपयोग करे के चाहिए। और प्राकृतिक रूप से फल पकौले का कुछ तरीका बा, जैसे कि कुछ ऐसे सामान्य तापमान पर घरे में रख दिया जाए फल पाके लगी अब ओके खाई ले जाए तो ओकर और स्वाद बढ़िया रही। साथ ही साथ एक चीज़ और देख लिया जाए कि कुछ ऐसा फल होला कि आप उनके साथ अगर कच्चा बाटें जैसे केरा बा सेव बा उ कच्चे में ओकरे साथ और फल के रख दिया जाए तो ओकरे साथे साथे इहो पक जाला और उ जौन स्वास्थ्य के लिए पूरा लाभदायक होला। और परंपरागत तरीका से गांव में लोग का करला कि अनाज ढेर के रखल बा वही में फल रख देता
0: भूसा में रख देत रहला। हाँ,
1: तो ओकरे भी तापमान के वजह से जौन फल पकाला वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो ऐसा मनो प्राकृतिक रूप से जौन फल पके वाला बा ओकर अगर उपयोग कइल जा तो हमहन के चाहे अपने परिवार के और जे भी लोग बा ओकर स्वास्थ्य सेहत सुरक्षित रही आ जब जीव जांगर नीक रही सुरक्षित रही तब कौनो और काम कई जा सकल जाला। देखल जा हमन के बातचीत तो होते रही, आई एगो भेंट वार्ता सुनल जा। भेंट वार्ता में माटी की जांच हेतु नमूना कैसे लें ये विषय पे जानकारी देते हैं रामजीत यादव और इनसे बतियाओ तो हमें भैया कृष्ण चंद्र।
2: किसान भाई हमन के जहाँ पे भी बैठल जाला यह बात के चर्चा होखेला कि माटी में पहले जितना ताकत नहीं रह गेल बा। जौन भी फसल लगावे के बा माटी में लगावे के बा आपन वैज्ञानिक लोग बार बार यह बात के कहल कि भैया कुछ भी लगावे बा तो माटी के जांच करवाला, लेकिन ओकरे बावजूद भी पंच भाई माटी के जांच नहीं करावल। कई पंच भाई लोगन के यह बात के जानकारी नहीं बा कि भाई माटी के जांच का होला। यह बात के जानकारी उनके हो जाए कि माटी के जांच काहे जरूरी हवे तो निश्चित रूप से वो माटी के जांच कर रही है। आज अपने कार्यक्रम में मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रामजीत यादव जी आयल बाटे। यादव जी सबसे पहले आपका हमारे यह कार्यक्रम में स्वागत बा। हम आपसे यह जानल चाहब कि माटी के जांच काहे के जरूरी हवे।
3: मिट्टी का जांच इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें मिट्टी का जांच कराने के बाद यह पता लगता है कि हमारे मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व मौजूद हैं
2: जी
3: और कौन कौन से पोषक तत्व मौजूद नहीं है। जिस पोषक तत्व की अधिकता होती है उसके बाद भी अगर किसान उसमें अगर वह पोषक तत्व डालते हैं जिसके वजह से हमारे मिट्टी का सेहत खराब होता है और वो कहीं न कहीं हमारे मानव हेल्थ पे भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए किसान बंधु को हमेशा मिट्टी का जांच करा के अनुशंसित मात्रा में ही फर्टिलाइजर का प्रयोग करें जिससे हमारे क्रॉप के साथ साथ मानव हेल्थ भी अच्छे से सुचारू रूप से चलेगा।
2: आपके कहने का मतलब ये है कि माटी का जांच हो जाए, माटी के जांच से पता चल जाए कि कौन पोषक तत्व कितने मात्रा में माटी में मौजूद बा कितना देहला का जरूरत बा। लेकिन अगर माटी का जांच करावे के बा तो इकरा खर्तिम का करे के पड़ी।
3: मिट्टी का जांच अगर किसान बंधु को कराना है तो सबसे पहले वो अपने खेत में जाकर के वहां पे मिट्टी का सैंपल लेना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण कि हम अपने ब्लड का सैंपल ले जा करके लैब में देते हैं तो उसमें क्या क्या प्रिकॉशन है। सेम प्रिकॉशन हमारे मिट्टी के सैंपल कलेक्ट करने में भी बरतनी चाहिए।
2: माटी का जो नमूना लेवे के बा
3: जी
2: नमूना कैसे लिया जाए एकरे बारे में किसान भाई लोगों को बताएं।
3: किसान भाई को जब भी अपने खेत में मिट्टी का नमूना लेने जाना है तो सबसे पहले तीन चार बिंदु पे उन्हें ध्यान देना होगा। पहला किसान बंधु को ये ध्यान देना होगा कि अगर एक एकड़ का जमीन है और सब जगह एक जैसी फसल अगर उग रही है तो लगभग 8 से 10 जगहों को चिन्हित करके मिट्टी का नमूना कलेक्ट करेंगे। कभी कभी यह देखा जाता है कि उनके खेत में किसी जगह पे फसल नहीं उग रही है, वहां का जो सैंपल है उसको अलग से कलेक्ट करके हमें अलग थैले में रख करके लैब भेजना चाहिए।
2: ये जो माटी का नमूना आप कह रहे हैं कि 8-10 जगह ही से लें, लेकिन नमूना ली है कैसे?
3: हाँ,
2: मिट्टी कैसे निकली है
3: जी?

0: मिट्टी का नमूना लेने के लिए जो आपने 8-10 जगह का सिलेक्शन किए हैं उसको जिग जैग फॉर्म में चेक लेना है और प्रयास यह करना है कि मेड़ के किनारे से मिट्टी का नमूना नहीं लेना है या नाली के किनारे से मिट्टी का नमूना नहीं लेना है। और मिट्टी का नमूना लेते समय जब हम सीरियल क्रॉप जो लेते हैं जैसे धान गेहूं मक्का जो भी चीज हम लगा रहे हैं उसमें 15 सेंटीमीटर गहराई का मिट्टी का सैंपल लेना चाहिए और वह अंग्रेजी के भी शेप में गड्ढा खोदेंगे और सारे जो गड्ढे में अंग्रेजी के भी शेप में जितने मिट्टी आ रही है उस मिट्टी को फेंक देंगे। इसके बाद आप ऊपर से 1/2 इंची पकड़ के खुरपी के सहारे दबाएंगे और जो मिट्टी उस गड्ढे में गिर जाएगी उस मिट्टी को एक साफ पॉलीथीन में रखेंगे जो पॉलीथीन किसी केमिकल फर्टिलाइजर से रिलेटेड ना हो, जो भी बैग हो।
1: आप कह लिए हैं कि जोन बा 1/2 इंची मोटहन जोन बा मिट्टी को से काटे के बा जैसे वी आकार का गड्ढा बा
0: जी सर,
1: तो जोन बा एक के तरफ से जोन बा वो माटी लोगा कि दोनों तरफ से माटी
0: लोगा? दोनों तरफ से सेम 1/2 इंची इधर से और 1/2 इंची उधर से दोनों तरफ से जब भी सेब का गड्ढा खोदने के बाद पूरी मिट्टी हटा देंगे और जो मिट्टी उसमें गिरेगी उस मिट्टी को एक साफ पॉलीथीन या बैग में रखेंगे जो किसी केमिकल फर्टिलाइजर से रिलेटेड वो बैग न हो।
1: मान लीजिए सामान्य फसल जोन लगाओगे बा तो 15 सेंटीमीटर गहराई तक गड्ढा खोदे के बा, लेकिन गन्ना का फसल लगाओगे बा या कोनो उद्यान का फसल लगाओगे बा तो ऐसा स्थिति में गड्ढा का गहराई कितना रही?
0: हाँ, गन्ना की अगर फसल लगाना है तो किसान भाई को 20 से 25 सेंटीमीटर तक का मिट्टी का सैंपल लेना होगा। बट अगर उद्यान की फसल अगर लगानी है जहाँ पे हमारा जो फलदार वृक्ष लगाए जाते हैं वहाँ पे 3 डेप्थ में मिट्टी लिया जाता है, 30 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर। ये तीनों डेप्थ की मिट्टी अलग अलग रख करके भेजा जाता है क्योंकि वहाँ का जो पोषक तत्व है वहाँ पे पता लगे, क्योंकि वहाँ पे हमें उद्यानिक फसल करना है जिसकी वजह से ये तीनों डेप्थ का मिट्टी अलग अलग कलेक्ट करना होगा, उसी के नीचे लेना होगा। ये विधि से हम मिट्टी का कलेक्शन करेंगे।
1: आप कह लिए कि 8-10 जगह से जोन बा माटी का नमूना ले होगा, 8-10 जगह से अगर माटी निकल गई तो सज्जी माटी का हुई?
0: 8-10 जगह का मिट्टी जब कलेक्ट कर लेते हैं एक बैग में तब उस मिट्टी को ले जा करके एक फर्श पे या अपने यहाँ जहाँ भी सुरक्षित जगह या पॉलीथीन बड़ी हो उस पॉलीथीन में रख करके खूब अच्छे से उसको हाथ से मिलाएंगे और हाथ से मिलाने के बाद उसको 4 भाग में बांटेंगे। 2 आमने सामने का भाग लेकर के 2 भाग फेंक देंगे। ऐसा प्रोसेस करते करते जब मिट्टी 400 से 500 ग्राम बच जाएगी उस मिट्टी को एक बैग में हम रखेंगे और उसमें हम जिस किसान का हो उसका नाम लिखेंगे, उसके पिताजी का नाम लिखेंगे, उनका ग्राम लिखेंगे, पंचायत लिखेंगे, इसके बाद कौन सी फसल आप लिए थे और कौन सी फसल आगे हम लेंगे इसका पूरा विवरण देंगे जिसके आधार पे हम फर्टिलाइजर का रिकमेंडेशन करेंगे।
1: जी जी, ये जो आप बतौली हैं कि पूरा मिट्टी का मिला दिया जाए ओके 4 हिस्सा के ले जाए, काले का मतलब कोनो ढेर बना दे और ऊपर अगर चाहे तो गुड़ा का निशान बना दे।
0: जी जी जी,
1: और जो दहिने वाला बाएं वाला बा ओके किनारे कर दे।
0: जी
1: जो जी नीचे ऊपर वाला जोन बा ओके ले लें।
0: जी,
1: ये तब तक करत रहे जब तक मिट्टी जोन बा 400-500 ग्राम ना बच जाए।
0: जी,
1: मतलब भेजे का जो नमूना बा वो 400-500 ग्राम भेजे के बा।
0: जी,
1: और ये जो माटी का जांच बा कहाँ कहाँ पे माटी की जांच हो सकेला?
0: मिट्टी का जांच एक पहला तो यूनिवर्सिटी लेवल में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे इसका सॉयल टेस्टिंग लैब रहता है और जिला स्तर पे डिस्ट्रिक्ट कार्यालय में वो DAO जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर रहते हैं वहाँ पे सॉयल टेस्टिंग लैब होता है, आप वहाँ पे ले जा करके हम मिट्टी का जांच करा सकते हैं।
1: अच्छा, ये बताएं कि मान लें कि दोनों खेते की माटी का जांच हो गई, का अगले साल भी करावे के पड़ी या एक बार जांच करोले पे कुछ साल तक जोन बा जांच नहीं करावे के पड़ी?
0: मिट्टी का जांच किसान बंधु को अपने अच्छा उपज लेने के लिए हर 3 साल पे कराना चाहिए।
1: मतलब अगर एसओ के साल में कहूँ जांच करा ले लस तो फिर 3 साल के बाद कराओगे पड़ी?
0: जी,
1: आप बीचे में चर्चा करत रहनी कि कुछ ऐसा जगह बा जहाँ के नमूना नहीं लेओगे चाहे, हम चाहब कि एक बार आप गह गह रूप से बता दें किसान भाई लोगों के कि माटी का अगर नमूना लेते हुए तो कोने कोने जगह का नमूना नहीं लेओगे बा।
0: हाँ, किसान बंधु को मिट्टी का नमूना लेते समय ये सतर्कता रखनी चाहिए कि जहाँ पे खाद का ढेर हो वहाँ से मिट्टी का नमूना न ले। दूसरा चीज, जहाँ पे पेड़ का छांव है वहां से मिट्टी का नमूना न ले। तीसरा कि जहाँ पे नाली है, जहां से पानी निकलता है, उस स्थान का मिट्टी का नमूना न ले। और मेड़ का जो किनारा है वहां से भी मिट्टी का नमूना न ले, क्योंकि उधर से पशु मवेशी जो भी निकलते हैं वो अपना बीट करते हैं, जिससे क्या होता है कि वहां पे फर्टिलाइजर का स्टेटस ज्यादा आएगा, जिसके वजह से हमारा जो

0: रिपोर्ट है वो गलत हो सकता है, इसलिए ये प्रिकॉशन किसान बंधु को ध्यान दे करके ही मिट्टी का कलेक्शन करना चाहिए।
1: मेड़ से कितना छोड़ के नमूना लें?
0: हाँ, किसान बंधु मेड़ से कम 2 से 3 फीट हट करके ही मिट्टी का नमूना लें। जो मैंने जिग जैग फॉर्म में बोला था सिलेक्शन के लिए, उसमें मिट्टी जो मेड़ है वहाँ से 2 से 3 फीट छोड़ करके जिग जैग फॉर्म में मिट्टी लें, ताकि हमारे साथ बायसनेस नहीं हो, मतलब पक्षपात न हो, और जो मिट्टी का सिलेक्शन हो वो अच्छा हो।
1: नाली से कितना दूरी पर जनबल नमूना लिया जाए?
0: नाली से कम 1 से 1.5 मीटर दूरी से ही मिट्टी का नमूना लें।
1: जी जी।
0: और ये सतर्कता रखें, क्योंकि वहां पे मिट्टी का नमूना नाली के 1.5 फीट इसलिए लें क्योंकि उधर से पानी निकलता है, जिसकी वजह से हमारे जो पोषक तत्व हैं वो उन लोगों का लॉसेस ज्यादा होता है, इसलिए हमारा जो खेत है उसका अच्छा से मिट्टी का नमूना कलेक्शन नहीं हो पाएगा। इस वजह से कम 1 से 1.5 मीटर हट करके ही नाली से लेना चाहिए किसान बंधु को मिट्टी का नमूना।
1: डॉक्टर साहब, जौने हिसाब से आप अभी तक जानकारी दे ली, ओकरे हिसाब से अगर किसान भाई माटी की जांच कराओ थोड़ा, तो ऐसे सीधा सीधा अगर असर उत्पादन पे पड़ी, उत्पादन के साथ साथ लागत भी कम हुई, जौन भी हमन के उर्वरक डालल जाला ओकर पूरा उपयोग फसल नहीं कर पावले, ओकर मात्रा माटी में मौजूद रहेला और बिना माटी के जांच के अगर केहू जौन बा उर्वरक का उपयोग करता, तो एक तरह से ओकरे फसल के भी नुकसान पहुंचाई, माटी के सेहत के भी नुकसान पहुंचाई। जैसे आप कहलिए हैं कि 3 साल पे जौन बा माटी के जांच कराओ के पड़ी, मान ली गेहूँ के खेत अगर कई जगह पे बा
0: जी,
1: तो का एक जगह के जांच करेले पे काम चल जाए कि हर जगह है जौन खेत बा सबके माटी निकाल के अलग अलग नमूना भेजे के पड़ी?
0: अगर वो खेत का डिस्टेंस ज्यादा दूर है, अगर कम से कम 4 से 5 हेक्टेयर के दायरे में अगर वो मिट्टी है तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा दूरी पे है, कभी कभी ये देखा जाता है कि किसी किसान बंधु का यहाँ पे खेत है, कोई खेत 1 किलोमीटर दूर है, उस कंडीशन में वहां का भी मिट्टी का कलेक्शन करना पड़ेगा, उनको सैंपलिंग कराना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी का जो डिस्टेंस ज्यादा होने के बाद वहां का जो फर्टिलाइजर का स्टेटस है, जो पोषक तत्व का मात्रा है, वो वेरी कर जाता है, इसलिए ये ध्यान देना होगा। अगर उसी के दायरे में है तब तो एक ही सैंपल लगभग 4 हेक्टेयर का प्रतिनिधित्व कर सकता है।
1: हाँ, लेकिन अगर ज्यादा दूर बा तो वहाँ का भी नमूना लेके जांच करावे के पड़ी। जौन भी हमारे किसान भाई हमन कई बात कही सुन रहा बाटे, माटी के जांच के लेके आप उन लोगों का क्या संदेश दे?
0: हम किसान बंधु को बताना चाहेंगे कि वो लोग मिट्टी में जो अनुशंसित मात्रा में जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के आधार पे ही फर्टिलाइजर का प्रयोग करेंगे, उर्वरक का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में उर्वरक देने से उसका लॉस ज्यादा होता है और वो कहीं न कहीं हमारे सॉयल हेल्थ को खराब करते हुए मानव की जो हेल्थ है उस पर भी प्रभाव पड़ता है, और हमारी मिट्टी आते मतलब फर्टिलाइजर अननेसेसरी देने के वजह से वो ऊसर बन जाती है, और आने वाले टाइम में हम कितना भी फर्टिलाइजर दें लेकिन जो हमारा उत्पादन चाहिए वो उत्पादन हमें नहीं मिल पाता है। इसलिए किसान भाई को जो कार्ड में अनुशंसित मात्रा में प्रयोग किया गया है एक्सपर्ट के अनुसार, उसी मात्रा का प्रयोग करके और उसी प्रोटोकॉल के हिसाब से ही फर्टिलाइजर का प्रयोग करें।
1: माटी की जांच काहे का जरूरी बा, जांच खर्ची नमूना कैसे लिहल जा, और उत्पादन में माटी के जांच के काम महत्व बा, यह कुल बारे में डॉक्टर रामजीत यादव जी आप हमारे किसान भाई लोगन के इतना निमन जानकारी देली, आप अपन अमूल समय निकाल के हमारे बैठकी में ली, एकरा खर्चिन आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: पंच भाई, अभी आप सुनल गई भेंटवार्ता मिट्टी की जांच हेतु नमूना कैसे लें, जे पर जानकारी देत रहना डॉक्टर रामजीत यादव, इतना निमन जानकारी देवे खातिन इनके दिया जा धन्यवाद, और अपने बैठकी के में मन मन साइन करे खातिन सुनल जाएगा लोकगीत।

0: फसल चक्र का मिट्टी पर प्रभाव, जे पर जानकारी देता हूँ श्री शिवम सिंह, ताई सुनी जा।
1: किसान भाइयों, आज मैं आपको फसल चक्र का महत्व एवं लाभ के बारे में अवगत कराऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने पोषण के लिए विभिन्न प्रकार की फसलें उगाता आ रहा है। ये उगाई जाने वाली फसलें मौसम के अनुसार भिन्न भिन्न होती हैं। शुरू से ही किसी खेत में एक ही फसल ना उगाकर फसलें बदल बदल कर उगाने की परंपरा चली आ रही है, परंतु यह परंपरा विशेष वैज्ञानिक सिद्धांतों पर ना आधारित होकर सामान्य आवश्यकता के अनुसार चलती आ रही है। परंतु आज नए नए अनुभव एवं अनुसंधानों के आधार पर यह जान लिया गया है कि लगातार एक ही फसल को उगाने से उत्पादन में कमी आ जाती है। इस उत्पादकता को बनाए रखने के लिए फसल चक्र सिद्धांत बनाया गया। फसल चक्र, जिसको कि इंग्लिश में क्रॉप रोटेशन भी कहते हैं, आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। किसी निश्चित क्षेत्रफल पर निश्चित अवधि के लिए भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के उद्देश्य से फसलों का अदल बदल कर उगाने की प्रक्रिया को फसल चक्र कहा जाता है। अर्थात किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों का इस क्रम में उगाया जाना कि भूमि की उर्वरक शक्ति का कम से कम हास हो, उसे फसल चक्र कहते हैं। फसल चक्र का महत्व। वर्तमान समय में खेती में उत्पादन एवं उत्पादकता में ठहराव या कमी आने के कारणों को वैज्ञानिकता अध्ययन किए जाए तो निश्चित ही ज्ञात होता है कि इसमें फसल चक्र सिद्धांत को न अपनाया जाना भी एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि फसल चक्र सिद्धांत न अपनाने से उपजाऊ भूमि का क्षरण, जीवांश की मात्रा में कमी, भूमि से लाभदायक सूक्ष्म जीवों की कमी, मित्र जीवों की संख्या में कमी, हानिकारक कीट पतंगों का बढ़ाव, खरपतवार की समस्या में बढ़ोतरी, जल धारण क्षमता में कमी, भूमि के भौतिक रासायनिक गुणों में परिवर्तन, क्षारीयता में बढ़ोतरी, भूमिगत जल का प्रदूषण, कीटनाशियों का अधिक प्रयोग तथा नाश जीवों में उनके प्रति प्रतिरोधक क्षमता का विकास हमारे प्रदेश की सबसे लोकप्रिय फसल उत्पादक प्राण धान गेहूं मृदा उर्वरता के टिकाऊपन के खतरे बढ़ गए हैं। आज न तो केवल उत्पाद वृद्धि रुक गई है, बल्कि एक निश्चित मात्रा में उत्पादन प्राप्त करने के लिए पहले की अपेक्षाएं न बहुत अधिक मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ रहा है, क्योंकि भूमि में उर्वरक क्षमता उपयोग का ह्रास बढ़ गया है। इन सब विनाशकारी अनुभवों से बचने के लिए हमें फसल चक्र, फसल सघनता के सिद्धांतों को दृष्टिगत रखते हुए फसल चक्र में दलहनी फसलों का समावेश जरूरी हो जाएगा, क्योंकि दलहनी फसलों से एक टिकाई फसल उत्पादन प्रक्रिया विकसित होती है। फसल चक्र के सिद्धांत। फसल चक्र के निर्धारण में कुछ मूलभूत सिद्धांतों को ध्यान में रखना जरूरी होता है, जैसे अधिक खाद चाहने वाली फसलों के बाद कम खाद चाहने वाली फसलों का उत्पादन। दूसरा, आपको मैं ये बताऊंगा कि अधिक पानी चाहने वाली फसल के बाद कम पानी चाहने वाली फसल उगाना। तीसरा, अधिक निराई गुड़ाई चाहने वाली फसल के बाद कम निराई गुड़ाई चाहने वाली फसल। चौथा, दलहनी फसलों के बाद अदलनीय फसलों का उत्पादन। पांचवा, अधिक मात्रा में पोषक तत्व शोषण करने वाली फसल के बाद खेत को परती रखना। छठा, एक ही नासी जीवों से प्रभावित होने वाली फसलों को लगातार नहीं उगाना। सातवां, फसलों का समावेश स्थानीय बाजार की मांग के अनुरूप रखना चाहिए। फसल का समावेश जलवायु तथा किसान की आर्थिक क्षमता के अनुरूप करना चाहिए। उथली जड़ वाली फसल के बाद गहरी जड़ वाली फसल को लगाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कुछ प्रचलित फसल चक्र इस प्रकार हैं, जैसे कि परती पर आधारित फसल चक्र, जिसमें कि हमारा परती गेहूं, परती आलू, परती सरसों, धान परती आदि आते हैं। इसके बाद हरी खाद पर आधारित फसल चक्र। इसमें फसल उगाने के लिए हरी खाद का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हरी खाद गेहूं, हरी खाद धान, हरी खाद केला, हरी खाद आलू, हरी खाद गन्ना आदि।

0: हाँ भैया देखा, पंच भाई जानकारी लेते हैं ना, फसल चक्र का मिट्टी पर प्रभाव, ये विषय पे जानकारी देते हैं नी शिवम सिंह जी। और यही के साथ भैया हम उनके चलने के बेरा भाई चलन जा,
1: पंचों
0: पंचों जय
1: जय
0: जवान
1: जवान जय
0: जय
1: किसान।
0: किसान।

0: किसान भाई अभी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम खेती बाड़ी। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं सुनिए। ग्राम कछुआ, पोस्ट बसरिकापुर, थाना दुबहड़, जिला बलिया से तनु कुमारी लापता हैं। 20 अप्रैल 2026 से लापता तनु कुमारी की उम्र 16 वर्ष है। कद 5 फीट और रंग गोरा है। तनु कुमारी के बारे में किसी भी तरह की जानकारी मिलने पर कृपया मोबाइल नंबर 8115048485 पर सूचित करें। ग्राम धरहरा, थाना सुखपुरा, जनपद बलिया से राजू कुमारी की पुत्री राधिका कुमारी के लापता होने की सूचना मिल रही है। 27 अगस्त 2025 से लापता राधिका कुमारी की उम्र 19 वर्ष है। कद 5 फीट 1 इंच और रंग गोरा है। राधिका कुमारी के बारे में किसी भी तरह की सूचना मिलने पर कृपया मोबाइल नंबर 9628743440 पर सूचित करें। ग्राम ब्रह्माइन, पोस्ट हनुमानगंज, थाना सुखपुरा, जिला बलिया से ऋतिक यादव के गायब होने की जानकारी मिल रही है। 16 फरवरी 2025 से गायब ऋतिक यादव की उम्र 15 वर्ष है। कद 4 फीट 5 इंच और रंग सांवला है। ऋतिक यादव के बारे में किसी भी तरह की जानकारी होने पर कृपया मोबाइल नंबर 8318681870 पर सूचित करें। ग्राम राजपुर, थाना बांसडी, जिला बलिया से चनेश्वर चौधरी अपने पुत्र राजेश चौधरी के गायब होने की सूचना दे रहे हैं। राजेश चौधरी की उम्र 47 वर्ष है। कद 5 फीट 3 इंच और रंग गोरा है। 16 अप्रैल 2026 से गायब राजेश चौधरी के बारे में किसी भी तरह की सूचना मिलने पर कृपया मोबाइल नंबर 7607954437 पर सूचित करें। ग्राम पोस्ट पर्वतपुर, थाना बांसडी, जनपद बलिया से राम लायक राम अपनी बेटी सरोज कुमारी के गायब होने की सूचना दे रहे हैं। 28 अप्रैल 2026 से गायब सरोज कुमारी की उम्र 18 वर्ष है। कद 4 फीट 2 इंच और रंग गोरा है। सरोज कुमारी के बारे में किसी भी तरह की सूचना होने पर कृपया मोबाइल नंबर 6387930258 पर सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। आज इसमें कलाकार हैं राधेश्याम मणि त्रिपाठी।
1: माई के जगह

फूटली किरनिया हे मैया जागो मलिया करेला

ब्रह्मा विष्णु कार्य नित्य तुहरो पूजनम देवगढ़ गाँव मंगल चार गीत

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
3: जब दिल ने किसी को याद किया हो, जब कोई धुन दिल में उतर गई हो और कभी किसी को सुनाना हो कोई गीत, तो बस आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश लेकर आ रहा है।

0: आपके दिल की आवाज, जहां आपके प्यार भरे संदेश और आपके पसंदीदा गीत बनेंगे किसी की मुस्कान। तो उठाइए फोन, कीजिए हमें कॉल हर शनिवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0551-220-5386 और आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं हर रविवार 10:05 पर। हमें रहेगा आपका इंतजार, जहां दिलों की दूरियां गीतों से मिटती हैं।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com।
4: बेटी वाले भाई ले बेगाना कठिन आ गई ले जमाना।
5: राधेश्याम मणि त्रिपाठी से इस समय आप सुन रहे हैं लोकगीत।

लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में आज कलाकार थे राधेश्याम मणि त्रिपाठी। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। भोजपुरी भाषा के कार्यक्रम देश हमार में लीजिए सुनिए दीपराज गुप्त से काव्य पाठ।

ଆଓ ଘରେ ଘରେ ଛାଯାଇ ବାହାର ମୋର ମିତବା ପେଡ଼ବା ଲଗାଓ ଫଲଦାର ପେଡ଼।

आई देखी दीपक जग उजियार मोर मितवा, देखी जगत उजियार मोर मितवा, पेड़वा लगाओ दुई चार मोर मितवा, पेड़वा लगाओ दुई चार। दूसर कविता देखें लोगिन।

विश्व धरातल कुटुंब कुंभ बनि जाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, गई है प्रेम के बानी, कल कल में जनिए किल गवाओ, बाजो तनिको पानी, राम राज धरती पर पसरी, विश्व विजय तब होई, बाहुबल फल देई निर्मल, कंटक ना कुल बोई, बा इतिहास बतावत आजो, हरिश्चंद जस दानी, कल कल में जनी अकिल गवाओ, बाजो तनिको पानी, बारह दीपक पढ़े अजोर, फैले जग खुशहाली, बारह दीपक बढ़े अजोर, फैले जग खुशहाली, मेहनत के बूता बढ़ियाव, सबे बजाई ताली, हवे पुराना कथन देश के,

को पानी तीसर कप्तार हुआ उनके सामने परोसत बनी उगते किरिनिया बिरिनिया बनल जाता उगते किरिनिया।

दीप राजगुप्ते से अभी आप सुन रहे थे काव्य पाठ। इसके साथ ही भोजपुरी भाषा का कार्यक्रम दिए समारोह संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत लीजिए, आप सुनिए राजस्थानी लोकगीत।

শিবা যাহে কি প্রাণ সকিরে ঐ সনক দম্বতলে বংশী বাজায় কি।

0: পথে মরি প্রাণ সখীরে, ওই সন কদম্ব তলে বংশী বাজায় কে।
1: प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोकगीत। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
3: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
4: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
3: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
4: देश के सबसे

0: बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202-4075 या 2288-6016 और STD कोड 022।
0: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
2: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार हम अपने लखनऊ केंद्र के माध्यम से रिले करेंगे।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक भारत को दुनिया भर से मिली नई पहचान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना को दी मंजूरी। प्रदेश में रक्षा प्रतिष्ठानों की ऊर्जा सुरक्षा को मिलेगी मजबूती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रोजेक्ट गंगा का किया शुभारंभ। कहा, ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को इस पहल से मिलेगा बढ़ावा। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा दूसरे दिन शांतिपूर्ण ढंग से हुई संपन्न। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे का वाराणसी मंडल चला रहा है 8 विशेष रेलगाड़ियां। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। श्री मोदी ने आज के ही दिन वर्ष 2024 में लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। पेश है एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार के बीते 12 वर्ष विश्वास, विकास और जन कल्याण को समर्पित रहे हैं। अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक आज देश को दुनिया भर में एक नई पहचान मिली है। श्री मोदी ने लिखा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए सेवा, सुशासन और समृद्धि के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्र सेवा, सुशासन और जन कल्याण को समर्पित इस 12 वर्षीय परिवर्तनकारी नेतृत्व ने अंत्योदय की भावना को साकार

0: करते हुए भारत को आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और नई ऊंचाइयों पर प्रतिष्ठित किया है। श्री योगी ने लिखा है कि ये कालखंड पारदर्शी, उत्तरदायी और संवेदनशील शासन के माध्यम से जन आकांक्षाओं की पूर्ति का एक प्रेरक अध्याय है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के संयुक्त सचिव जयप्रकाश शिवहरे ने आज लखनऊ में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्र की मौजूदा सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार ने जन विश्वास के तीसरे चरण के लिए पहल शुरू कर दी है। श्री शिवहरे ने बताया कि आज देश के विभिन्न राज्यों में मंत्रालय द्वारा उद्योग जगत के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है और उन्हें सरकार की नीतियों और नए नियमों का कानूनों की जानकारी दी जा रही है।
3: भारत सरकार ने इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के जिस तरह के कदम लिए हैं, खासकर जन विश्वास 1 और जन विश्वास 2 के द्वारा बहुत सारे एक्ट उन प्रावधानों को हटाया गया और अब 12 वर्ष हुए हैं तो भारत सरकार ने जन विश्वास 3 के लिए पहल शुरू की और अब जो प्रोसीजर पार्ट फोकस करके किस तरह के चेंजेस किए जाने चाहिए, एक फीडबैक भी लिया जा रहा है।
1: इससे पहले श्री शिवहरे ने लखनऊ में राज्य के उद्योग जगत के लोगों के साथ विचार विमर्श किया। संवाददाता सम्मेलन में भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय के निदेशक दिलीप शुक्ला और इन्वेस्ट यूपी के सीईओ विजय किरण आनंद भी उपस्थित रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीतापुर में रक्षा मंत्रालय की 850 एकड़ जमीन पर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय की ओर से शुरू की गई ये अपनी तरह की पहली परियोजना है। इसमें रक्षा भूमि पर एकीकृत BESS सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधा का विकास भी शामिल है। ये परियोजना रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय और रक्षा संपदा महानिदेशालय के साथ कार्यान्वित की जाएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में डिजिटल नवाचार के अभियान को गति देने के लिए आज लखनऊ में प्रोजेक्ट गंगा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अभिनव पहल डिजिटल इंडिया के उस संकल्प को आगे बढ़ाती है जो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का सशक्त आधार है। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। श्री योगी ने कहा कि इंटरनेट जितना फास्ट होगा, विकास की गति भी उतनी ही तेज होगी।
4: इंटरनेट जितना फास्ट होगा उतनी ही डेवलपमेंट की गति भी फास्ट होती हुई दिखाई देगी और लोगों के जीवन में भी उतना ही व्यापक परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए कई चरणों में पूर्व में काम किए थे, खासतौर पर ई ऑफिस की हमारी संकल्पना, लैंड रिकॉर्ड की डिजिटाइजेशन की कार्रवाई हो या फिर प्रदेश के अंदर डिजिटल पेमेंट के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हो।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज

0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के मुख्यालय का दौरा किया और इस महीने की 21 तारीख को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। पत्रकारों से बात करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार चूक और खामियों को रोकने के लिए राज्यों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रही है।
1: प्रधानमंत्री जी देश के बच्चों को निश्चित आश्वस्त करना चाहते हैं कि सब प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से अब भरोसा हमारे ऊपर आपकी है, अब रखिए, हम जो त्रुटियां हुई है उस त्रुटियों को हम पुनरावृत्त नहीं करेंगे, सटीक परीक्षा करवाएंगे।
0: उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा दूसरे दिन भी कड़ी सुरक्षा के बीच दो पालियों में सकुशल संपन्न हुई। प्रदेश के सभी 75 जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा करवाई गई, जहां सघन जांच के बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। सॉल्वर गिरोह को पकड़ने के लिए यूपीएसटीएफ, लोकल इंटेलिजेंस और पुलिस सक्रिय रही। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे का वाराणसी मंडल 8 स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है। कल लिखित परीक्षा का अंतिम दिन है। ज्येष्ठ माह के छठे बड़े मंगल पर आज राजधानी लखनऊ के प्रमुख हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जयकारों के साथ दर्शन पूजन कर रहे हैं। वहीं शहर में कई स्थानों पर भंडारों का आयोजन किया गया है। अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में भी आज बड़ी संख्या में भक्त दर्शन पूजन कर रहे हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी संभाग के कई जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक इन क्षेत्रों में कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ ही वज्रपात और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक भारत को दुनिया भर में मिली नई पहचान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना को दी मंजूरी। प्रदेश में रक्षा प्रतिष्ठानों की ऊर्जा सुरक्षा को मिलेगी मजबूती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रोजेक्ट गंगा का किया शुभारंभ। कहा, ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को इस पहल से मिलेगा बढ़ावा। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा दूसरे दिन शांतिपूर्ण ढंग से हुई संपन्न। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे का वाराणसी मंडल चला रहा है 8 विशेष रेलगाड़ियां। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
5: मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलो हर्ट्ज और FM 14.1 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत, इसमें आज आप सुनेंगे कुछ फिल्मों से लिए गए युगल गीत। कार्यक्रम का पहला गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, बोल गुलजार के हैं और संगीत राहुल देव बर्मन का। फिल्म का नाम है घर।

0: अगला गीत भूपिंदर और रूना लैला की आवाजों में। बोल गुलजार के हैं और संगीत जयदेव का। फिल्म का नाम है घरौंदा।
1: दीवाना
2: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।

0: फिल्म संगीत के बाकी गाने इसे अंतराल के बाद।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www

0: प्रसार भारती आर्काइव्स .co.in।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।

0: के साथ लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: जब दिल ने किसी को याद किया हो, जब कोई धुन दिल में उतर गई हो और कभी किसी को सुनाना हो कोई गीत, तो बस आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश लेकर आ रहा है आपके दिल की आवाज, जहां आपके प्यार भरे संदेश और आपके पसंदीदा गीत बनेंगे किसी की मुस्कान। तो उठाइए फोन, कीजिए हमें कॉल हर शनिवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0551225386 और आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं हर रविवार 10:05 पर। हमें रहेगा आपका इंतजार, जहां दिलों की दूरियां गीतों से मिटती हैं।

आकाशवाणी गोरखपुर से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। इसमें आज आप सुन रहे हैं कुछ फिल्मों से लिए गए युगल गीत। मंजिल मंजिल इस फिल्म का गाना आप सुन रहे हैं, आवाज़ें आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की हैं।

तपस्या इस फिल्म का गाना आप सुन रहे हैं आरती मुखर्जी और किशोर कुमार की आवाज़ों में। गीतकार हैं एमजी हशमत और संगीतकार रविंद्र जैन।

0: तपस्या फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है, प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। हिंदी कार्यक्रम में लीजिए सुनिए साधना सिंह से कहानी, शीर्षक है समय की मांग।
1: समय की मांग। जी हाँ, समय की मांग को सही समय पर समझ लेने और खुद की परिस्थितियों के अनुसार बदल लेने से जिंदगी आसान हो जाती है। आज की कहानी दो पुरानी घनिष्ठ सहेलियों की है, प्रिया और सुमन। क्या यार, इतनी भी क्या व्यस्तता है? तुम एकदम घर से बाहर ही नहीं निकलती हो, हर बार मुझे ही आना पड़ता है तुमसे मिलने। प्रिया ने बैग सोफे पर लगभग फेंकने के साथ सुमन के पीठ पर हल्का सा धौल जमाया था। आते ही शुरू हो गई हमेशा की तरह। सुमन ने हंसते हुए प्रिया को गले लगाया था। थोड़ा ठंड रख, पानी वानी पी, फिर शिकायत करती रहना, जो सुनाना हो सुना लेना, सुमन ने हंसते हुए कहा और पानी लेने किचन की तरफ चल पड़ी। तो पीछे पीछे प्रिया भी चल दी। तू चाय बना, पानी मैं खुद पी लूँगी, इस घर में मेहमान नहीं हूँ मैं, प्रिया ने कहा और फ्रिज से पानी का बोतल निकाल कर गिलास में पानी डालने लगी। सुमन ने मुस्कुराते हुए गैस पर चाय का पानी रखा और ट्रे में कुछ नमकीन बिस्किट डाले। तब तक चाय भी तैयार हो गई और चाय लेकर दोनों सहेलियां बेडरूम की तरफ चल पड़ी। देखना, किसी दिन इन्हीं जिम्मेदारियों में यूं ही घुटती रह जाएगी, लाइफ एक ही बार मिलती है, प्रिया चाय का सिप लेते लेते फिर शुरू हो गई। यार, सब अपने अपने ज़िंदगी जी रहे हैं, मैं भी ठीक हूँ, खुश हूँ, तू ज़्यादा सोच रही है, इतना सोचेगी तो चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाएंगी, सुमन ने प्रिया को छेड़ते हुए कहा। चल और सुना, बच्चे और जीजाजी कैसे हैं? सब ठीक है, मस्त है, प्रिया ने यूं ही जवाब दिया। दोनों स्कूल टाइम की सहेलियां देर तक नई पुरानी बातें करती रहीं। दोनों बचपन की सहेलियां तो थी ही, शादी के बाद भी एक ही शहर में आ गईं।

और आज भी दोनों की दोस्ती पहले की तरह जवान थी। प्रिया का ससुराल काफी संपन्न था, जबकि सुमन एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। प्रिया जब भी सुमन से मिलने आती थी, सुमन हमेशा एक अजीब सी कमतरी के एहसास से घिर जाती थी। हालांकि उसे भी किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी वह सोचती थी, प्रिया कितना जिंदा दिल, कितनी मस्त मौला जिंदगी जी रही है, जबकि मुझे तो पारिवारिक जिम्मेदारियों से ही फुर्सत नहीं मिलती है। प्रिया के पति का अपना बिजनेस था, नौकर चाकर गाड़ी बंगला क्या नहीं था उसके पास। दो बेटे थे जो बोर्डिंग में पढ़ रहे थे और सास उसके छोटे बेटे के साथ रहती थी, क्योंकि प्रिया और उनका मन कभी नहीं मिला। ससुर जी का कोरोना काल में स्वर्गवास हो गया था। ले देकर वही मियाँ बीबी संग थे, जिसमें मियाँ बिजनेस में बिजी थे और बीबी सोशल लाइफ में एक्टिव थी। इधर सुमन भी पढ़ी लिखी और समझदार गृहिणी की भूमिका में थी। पति उसके भी अच्छा कमाते थे, पर इतना कि जिसमें उनकी ज़रूरतें आराम से पूरी हो जाए। सुमन के सास ससुर भी उसके साथ ही रहते थे और बच्चे वही साझा परिवार में पढ़ बढ़ रहे थे। शहर के ही ठीक ठाक स्कूल से पढ़ाई कर रहे थे। सुमन को यूं भी अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं थी, पर प्रिया को हमेशा ऐसा लगता था कि सुमन घर में ही फंस के रह गई है। सही भी था, साझा परिवार का कॉन्सेप्ट अब कहाँ रह गया था। लोगों में न अब आपसी स्नेह और तालमेल रहा, ना ही सहन शक्ति। अब सभी को स्पेस चाहिए। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब प्रिया के दोनों बच्चे अच्छे से सेटल हो गए थे। बड़े ने दूसरे शहर में अपनी कंपनी डाल दी थी, तो छोटा बेटा US के एक बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगा था। इधर सुमन का बेटा भी MBBS करके इंटर्नशिप कर रहा था और बेटी का बैंक में हाल ही में जॉब लगा था। इन सालों में सुमन के साथ ससुर गोलोकवासी हो गए थे। इन बीतते समय के साथ दोनों सहेलियों की दोस्ती पर कोई आँच नहीं आया था। दोनों आज से भी कहीं ज़्यादा पक्की सहेली बन गई थी। अचानक एक रात मोबाइल की घंटी लगातार बज रही थी। सुमन घबरा उठी। हे राम, आधी रात में किसका फ़ोन है? उसने हड़बड़ाकर फ़ोन उठाया। सुमी सुमी, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, रवि को दिल का दौरा पड़ा है। जल्दी आ जाओ सुमी, मुझे डर लग रहा है, डॉक्टर तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। प्रिया बोलते बोलते लगातार रो रही थी। एक पल को तो सुमन सुन्न रह गई, पर फिर तुरंत ही खुद को संभाला। प्रिया घबरा मत, हम अभी आ रहे हैं। सुमन ने मोबाइल डिस्कनेक्ट करने के साथ बगल में सोए अपने पति आकाश को जगाया। दोनों आनन फानन में अस्पताल की तरफ से भागे। प्रिया ने जैसे ही सुमन को देखा, लपक कर गले लग गई और फूट फूट के रोने लगी। देख सुमन, क्या हो गया है? डॉक्टर बोल रहे हैं अभी तो कुछ नहीं कह सकते हैं। मैं क्या करूं, मैं रवि के बिना जी नहीं सकती हूँ। क्या अंटसंट सोच रही है, सब ठीक हो जाएगा, डॉक्टरों को क्या पता, वो तो कुछ भी कहेंगे। सुमन ने थोड़ा डपटने के लहजे में प्रिया को ढांढस बधाया। थोड़ी देर में आकाश कैंटीन से 3 चाय लेकर आए। ले थोड़ा सा पी ले, जाने कब से कुछ खाया भी नहीं होगा, सुमन ने चाय का गिलास जबरदस्ती प्रिया को पकड़ाते हुए कहा। सुमन और उसके पति के आ जाने के बाद प्रिया को बहुत तसल्ली मिल गई थी। बच्चों की क्या खबर है? बच्चों को खबर दिया है भाई साहब का? आकाश ने पूछा। हाँ, प्रिया ने हामी में सर हिलाते हुए कहा। जीजा जी को यह अचानक क्या हो गया? तू तो हर साल अपना चेकअप और जीजा जी का कराती रहती है। थोड़ी देर बाद जब प्रिया शांत हुई तो सुमन ने पूछ लिया। पता नहीं कौन सी टेंशन है इनको, कभी बैठकर दिल की बात की भी तो नहीं इन्होंने। हर जगह जाने किस किस तरह की प्रतियोगिता पाल रखी है। सबसे आगे सबसे सही चलने के दौड़ में हम सबको पीछे छोड़ दिया। पैसा तो बहुत कमाया, पर बाकी कुछ नहीं बचा है। अब हमेशा हंसती हंसाती प्रिया के मुंह से आज ऐसी बात सुनकर सुमन अवाक हो गई।
आकाश भी सुमन का मुँह ताकने लगा था। बच्चों को सबसे आगे रखने के होड़ में उन्होंने खुद से मुझसे कच्ची उम्र में ही अलग कर दिया। उन्हें परिवार से माँ बाप से कभी जुड़ने नहीं दिया। मशीनी लाइफ जीते जीते भावनाओं भी मशीनी हो गई सबकी। प्रिया बोलते बोलते आकाश की तरफ मुड़ गई। जीजा जी अब सही कहते थे, सही सोचते थे।

बच्चों को कम से कम बचपन में तो माँ बाप से जुड़ा रहने देना चाहिए। शायद बात अधूरी छोड़कर प्रिया एक बार फिर रोने लगी। सुमन ने प्रिया का हाथ अपने हाथ में लेकर सांत्वना दिया, लेकिन प्रिया अभी कुछ हुआ है क्या? जीजा जी को अचानक इतना बड़ा हार्ट अटैक? थोड़ी रुक के सुमन ने पूछा। छोटे ने वही US में स्पेन के एक लड़के से शादी कर ली है। दोपहर में हमें बस एक सूचना भेज दी थी, प्रिया ने टूटे मन से कहा। ओह, सुमन बस इतना ही कह सकी। तुम तो जानती ही हो, बड़े ने बेंगलोर में घर ले लिया था और अब एक लड़की भी पसंद करके लिव इन में रहने लगा है। क्या फ़ायदा हुआ सुमी, सारी जवानी इन्हीं बच्चों के लिए तिल तिल कर अपना सारा सुनहरा भविष्य जला दिया। अब ये बड़ा घर, महंगी गाड़ी, ये जायदाद हमारे बच्चों को बांध कर नहीं रख सके। और अब इनको इस बात का एहसास हो रहा है कि समय के साथ उन्होंने क्या खो दिया है। लेकिन अब क्या हो सकता है? यही सब बात कई दिनों से इनको खाए जा रही थी, पर इतना असर हो रहा था मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। बहुत करीब मुझे भी तो नहीं रखा इन्होंने। पेशेंट को होश आ गया है, कोई एक लोग जाकर मिल सकते हैं, प्रिया बोलती जा रही थी। इतने में नर्स ने आकर बताया। सुमन ने प्रिया के सिर पर हाथ फेर कर कहा, देखो प्रिया, जो हो गया सो हो गया। इस वक्त बिना किसी सुबह शिकायत के जीजा जी की हिम्मत बन जाओ। तुम्हें मजबूत देखकर उन्हें भी कठिन समय से निकलने के लिए संबल मिलेगा। जाओ और अब अपने पति को लेकर वापस आना। प्रिया ने हामी में सिर हिलाया। ICU में इस तरह से रवि को लेटे हुए देखकर प्रिया का दिल मुंह को आ गया। रवि प्रिया की तरफ लाचारी से देख रहे थे। प्रिया ने आगे बढ़कर रवि का हाथ अपने दोनों हाथों से थाम लिया। प्रिया की आंखों से मानो गंगा जमुना बह रहा था। सबके लिए बहुत दौड़ लिए रवि, अब मेरे लिए मेरे पास ठहर जाओ, मेरा भी तो हक है ना तुम पर, प्रिया ने टूटे दिल से कहा। उसकी ऐसी बात सुनकर रवि के भी आंखों से आंसू बहने लगा था। यही तो चाहते हैं ना कि बच्चे खूब तरक्की करें, खुश रहें, और वह खुश हैं अपनी खुशी में। हमारे लिए का यह संतोष की बात नहीं, प्रिया ने आगे कहा। रवि ने भी हामी में पलके झपका दी। मैम, पेशेंट को अब आराम करने दे, इन्हें ज़्यादा बोलना और टेंशन लेना मना है, नर्स ने आकर प्रिया को टोका। रवि, मैं बाहर इंतज़ार कर रही हूँ आपका, सख्त ज़रूरत है मुझे आपकी, याद रखिएगा। प्रिया ने रवि का माथा चूमा और बाहर आ गई। सुमन ने बाहर आते प्रिया के चेहरे पर उमड़े विश्वास और प्रेम को पढ़ लिया था। प्रिया बार बार सुमन और आकाश को घर जाने के लिए बोल रही थी, पर दोनों ने मना कर दिया क्योंकि डॉक्टर ने रवि को भी खतरे से बाहर नहीं बताया था। साली साहिबा, आप तो खुशखबरी के साथ ही घर जाएंगे, आकाश ने प्रिया से कहा। सुबह के उजाले के साथ ही डॉक्टरों की टीम ने रवि को खतरे से बाहर बता दिया। सबने राहत की सांस ली। प्रिया, अब हम घर जा रहे हैं, फ्रेश होकर थोड़ा काम समेट कर आती हूँ और तेरा नाश्ता भी लेते आऊँगी, सुमन ने कहा। क्यों परेशान होगी, मैं ठीक हूँ, तुम लोग जाओ और आराम करो, मन न माने तो शाम तक आ जाना, वैसे भी मुझे कुछ खाने का मन नहीं, जब हुआ तो यहीं से कुछ खा लूँगी, प्रिया ने सुमन से कहा। ज़्यादा हीरोइन न बनो, आ जाऊँगी मैं, बढ़िया आई, सुमन ने प्रिया को डांटा। तभी आकाश चाय लेकर आ गए। चाय पीने के बाद सुमन ने प्रिया को गले लगाया। आती हूँ, कहकर आकाश के साथ घर के तरफ चल पड़ी। रास्ते पर सुमन और आकाश दोनों चुप अपने अपने सोच में डूबे हुए थे। घर पहुंचकर आकाश ने गाड़ी से उतरते हुए सुमन को आवाज़ दी, सुमी। सुमन ने आकाश की तरफ देखा। सुमी, परवरिश में भले ही अंतर हो, पर एक बात तो सीखने लायक है, समय बहुत बदल गया है और समय से ज़्यादा इंसान और उसकी भावनाएं। नई पीढ़ी से कोई अपेक्षा रखने लायक नहीं है, नहीं तो उनकी उपेक्षा ऐसे ही दिल तोड़ देगी, आकाश ने कहा। सुमन ने आकाश की तरफ देखा, वह समझ रही थी कि वह क्या कहना चाह रहे हैं। आखिर हम माँ बाप ही तो हैं,
कि बच्चे कामयाब हो और खुश रहें, तो उनकी खुशी में खुश होने में ही हमारी भलाई है। बच्चे अपनी ज़िंदगी में माँ बाप को उतनी अहमियत भले न दे, पर माँ बाप तो उन्हीं के लिए जीते हैं। आकाश ने आगे कहा, समझ रही हूँ मैं आपका मंतव्य, जिंदगी को अब एक अलग नज़रिए से देखना पड़ेगा हम सबको। चलिए आप फ्रेश होकर आराम कर ले, मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके अस्पताल जाऊंगी। प्रिया अकेली है। सुमन ने घर के

0: भीतर जाते जाते कहा और मन ही मन सोच रही थी, पता नहीं उसके बच्चे आएंगे कब तक आएंगे, या आएंगे भी या नहीं।
1: समय की मांग। अभी आप सुन रहे थे ये कहानी साधना सिंह से। इसके साथ ही हिंदी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
2: नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in। देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
4: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
3: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज इसमें कलाकार हैं नुसरत फतेह अली खान।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है। मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग, और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: जब दिल ने किसी को याद किया हो, जब कोई धुन दिल में उतर गई हो और कभी किसी को सुनाना हो कोई गीत, तो बस आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश लेकर आ रहा है आपके दिल की आवाज, जहां आपके प्यार भरे संदेश और आपके पसंदीदा गीत बनेंगे किसी की मुस्कान। तो उठाइए फोन, कीजिए हमें कॉल हर शनिवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0551-220-5386 और आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं हर रविवार 10:05 पर। हमें रहेगा आपका इंतजार, जहां दिलों की दूरियां गीतों से मिटती हैं।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार थे नुसरत फतेह अली खां। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को है। कुछ ही क्षणों में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। और रक्षा मंत्रालय दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
2: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
1: अफगानिस्तान की जनता के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता से संबंधित उपायों के माध्यम से अफगानिस्तान की सहायता जारी रखे हुए है। श्री जायसवाल ने बताया कि MT मेरीमैक्स जहाज के

0: चालक दल के सभी 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
1: जब ये हादसा हुआ उसमें तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहां ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया, तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित

0: सुरक्षा राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई हैं।
1: The amount of time we have spent
2: हमने उन देशों के साथ लगातार बातचीत जारी रखी जो तेल गैस एलएनजी एलपीजी तथा उर्वरकों के उत्पादक हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित का विषय है। इसलिए विदेश नीति पूरी तरह से उस समय के प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप संचालित होती है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भर को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार ये सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिन के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर कोई दबाव नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: महिलाएं बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों के आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफ़ी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
3: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पे एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज

0: खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जी रामजी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
1: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया। 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5,00,000 रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत व्यय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
3: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5,00,000 रुपए मिलेंगे।
2: सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
4: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है। बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रहता हूँ।
2: सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित 3 विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों का आज स्वीकृति पत्र जारी किए। ये संस्थान ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय हैं। ये विश्वविद्यालय महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये विश्वविद्यालय व्यवसाय, कंप्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में कार्यक्रम उपलब्ध

0: कराएंगे। श्रीलंका के दांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने कल पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल लू चलने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. India expresses grave concern over killings of 30 civilians in deadly crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Accuses Islamabad of using fake news to mask severe human rights violations. External Affairs Minister S. Jayashankar says, foreign policy under Modi-led government during past 12 years is in sync with its core national goals. Prime Minister Narendra Modi holds telephone conversation with Emir of Kuwait on evolving security situation in West Asia. Government gives financial support of 1.23 lakh crore rupees to oil marketing companies to ease burden of rising crude oil prices. Home Minister Amit Shah inaugurates land port management system to digitize and streamline cargo processing and passenger movement across land borders. And Defence Ministry to establish 250 megawatt solar power project with battery energy storage system in Uttar Pradesh for strengthening long-term energy security. And now the news in detail. The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi, spokesperson at the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses.
2: A pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses.
1: Over 30 people have been killed and around 200 others have been injured in clashes between protesters and security forces in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Tensions in the region escalated after authorities banned the Joint Awami Action Committee, a prominent civil society alliance that has spearheaded protests over economic and political grievances in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has said that India's foreign policy is now in sync with its core national goals. The minister said that foreign policy and diplomacy have got integrated with priorities of the government, focusing on social security and national development. Dr. Jayashankar made these remarks in an interview given to DD News. He said that national security in the present time is not just about

0: بأمان تهن.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्षों पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक आराधना पटनायक के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
2: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर एक राष्ट्रव्यापी अभियान की आज से शुरुआत हुई है। आज हम कार्यक्रम में इस राष्ट्रव्यापी अभियान और देश भर में जो आज से जागरूकता और अन्य गतिविधियां इस अभियान के तहत चल रही हैं उन पर हम आज कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं, और साथ ही किस तरह से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ने देश में जन स्वास्थ्य में अपनी एक बड़ी भूमिका निभाई है, इस बारे में भी आज हम कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ी हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन डायरेक्टर आराधना पटनायक। बहुत बहुत स्वागत है मैम आकाशवाणी में आपका।
3: नमस्कार।
2: तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत जो आज से एक देश भर में विशेष आउटरीच अभियान शुरू किया गया है, इसका मुख्य मकसद क्या है?
3: आज से जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की 10वीं वर्षगांठ को आज हम मुख्य रूप से उसको एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं। आपको जानकारी होगी कि ये प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ये 9 जून 2016 से प्रारंभ किया गया, और इस अभियान में प्रत्येक माह के 9 तारीख को जो भी गर्भवती माताएं हमारी हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको विशेषज्ञ की सेवाएं दी जाती है। जो हमारे स्पेशलिस्ट कंसल्टेशंस वो इस दौरान होती है, और साथ ही साथ जो उनका प्रसव पूर्व जांच किया जाता है वो निःशुल्क किया जाता है। साथ ही साथ विशेषज्ञ संपूर्ण रूप से उनकी जांच करते हैं ताकि स्वस्थ माँ एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके, ताकि गर्भावस्था के दौरान उनको कोई भी दिक्कत नहीं हो।
2: जी, तो जैसा कि आपने बताया कि 10 वर्ष पूरे होने पर ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान है, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी वो गतिविधियां या जागरूकता के कार्यक्रम हैं जो अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस अभियान के तहत जो संचालित किए जाएंगे, उस बारे में भी हमें बताएं।
3: सभी हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है वहां पर आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजन किया जा रहा है। तो लगभग 1,80,000 हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, जहां पर डॉक्टर्स और हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स वो प्रसव पूर्व जांच करते हैं, और उसके साथ साथ जितने हमारे जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल और हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, फर्स्ट रेफरल यूनिट्स है, वहां पर गायनेकोलॉजिस्ट की प्रेजेंस में उनका प्रसव पूर्व जांच होता है। इसके साथ साथ इसी दौरान हम लोग हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन को आइडेंटिफाई करते हैं। वैसे महिलाएं जिनको शारीरिक कोई ना कोई कठिनाई है जिसके कारण उनको हम एक हाई रिस्क कैटेगरी में लेते हैं, तो वो जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज है उन...

उनका स्पेशल फोकस रहता है इस 9 तारीख को, और उनका स्क्रीनिंग और उनका फॉलोअप, और इसको लेकर एक हम लोग अभियान भी चालू किए हैं जिसमें हम अवेयरनेस ला रहे हैं। तो हमारी जो आशा बहनें हैं वो गांव गांव घर घर जाके महिलाओं को जागरूक कर रही हैं कि आप अपना प्रसव पूर्व जांच

0: राज हमारी संस्थाएं हैं, इन सभी को, जितने भी सामुदायिक ऐसे हमारे प्लेटफॉर्म्स है, कमिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म्स,
1: जी
0: वहां पर हम अवेयरनेस की एक्टिविटीज करते हैं।
1: बिल्कुल, तो वो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का जो ये एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम है, इसमें एक और विशेष पहलू है कि 9 ऐसी निशुल्क सेवाएं गर्भवती महिलाओं तक पहुंचाई जाएंगी। कौन सी वो 9 सेवाएं हैं और किस तरह से जो गर्भवती महिलाएं हैं या परिवार हैं इन निशुल्क सेवाओं का फायदा ले सकते हैं?
0: स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन, तो एक विशेषज्ञ वहां पर रहेंगी जो
1: जी
0: गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन, जो इनकी जांच करेंगे। दूसरा है अल्ट्रासाउंड की सुविधा रहेगी, तो सोनोग्राफी उनकी हो सकती है। तीसरा हमारा है हाई रिस्क प्रेगनेंसी का डिटेक्शन और मैनेजमेंट, तो उनको चिन्हित करना। चौथा है हर एक इंडिविजुअल को ट्रैक करना और उसको फॉलो अप करना। पांचवा है ट्रांसपोर्टेशन इंसेंटिव, तो उनको आने जाने के लिए, जो पीएमएसएमए सेशन के लिए वो आते हैं, उसके लिए जो उनको सुविधा चाहिए ट्रांसपोर्टेशन की, वो हम उसमें देंगे। छठा है उनको हम नियरेस्ट हमारे जो फर्स्ट रेफरल यूनिट है, जहां पर डिलीवरी हो सकती है, उससे हम टैग कर देंगे। तो ये सातवा है जो उनकी मुख्य जांचें होती है, जैसे खून की जांच, यूरिन की जांच, वो सारा है। फिर आठवां है आयरन फॉलिक एसिड, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन और टीडी वैक्सीनेशन जो उनका होता है वो कराना। और नौवां है काउंसलिंग करना उनको, न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट, फिर उसके बाद फैमिली प्लानिंग। तो पूरे
1: जी
0: प्रसव के दौरान उनको, क्योंकि अपने खाने पीने पर बहुत ध्यान देना है, क्या क्या उनको खाना है, कैसे पौष्टिक
1: जी
0: आहार लेना है, और फिर साथ ही साथ परिवार नियोजन कि
1: जी
0: अगला बच्चा फिर कैसे प्लान कर सकते हैं
1: जी
0: उस पर। तो ये 9 प्रकार की सेवाएं हम मुफ्त में सभी गर्भवती माताओं को देते हैं।
1: बिल्कुल, तो इस अभियान के 10 वर्ष पूरे हुए हैं। हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि 2016 में शुरू हुआ प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, अब किस तरह से इन 10 सालों में इस अभियान से जो देश भर की करोड़ों गर्भवती महिलाएं उनको लाभ हुआ है, क्या कुछ महत्वपूर्ण नतीजे और इस अभियान का फायदा हमें इन 10 सालों में देखने को मिला है?
0: इन 10 सालों में मैंने बहुत खुशी के साथ बताना चाहूंगी, 7.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को, ये जो प्रत्येक माह के 9 तारीख में आती हैं, उनको प्रसव पूर्व उनका जांच किया गया है, तो उनको एंटीनेटल केयर चेकअप मिला है। और हम लोगों ने लगभग 1.2 करोड़ हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन को आइडेंटिफाई किया, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को आइडेंटिफाई किया और उनका मैनेजमेंट करके उनका इंश्योर कराया कि सेफ डिलीवरी हो। तो ये एक काफी बड़ी
1: बिल्कुल
0: उपलब्धि है। और इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूंगी, 9 तारीख तो एक फिक्स्ड डे है जहां पर हम सर्विसेज देते हैं। वैसे हमारे सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं और ANM बहनें हैं और आशा बहनें प्रेग्नेंट वुमेन को लाती है, वो प्रतिदिन उनको ये सेवा मिल सकती है कि वो ANC चेकअप के लिए आ सकते हैं जब भी उनको आवश्यकता हो।
1: बिल्कुल
0: और 9 तारीख को स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन, वो एक मेजर एड ऑन हम लोगों ने किया है।
1: बिल्कुल, एक जो विशेष इस अभियान ने भूमिका निभाई है कि जो प्रसव से पूर्व की जांच होती है जो प्रेगनेंसी के दौरान, तो उस जांच की पूरी एक व्यवस्था इस अभियान के तहत स्थापित हुई है। तो हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो भारत का एक पूरा स्वास्थ्य ढांचा है वो कैसे अब बदला है, कैसे लोगों में, महिलाओं में खासतौर पर, प्रसव पूर्व जांच को लेकर इस खास अभियान से एक जागरूकता आई है, तो कैसे इस मामले में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है?
0: पहले हम लोग जो ये कार्यक्रम चलता रहा है, हमारे सभी स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव पूर्व जांच के लिए 4 ANCs, मतलब 4 बार महिला को, गर्भवती माता को अपने 9 महीने के दौरान कम से कम 4 बार उनको आके अपना जांच कराना था। ये मैं 2016 के पहले की बात कर रही हूँ। 2016 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान आया, इसमें हम लोग सभी गर्भवती माताओं के लिए सुविधा रखी कि प्रत्येक माह के 9 तारीख को आप एक अतिरिक्त, मतलब 5th ANC,
1: बिल्कुल
0: पांचवा अपना चेकअप कराने के लिए आप एक विशेषज्ञ की सेवा ले सकते हैं, वो उनकी सेवा मुफ्त में आपको उपलब्ध है। और उसके बाद जब इसमें हम लोग को सफलता हासिल हुई, तो हम लोगों ने 2022 में यही प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को एक्सटेंडेड पीएमएसएमए करके
1: जी
0: लॉन्च
1: जी
0: किया, जिसमें जो ये गर्भवती माताएं जो हाई रिस्क कैटेगरी में आती, तो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के लिए 3 अतिरिक्त चेकअप्स, तो मतलब टोटल 8 हो गया। तो एक नॉर्मल महिला के लिए जो हाई रिस्क नहीं है, नॉर्मल उसका डिलीवरी होना है, 4 ANC प्लस एक विशेषज्ञ की सेवा, तो
1: जी
0: 5 हुआ। और हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लिए ये 5 + 3 और, मतलब 8 टोटल ANC चेकअप होगा। तो
1: बिल्कुल
0: ये एक मेन बदलाव हुआ। तो इसमें जो हमें सबसे बड़ी उपलब्धि जो मुझे लगती है कि क्योंकि अब हम हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन चिन्हित कर पा रहे हैं और चिन्हित करके उनका फॉलोअप कर पा रहे हैं, उनका हम लाइनअप करें कहाँ डिलीवरी होना है और उनको आने जाने के लिए, उनको बाकी सारे जांच के लिए मुफ्त, सारा हाई रिस्क फैक्टर्स करीब हमारे

0: कैटेगरीज हैं, जैसे सीवियरली वो एनीमिक, डायबिटिक है, तो इस तरह कई प्रकार के हैं हमारे हाई रिस्क फैक्टर्स, और हम समय पर उनको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन को, तो उनको वो विशेष सेवाएं जो उनको विशेषज्ञ की आवश्यकता है, उनको बेहतर सेवा देने की आवश्यकता है, वो हम पहले से कर पा रहे हैं। तो
1: बिल्कुल,
0: इससे हमारे मातृत्व मृत्यु दर में भी कमी आई है और शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई है।
1: ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे श्रोताओं को बताई। इस पर ही मैं अगला प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो अभी हमारे पास आंकड़े भी हैं कि हाल ही में पहले की तुलना में हमारे पास जो मातृ मृत्यु दर है उसमें बहुत बड़ी संख्या में कमी आई है, तो जिस तरह से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान एक सफल अभियान रहा है, कैसे प्रसव पूर्व जांच या जो पूरी सुविधाएं इस अभियान के तहत दी गई हैं उसने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में एक बड़ी कमी लाने में मदद की है, इस बारे में भी आप थोड़ा सा और प्रकाश डालना चाहें तो।
0: अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो मातृत्व मृत्यु दर 2014-16 का अगर हम डाटा लें, जो SRS का है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है,
1: जी
0: उसमें 130 था, और आज वो 2022-24 का अभी हाल ही में SRS डाटा आया है, वो 87 हो गया है, तो 87 है हो गया है। और अभी 2023 में जो यूनाइटेड नेशंस के मेटरनल मोर्टालिटी एस्टिमेशन इंटर एजेंसी ग्रुप है, UNMMEIG, उन्होंने हमें ये बताया कि हमारा इंडिया का डिक्लाइन करीब 86% हुआ है 1990 से लेकर अब तक, जबकि ग्लोबल एवरेज है पूरे विश्व में ये मात्र 48% डिक्लाइन हुआ है MMR में, और इंडिया में वो डिक्लाइन मैंने ऑलमोस्ट डबल आप कह सकते हैं, 86% डिक्लाइन हुआ है पिछले 2 दशकों में। उसी तरह अगर नियोनेटल मोर्टालिटी रेट की, जो नवजात शिशु में मृत्यु दर होता है, वो हमारा 26 प्रति 1,000 लाइव बर्थ था 2014 में, वो घट के अभी 18 प्रति 1,000 लाइव बर्थ 2024 का जो लेटेस्ट SRS आया है उसमें आया है। उसमें भी जो UN इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टालिटी एस्टिमेशन 2025 का उनका रिपोर्ट है, UNIGME रिपोर्ट हम कहते
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: उसमें इंडिया का डिक्लाइन 70%, मतलब 70% डिक्लाइन हुआ है नवजात शिशु मृत्यु दर में, और ग्लोबल डिक्लाइन है 54%। तो इसमें भी हम लोग की उपलब्धि विश्व के सापेक्ष बहुत बेहतरीन हुआ।
1: जी निश्चित तौर पर, और क्योंकि ये ऐसी योजना रही है जिसने धरातल पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने में स्वास्थ्य में मदद की है, हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि जो धरातल पर दूर दराज गांवों में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, आशाएं हैं, ANM हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनकी किस तरह से भूमिका को सुनिश्चित किया गया है, कैसे वो इसमें अपना महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं।
0: आशा वर्कर्स हैं, ये सबसे बड़ी भूमिका निभा रही हैं। आशा बहनों को पता है कि उनके गांव में कितनी गर्भवती माताएं हैं, तो
1: जी
0: वो एक-एक के घर जाके उनसे संपर्क करके फिर उनको लेकर आती हैं हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर और स्वास्थ्य केंद्रों में, जहां पर उनकी जांच की जाती है। जांच के बाद उनका फॉलोअप करना, बार बार उनके से संपर्क में रहना, कि डिलीवरी को प्लान करना, मतलब कहाँ पर वो प्रसव के लिए जाएंगी, जब जब वो चेकअप के लिए आती हैं, जब जब अपने प्रसव पूर्व जांच के लिए आती हैं, आशा बहन उनको साथ में लेकर आती है,
1: जी
0: प्रसव के दौरान भी वो उनके साथ में रहती है। तो आशा बहनों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। उसी के साथ साथ हमारे जो ANM दीदी हैं, मुख्य रूप से उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है, और हमारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है जिसमें
1: जी
0: हम ये पूरा ट्रैक करते हैं। हाल ही में एक जननी पोर्टल लॉन्च किया गया माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा 30 अप्रैल को, जिसमें हम एक-एक गर्भवती माता का ट्रैकिंग करते हैं, और जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन होता है तो उनका जब नेक्स्ट उनका ड्यू रहता है, आशा बहन के साथ साथ यहाँ से एक मैसेज भी जाता है, डिजिटल से एक मैसेज उनको जाता है कि आज आपका ड्यू डेट है चेकअप के लिए, तो आप जरूर आए। उसी तरह 9 तारीख के लिए उनको फिर मैसेज जाता है कि आप 9 तारीख को अपने जांच के लिए स्वास्थ्य केंद्र में जरूर आए। तो ये सारा फॉलोअप करना और सभी सुविधाएं पहुंचे, जागरूकता लाना, कैसे वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रह सकती है, खान पान में क्या उनको विशेष ध्यान देना, ये सभी हमारी आशा बहने और ANM दीदी वो करती है। उसके अलावा जो आंगनवाड़ी दीदियां हैं, आंगनवाड़ी में हम लोग का विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे
1: जी
0: मनता है,
1: जी
0: हर महीने मनाया जाता है, एक दिन होता है, वो एक आउटरीच कैंप के रूप में होता है। तो उसमें आंगनवाड़ी में भी यही सेवा जो हम स्वास्थ्य केंद्र में प्रतिदिन देते हैं, ANC चेकअप और उनका टीकाकरण, उनके खाना पीने के ऊपर क्या ध्यान देना, ये सारी चीजें भी VHND में, जो आंगनवाड़ी केंद्र में महीने में एक दिन वो भी होता है, तो वहां पर आंगनवाड़ी सेविकाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका।
1: बिल्कुल, तो जिस तरह से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान पिछले 10 वर्षों में हमारे देश की जो मेटरनल हेल्थ है, मातृ स्वास्थ्य है, उसमें एक अपनी बड़ी भूमिका निभा रहा है, और उसके बहुत सारे नतीजे हमें इन वर्षों में देखने को भी मिले हैं, जिस पर हमने विस्तार से चर्चा की। बहुत बहुत

0: धन्यवाद मैम, आप कार्यक्रम में जुड़ी और आपने विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारी भी दी और महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्षों पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक आराधना पटनायक के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: मंथन।

0: आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण।
1: खेल दर्पण कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूं मैं अल्पना श्रीवास्तव। झांसी शहर, विशेष रूप से हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जन्मभूमि होने के कारण पूरे देश में खेल नगरी के रूप में जाना जाता है। यहाँ खेल केवल मनोरंजन नहीं बल्कि युवाओं के व्यक्तित्व विकास, अनुशासन, स्वास्थ्य और रोजगार का माध्यम भी बन रहे हैं। झांसी में खिलाड़ियों के लिए कई मैदान और प्रशिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए नए स्टेडियम और खेल परिसर विकसित किए जा रहे हैं। झांसी के मोठ गांव में पहला मल्टीपर्पज ग्रामीण स्टेडियम बनकर तैयार हो गया है। यहां लड़के और लड़कियों के लिए खेल उपकरणों की व्यवस्था भी की गई है। यहां पर मल्टीपर्पज हॉल में बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट, कुश्ती और कबड्डी, जिम्नेजियम हॉल में ओपन जिम और टेबल टेनिस कोर्ट, उपकरण के रूप में जेवलिन, शॉट पुट, डिस्कस, हैमर, वेट लिफ्टिंग हॉल की भी सुविधाएं होंगी। इसके साथ ही भानी देवी गोयल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में मल्टीपर्पज मिनी स्टेडियम का भी भूमि पूजन हो चुका है। यहां पर 400 मीटर के सिंथेटिक ट्रैक सहित इंडोर गेम्स की सुविधा होगी। झांसी की यदि हम बात करें तो यहाँ स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय मानकों वाला एथलेटिक्स स्टेडियम, डे नाइट मैच की सुविधा वाला एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम, फ्लड लाइट युक्त क्रिकेट ग्राउंड और दो बड़े जिम्नेजियम हॉल हैं। झांसी विकास प्राधिकरण ने भी इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाया है, जबकि सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में क्रिकेट का बड़ा ग्राउंड है जहां पवेलियन का भी निर्माण कराया जा रहा है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में बॉक्सिंग हॉल, कुश्ती हॉल, बास्केटबॉल कोर्ट, वातानुकूलित जिम, स्विमिंग पूल, क्रिकेट की नेट प्रैक्टिस सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा सभी प्रमुख खेलों के प्रशिक्षकों की नियुक्ति, बॉक्सिंग और हॉकी खिलाड़ियों के लिए आवासीय सुविधा भी है। भारत की पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों की स्थिति वर्तमान समय में काफी मजबूत और प्रभावशाली मानी जाती है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पिछले वर्षों में विश्व क्रिकेट टीम में विश्व विजेता बनकर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। टीम ने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और नेतृत्व तीनों क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का गौरव बढ़ाया है। आज हम बात करेंगे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उभरती हुई खिलाड़ी क्रांति गौड़ से। उन्होंने अपनी मेहनत और शानदार प्रदर्शन से क्रिकेट जगत में साथ ही साथ बुंदेलखंड में नई पहचान बनाई है। क्रांति जी, गांव से निकलकर भारतीय क्रिकेट टीम तक पहुंचने का सफर आपका कैसा रहा और साथ ही आप ये बताइए कि आपके घर परिवार गांव में कितनी खुशी थी?
2: मतलब छोटी थी जब, उस टाइम पे तो मैं गांव में रहती थी तो उधर ऐसा क्रिकेट था नहीं उस टाइम पे पहले। और लड़कियों का तो ऐसा था कि लड़कियों को निकलना भी थोड़ा सा, बाहर अगर कोई जा रहा है ना तो किसी को साथ नहीं भेजेंगे, तब लड़कियां जाती हैं। तो घर के सामने एक ग्राउंड है, उधर क्रिकेट चल रहा था तो लड़कियां सब अपना गेम खेल रही थी और मुझे ऐसा लगा कि मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए।

0: भैया लोग खेल रहे हैं तो मैं जाऊंगी उनके साथ खेलने। फिर टूर्नामेंट हुआ था ओपन टूर्नामेंट, तो दो टीमें आई हुई थी, एक मैच कराया था उन्होंने गर्ल्स का, तो दो टीमें आई हुई थी नौगांव और सागर। तो सागर की टीम में एक लड़की कम थी, तो मैं बस गई थी, गर्ल्स का मैच था, तो बस ऐसे घूम रही थी। तो उन्हें आके जो सागर टीम के कोच थे सोनू सर, उन्होंने आके मुझसे पूछा कि तुम खेलोगी क्या क्रिकेट? तो मैंने कहा हाँ सर मैं खेलूंगी। फिर हमारे वहाँ के जो पुलिस में स्टाफ में एक भैया है, उन्होंने बोला हाँ सर इसको खिला लो, बहुत अच्छा खेलते हैं। तो फिर वो भैया लोग गए, मेरे को यूनिफॉर्म दिलाया, और वो मेरा फर्स्ट मैच था लेदर का, और उस मैच में मैं मैन ऑफ द मैच थी।
1: गांव से निकलकर भारतीय क्रिकेट टीम तक पहुंचना, ये सफर आपका कैसा रहा और आपके घर परिवार और गांव को कितनी खुशी मिली जब आपका वहां चयन हो गया?
0: जब मैं गांव गई थी ना, तो उससे पहले मुझे मतलब WPL के लिए जाना था, तो हमारा सीनियर वनडे बोर्ड के मैचेस थे, तो हम लोग फाइनल जीते हुए थे। तो उस फाइनल मैच में मैंने बेंगाल के अगेंस्ट 4 विकेट लिए थे, चारों बोल्ड लिए थे और चारों बोल्ड विकेट थे। तो सबको ऐसा पता चला, क्योंकि जब मैं वनडे मैचेस खेल रही थी तभी ऑक्शन चल रहा था, यूपी वॉरियर्स टीम ने मुझे लिया था। तो एक तो विनिंग टीम, एक तो मैच जीत के हम लोग आए, और फिर एक और खुशी लेके आए कि WPL में सिलेक्शन हुआ। तो जब पता चला गुआरा में सबको, तो सब उसी मतलब मेरे वेलकम के लिए सब रेडी थे कि कब मैं आऊँ, कब मुझसे सब लोग मिले। मतलब एक प्राउड था कि हाँ कुछ तो, सबको खुशी थी, ऐसा नहीं कि कोई भी चीजें बोली भी हुई थी, मेरी फैमिली चीज में शामिल हुए वो भी उस चीज में खुश थे। जैसे मैं उधर पहुंची फिर सबके माहौल देखा, सबने टीका माला सब करा, मुझे बहुत खुशी हो रही थी और मेरे को बहुत प्राउड था कि मैं भी नहीं रुकी और मुझे फैमिली ने रोका भी नहीं उस चीज के लिए, तो जो मैंने आज उनको करके दिया, तो प्राउड फील कर रही थी उस टाइम।
1: भारतीय टीम में चयन की खबर मिली तब सबकी क्या प्रतिक्रिया थी?
0: जब सीनियर T20 मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं गुहारा में ही थी उस टाइम पे, मैं प्रैक्टिस कर रही थी। तो अचानक से एक दीदी उनका फोन आता है कि भाई तेरा सिलेक्शन हो गया है। मैंने कभी, मेरे पास लिस्ट नहीं आई। फिर उन्होंने मेरे को लिस्ट भेजी, जब मैंने लिस्ट देखी तो मेरे को, फिर मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी। मैंने कहा अब घर जा रही हूँ, हो गई प्रैक्टिस, सबको बताऊंगी घर पे। जैसे घर पे जाके बताया सबको पता चल गया, गुहारा मतलब ऐसा कोई बड़ा शहर तो नहीं है, गाँव टाइप में है। फिर जैसे सुबह सबको पता चला कि क्रांति के सीनियर टीम में सिलेक्शन हुआ है, तो जो लोग भी उधर पे, बहुत सारे लोग आए घर, और वो अंदर के जो न्यूज वाले भैया लोग, सबको पता चल गया था। क्योंकि मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ सीनियर टीम में सिलेक्शन हुआ है, उधर जाऊंगी मैं खेलने, तो कुछ नया सीख के आऊंगी और कुछ अच्छा वहाँ पे करके आऊंगी। फर्स्ट मैच से लेके लास्ट मैच तक मैंने टीम को 100% दिया है। फर्स्ट मैच से लेके लास्ट मैच तक मैंने ऐसा था कि मेरे को एक वो था कि बस टीम को जिताना है। फाइनल मैच में भी मैंने 4 विकेट लिए, बड़े प्लेयर्स थे चारों, बट ऐसा लग रहा था कि बस जिताना है और कुछ नहीं।
1: दूसरे वरिष्ठ खिलाड़ियों से आपको सहयोग मिला?
0: जब उधर मेरे को जाना था तो बहुत एक्साइटेड थी। पहले तो ऑरेंज प्लेयर से मिलूंगे और बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो सब मुझे मिलेंगे, उनसे मैं बहुत कुछ सीख सकती हूँ। तो मतलब ऐसा था वहाँ पे कि पहले तो हम लोग गए, पहले तो हमारे कैंप्स लगे कुछ दिन सूरत में, तो कैंप में जो मतलब ऐसा लग रहा था कि जो मेरे को पूछना चाहिए वो मैंने खुलकर पूछा, ऐसा नहीं लगा कि। और उधर जो कोचेस थे मैम, उनने मेरे को बताया सीनियर्स प्लेयर्स है उनसे मुझे कुछ पूछना है, तो उनसे भी मैं पूछती थी तो वो भी मेरे को बता रहे हैं। तो एक तो मैंने सारे मैचेस प्लेइंग करे हैं, सारे मैचेस मैंने खेले थे, तो अगर ऐसा था मैं बॉल डाल रही हूँ, अगर मेरे को एक ओवर में रन पड़ता है तो मेरे को ना वो सेट सा लग के रन पड़ गए, मेरा मूड थोड़ा सा ठीक, तो मेरे को ना बड़े प्लेयर्स आ रहेंगे वो मेरे को समझा रहे थे सीनियर प्लेयर कि ठीक है तुम बॉल डाल रही हो, वो बैटिंग कर रहे हैं, वो भी तो बैटिंग करने आए हैं, अगर तुम बॉल डाल रही हो तुम विकेट लोगे वो रन बनाएंगे, क्रिकेट का काम भी है मतलब नेक्स्ट ओवर लेके आना और सोच कर डालना बोलते। और उन्होंने ऐसे हमेशा यही बोला है, फेस में स्माइल रखना चाहे मैच का रिजल्ट कुछ भी हो।
1: धन्यवाद क्रांति जी, अपना और देश का नाम यूं ही रोशन करती रहेंगी। क्रांति गौर के कोच राजीव बिलथरे ने उनके खेलों को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजीव बिलथरे मध्य प्रदेश के छतरपुर के प्रसिद्ध क्रिकेट कोच और जिला क्रिकेट संघ के सचिव हैं। ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम बात करते हैं राजीव बिलथरे जी से। आपका स्वागत है राजीव जी।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि एक कोच के रूप में आपकी क्रिकेट की यात्रा कैसे शुरू हुई?
2: जी सबसे पहले छतरपुर में 2013 में जब हमने यहाँ पर एकेडमी शुरू की, उस समय यहाँ लेदर बॉल से क्रिकेट खेलना टोटल बंद हो चुका था, तो हम 3-4 लोगों ने कोशिश की कि यहाँ बच्चों को सिखाना शुरू करें। तो वहां से हम लोगों ने सिखाना शुरू किया, और आज इंडिया लेवल पे क्रांति गौड़ मेरी स्टूडेंट खेल रही है, और एक शुभम शुक्ला वो KKR IPL खेल रहा है। तो
1: अच्छा,
2: ये
1: बहुत अच्छी
2: दो
1: बात
2: बच्चे
1: है।
2: बड़े लेवल पे हाँ खेल रहे हैं, और एक लड़की अभी रिसेंटली MPL जो होता है मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग, उसमें ग्वालियर की टीम से खेल रही है।

0: यादव।
1: युवा
0: हाँ
1: खिलाड़ियों को तैयार करने में प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
0: एक तो क्या है, मेरा बैकग्राउंड पूरा स्पोर्ट्स का ही है, क्वालिफिकेशन पूरी स्पोर्ट्स की है, कॉलेज में जो जॉब है वो भी स्पोर्ट्स की है, तो खेल से जुड़े हुए काम तो लगातार हम कर ही रहे थे। लेकिन एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि छतरपुर से कोई रणजी ट्रॉफी खेले, तो
1: जी
0: एकेडमी स्टार्ट करने के बाद इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया कि एक रणजी ट्रॉफी हमको छतरपुर से खिलाना है, क्योंकि वो छतरपुर से कोई खेला नहीं था अभी तक। लेकिन रणजी ट्रॉफी से ऊपर इंडिया लेवल तक जब ये लड़की खेल गई, तो अब ये लगता है कि जो मेहनत है और जो परिश्रम किया वो सफल हुआ है।
1: पूरे बुंदेलखंड को एक नई पहचान मिल गई। राजीव जी, पहली बार क्रांति गौड़ की प्रतिभा को आपने कब और कैसे पहचाना?
0: क्रांति गौड़ 2017 में हमारी साई स्पोर्ट्स एकेडमी की टीम एक टूर्नामेंट खेल रही थी, गर्ल्स का टूर्नामेंट, उसमें इसके फादर लेके आए थे कि सर हमारी बच्ची गांव में ये लड़कों के साथ ऐसी खेलती रहती है टेनिस बॉल से, तो हम चाहते हैं कि आपके मार्गदर्शन में रहे और सीखे। तो उनको हमने कहा कि आप कल छतरपुर लेके आ जाइए, तो इसका एडमिशन कर देते हैं और प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। तो वो नेक्स्ट डे उसको लेके आ गए छतरपुर। तो
1: उस समय आपको लगा था कि ये खिलाड़ी एक दिन भारतीय टीम तक पहुंचेगी?
0: हाँ देखिए, उस समय वो थी एक ऑर्डिनरी प्लेयर, क्या है जो टेक्निकली वो तैयार नहीं थी, और फैमिली बैकग्राउंड भी उसका बहुत उस समय आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहा था उसको, हम फीस नहीं दे पाएंगे एकेडमी की। हमने कहा ठीक है, तो हमने उसकी फीस के लिए बोल दिया कि ये जब तक हमारे पास रहेगी तो फ्री इसको सिखाएंगे।
1: जी, आपने
0: आज तक
1: सहयोग
0: उससे
1: किया।
0: हाँ तो आज तक उससे कोई फीस नहीं ली। फिर उसके रहने की भी समस्या रही कि अब जब वो फीस नहीं दे सकती थी तो खाना रहना कैसे अफोर्ड करेगी,
1: जी
0: तो
1: हाँ,
0: करीब एक हफ्ते वो हमारे घर में रही। ऐसे बड़ा मतलब उसका जीवन तो बड़ा संघर्ष में रहा है। संघर्ष
1: जी हाँ, उनके संघर्ष के दिनों की कोई यादगार घटना हो तो बताइए।
0: के दिनों में यादगार तो ये है कि उसके पास शूज नहीं थे शुरू में, स्टार्टिंग में ड्रेस तो हमने शुरू में ही दे दी थी उसको, लोअर टी शर्ट, तो उसका बड़ा मन था कि एक स्पाइक जो बॉलर के स्पाइक होते हैं, तो
1: अरे वाह।
0: हाँ तो वो उसको जब हमने लाके दिए थे तो वो बहुत खुश हुई थी, मतलब ऐसा लगा था कि बहुत बड़ी चीज उसको मिल गई।
1: जी, क्रांति की सबसे बड़ी विशेषता आपको क्या लगती है?
0: उसके अंदर जो स्पीड है, गति, वो आमतौर पे लड़कियों में होती नहीं है। शरीर में मूवमेंट और स्पीड दो चीजें उसकी बहुत अलग है, हट के भी देखेंगी तो आपको अलग ही उसकी उसकी स्पीड अलग दिखेगी। बॉल के पीछे जब भागेगी, रनअप पे जब भागेगी, या बॉल की उसकी जो स्पीड है वो उसके शरीर की स्पीड से ही कन्वर्ट हो रही है
1: मतलब
0: बॉल
1: एक
0: में।
1: पता चलता है कि एक जुनून है उसको खेल के प्रति,
0: हाँ नहीं, जुनून तो है ही,
1: तभी इतना आगे
0: बाकी
1: पहुंची है।
0: जी।
1: ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों को क्रिकेट में आगे बढ़ाना सबसे बड़ी चुनौती होती है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं?
0: देखिए हम यहाँ पर जो एकेडमी में बच्चे हैं, लड़कियां हैं, जो अब अभी आज की डेट में तो पूरे मध्य प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश की भी लड़कियां हैं, करीब 40-45 लड़कियां रेगुलर ग्राउंड पर हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा परेशानी ये जाती है कि वो घर से बाहर निकालने में थोड़ा ट्रेडिशनल होते हैं, लेकिन जब से ये क्रांति गौड़ खेली है तब से ग्रामीण क्षेत्र से भी बहुत सारी लड़कियां आई हैं, और क्रांति भी अब जैसे एकेडमी की जो लड़कियां हैं उनको सपोर्ट करती है, हमें पता भी नहीं लगता, और लड़कियों को उपलब्ध करा देती है।
1: एक खिलाड़ी को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कोच की क्या भूमिका होती है?
0: बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते हैं लेकिन अच्छा नहीं होता है, तो उस समय जो प्लेयर है, खिलाड़ी है, वो थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशान रहता है, तो उस दौरान कोच की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कि किस तरीके से वो उसको समझाए, उससे बात करे, मतलब मोटिवेट उसको करते रहना पड़ता है बच्चे को।
1: क्रांति गौड़ जब भारतीय टीम का हिस्सा बनी तब आपने कैसा महसूस किया?
0: बहुत खुशी हुई। रात को करीब 10:30-11 बजे उसको कॉल आया श्रीलंका टूर के लिए,
1: जी
0: एक प्लेयर उसमें इंजर्ड हुई थी इंडिया टीम की, तो उसकी जगह इसको लिया गया था, और 10:30 बजे उसको कॉल आके ये कहा गया कि आपको 2 बजे निकलना है भोपाल के लिए, भोपाल से आप फ्लाइट है मॉर्निंग में। तो थोड़ी
1: कितना कम
0: परेशान थी,
1: समय मिला।
0: हाँ थोड़ी
1: जी
0: परेशान थी थोड़ा कि भोपाल कैसे पहुंचेंगे।
1: जी
0: अभी भी वर्ल्ड कप में जब भी उसका सिलेक्शन हुआ तुरंत फोन आया था कि सर
1: अच्छा,
0: बधाई हो।
1: वह युवा कोच और खिलाड़ियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए अच्छा खिलाड़ी बनना आसान भी नहीं है और कठिन भी नहीं है। वैसे एक अच्छा कोच बनना बहुत आसान नहीं है, और जो बनना चाहते हैं वह फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो कठिन भी नहीं है, लेकिन उसके लिए बहुत समर्पण और बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत रहती है। और कोच जितना ऑनेस्ट होगा, ईमानदार होगा, उसके बच्चे उतने अच्छे परफॉर्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे।

0: दौड़ भाग वाले खेल स्वस्थ एवं पुष्ट शरीर वाले खिलाड़ियों के लिए होते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से दिव्यांग यदि इन खेलों में दमखम दिखाए तो आश्चर्य स्वाभाविक है। विशेषकर पैरों से दिव्यांग खिलाड़ी क्रिकेट खेले तो उनकी विशिष्टता खास हो जाती है। पिछले दिनों झांसी के राजकीय इंटर कॉलेज स्थित खेल मैदान में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के दिव्यांग खिलाड़ियों की व्हीलचेयर क्रिकेट प्रतियोगिता हुई। व्हीलचेयर क्रिकेट को बढ़ावा देने का श्रेय झांसी के झाकरी निवासी सोमजीत सिंह को जाता है। पैदा होते ही उन्हें स्पाइन ट्यूमर हो गया। जब 3 माह के हुए तो ट्यूमर का ऑपरेशन किया गया। उन्हें बचपन से ही क्रिकेट का शौक था। 10 वर्ष की उम्र में ट्यूमर उनका वापस आ गया तो शरीर को लकवा मार गया। कमर के निचले हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। व्हीलचेयर पर बैठकर ही टीवी पर मैच देखकर वे शैडो प्रैक्टिस करने लगे। सोमजीत ने अपने जैसे लोगों की टीम बनाई। प्रयागराज में 3 दिसंबर 2015 को पहली बार व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट कराया। बाद में बीसीसीआई ने व्हीलचेयर टूर्नामेंट को मान्यता दी। सोमजीत वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश की व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के कप्तान चुने गए। ये टीम नेशनल चैंपियन बनी तो उन्हें स्थायी रूप से भारतीय टीम की कप्तानी सौंप दी गई। हमने बात की रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी के डायरेक्टर अभय यादव जी से।
1: मेरा नाम अभय यादव है, मैं झांसी का रहने वाला हूँ और रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी के नाम से रन कर रहा हूँ।
0: अभी हम जानना चाहते हैं कि पिछले दिनों व्हीलचेयर क्रिकेट हुआ था तो उसके बारे में कुछ बताएंगे।
1: जी, व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट जो हुआ था उसका नाम था वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई व्हीलचेयर क्रिकेट चैंपियनशिप।
0: जी,
1: की जो है प्रतिभागी जो टीमें थी वो यूपी, दिल्ली, हरियाणा और एमपी, यहाँ के टीमों ने उसमें प्रतिभागी की थी इस प्रतियोगिता में। और इसका जो फाइनल हुआ था वो यूपी वर्सेस दिल्ली के बीच में हुआ, जिसकी विजेता टीम रही थी वो यूपी थी।
0: सामान्य आदमी दौड़ भाग कर लेता है, स्वस्थ होता है, उसके लिए तो आसान होता है, लेकिन जो खेलते हैं दिव्यांग हैं जो, तो वो देखने में आपको कैसा लगा?
1: देखने में ये बहुत ही उत्कृष्ट था और कहीं ना कहीं झांसी वासियों के लिए ये एक नया टूर्नामेंट था कहीं ना कहीं। और सबसे बड़ी बात ये थी, झांसी में एक मिनी स्टेडियम बना जिसमें लाइट लगी हुई थी, रात की चकाचौंध दूधिया रोशनी में ये टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें कि हमारे इंडियन टीम के प्लेयर्स और कैप्टन
0: जी
1: सोमजीत सिंह उन्होंने तक इसमें आके प्रतिभा।
0: हाँ जी, कि जैसे कि पता चला कि सोमजीत सिंह जी है, उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी और बीसीसीआई द्वारा मान्यता भी मिली हुई है इसे। तो जैसे और जगह के खिलाड़ी आए थे क्रिकेट के लिए, तो वो लोग का, खिलाड़ियों का आपस में किस तरह का व्यवहार रहता है?
1: बहुत ही साधारण और बहुत सिंपल रहते हैं, अपने गेम से उनको मतलब है। समय से समय अवधि इसमें थोड़ी सी समय ज्यादा ले लेते हैं, परंतु अपने गेम को बहुत ही दृढ़ संकल्प के तौर पे ये आपस में करते हैं खिलाड़ी कहीं ना कहीं, और उस मेहनत को ग्राउंड पे उतार के लेके आते हैं और लोगों को दिखाते हैं खेल।
0: जैसे हमारे सामान्य क्रिकेट से कुछ अलग नियम होते होंगे?
1: सामान्य क्रिकेट से अलग नियम होते हैं, उनके बाउंड्री छोटी होती है और एम्पायर्स वगैरह उनके रहते हैं, बट हल्के से कुछ रूल्स में चेंज किए।
0: तो रन जब ये लेते हैं तो किसके, व्हीलचेयर के साथ ही जाते हैं?
1: व्हीलचेयर के साथ में ही जाते हैं।
0: ये हमारे यहाँ झांसी में कब से शुरू हुआ है?
1: ये झांसी में इसका जो टूर्नामेंट हुआ था ये हुआ था 25 फरवरी से स्टार्ट हुआ था वैसे ये टूर्नामेंट
0: जी,
1: और इसका जो मैच था वो 27 फरवरी को झांसी में हुआ था। 27 फरवरी को ये मैच हुआ था जिसमें कि दिल्ली ने बनाए थे 12 ओवर में 68 रन और उत्तर प्रदेश ने बनाए थे 10वीं ओवर की पहली ही गेंद पे इसका लक्ष्य को हासिल करते हुए 69 रन बनाए थे और 3 विकेट के नुकसान पे।
0: बहुत अच्छी बात है तो कि जो उस तरह के खिलाड़ी,
1: जो मैच था वो अपने झांसी में ही हुआ था।
0: आगे जो खिलाड़ियों का क्या भविष्य है इसमें?
1: बिल्कुल, खिलाड़ियों का भविष्य इसमें बहुत ही शानदार है, क्योंकि सरकार इसमें मदद कर रही है कहीं ना कहीं, खेल को प्रोत्साहन दे रही है। जो इस खेल को खेल रहे हैं दिव्यांग लोग हैं उनको आर्थिक सहायता भी दे रही है, जिससे कि दिव्यांगों में खेल के प्रति एक उत्सुकता भी है और कहीं ना कहीं उम्मीद भी है कि अगर हम इस दिव्यांग लोग जो होते हैं कहीं ना कहीं अगर इसको खेलते हैं तो फाइनेंशियली उनको सरकार की तरफ से मदद मिलेगी, साथ में नाम और शोहरत भी।
0: जी हाँ, प्रयागराज में 3 दिसंबर 2015 को पहली बार व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट कराया गया था
1: जी जी
0: और तब से लगातार ये मैच खेला जा रहा है।
1: और
0: चलिए
1: मैं एक एक चीज और बताना चाहूंगा आपको
0: जी।
1: कि ये जो अपना यहाँ पे टूर्नामेंट हुआ था, इसमें अनिल सिंघानिया जी जो थे, एक
0: जी
1: प्लेयर रहे, वो टॉप स्कोरर रहे थे फाइनल मैच में। उन्होंने 19 बॉल में
0: जी बहुत बड़ी

0: ये जो मैच है देखने वाले और जो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एक अलग ही इसमें उत्साह होता है और एक अलग ही अनुभव होता है मेरे।
1: बिल्कुल,
0: जी
1: कहीं ना
0: जी
1: कहीं जिस दिन मैं बता सकता हूं मैं उपस्थित था ग्राउंड पे, लगभग
0: जी
1: लगभग शाम का समय था और अप्रोक्सीमेटली 250 से 300 लोग दिया रोशनी में बीच शहर के अंदर जब उनका मैच हुआ, तो
0: जी
1: न्यूज रिपोर्टर्स से लेके लोकल पब्लिक से लेके, क्योंकि
0: जी
1: पहली बार कहीं ना कहीं झांसी में इसको सौभाग्य था कि वो लोग आए और खेल रहे थे, तो
0: जी
1: देखने का उनको मौका मिला कि कैसे दिव्यांग क्रिकेट होता है, और
0: जी
1: कहीं ना कहीं लोगों ने इसको
0: क्योंकि विशेषकर पैरों से जो दिव्यांग है और वो खिलाड़ी यदि क्रिकेट खेलते हैं तो एक विशिष्टता, एक खास खेल तो हो ही जाता है वो। अभय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको बताने के लिए, जानकारी देने के लिए, और हम आपके साथ
1: बिल्कुल
0: सभी को शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। श्रोताओं, तैराकी के बारे में हम बात करते हैं क्योंकि तैराकी केवल एक खेल नहीं बल्कि स्वास्थ्य, अनुशासन और आत्मविश्वास का अद्भुत संगम है। ये ऐसा व्यायाम है जिससे पूरे शरीर की मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं और शरीर को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने में मदद मिलती है। तैराकी हृदय और फेफड़ों को मजबूत बनाती है, सही शक्ति बढ़ाती है और मानसिक तनाव को कम करने में सहायक मानी जाती है। यही कारण है कि आज हर आयु वर्ग के लोग इसे अपना रहे हैं। खेल के रूप में तैराकी खिलाड़ियों में धैर्य, संतुलन और एकाग्रता विकसित करती है। ओलंपिक से लेकर राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तक भारतीय तैराक लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आइए खेलों को जीवन का हिस्सा बनाएं, और इस विषय में हमने बातचीत करी।
2: किशोर कुमार मिश्रा, मैं ध्यान चंद स्टेडियम में विगत 2004 से काम कर रहा हूँ। बराबर मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तैराकी में भाग लिया। इसके अलावा मैं बीकेडी में इंटर यूनिवर्सिटी गया।
0: अच्छा, ध्यानचंद स्टेडियम में स्विमिंग की प्रशिक्षण की क्या विशेषताएं हैं?
2: जो छोटे 5 साल से लेके 18 साल तक के बच्चों को जो हम लोग प्रशिक्षण देते हैं, और बाकी जो सीखना चाहते हैं उनको भी हम सिखाते हैं।
0: अच्छा,
2: जो कि
0: बच्चों को तैराकी सिखाने की शुरुआत किस उम्र से करनी चाहिए?
2: वैसे तो 5 साल है, बच्चे की लंबाई अगर थोड़ी सी और बड़ी हो तो 4 साल का बच्चा चल जाता है। हमारे सिखाए हुए बच्चे झांसी के नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पर इस समय अपना योगदान दिए हैं, जिसमें कि हमारी शिक्षिका जिया यादव हसारी की रहने वाली, और इस समय वो विदेश में अपना कैंप करने गई हुई है। अभी अभी लगभग 16 वर्ष, और इस समय वो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल में अपनी भैया स्विमिंग का जोड़ दिखा रही है।
0: बहुत अच्छी बात है। तो कि आज के युवाओं में स्विमिंग को लेकर कितना उत्साह दिखाई देता है?
2: वो आज तो हमें जब स्विमिंग सीखने जाते थे तो हमारे माता पिता मारते भी थे कि नहीं तुम डूब जाओगे ये
0: पानी
2: नहीं।
0: से
2: अब
0: दूर
2: आज
0: रहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने।
2: और आज समय ये है कि माँ बाप खुद स्वयं अपने बच्चों को लेकर हमारे ध्यान से स्टेडियम आते हैं, अपने बच्चों को प्रोत्साहन करते हैं कि नहीं सर हमारे बच्चे को अच्छा से अच्छा सिखाओ, अच्छे से अच्छा उसको बनाने की। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे ध्यानचंद स्टेडियम से बिना ये भी बच्चा बिना सीखे वो स्टेडियम से बाहर ना जाए।
0: अच्छा,
2: तो
0: प्रशिक्षण
2: कोशिश
0: देते समय सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है?
2: कुछ नहीं, सिर्फ ध्यान देना पड़ता। अगर अगर वो बच्चा सीखता है तो जैसा जैसा हम बताते जाए वैसा वैसा वो करता जाए, तो ना तो हमें सिखाने में दिक्कत होगी और ना बच्चे को सीखने में कोई दिक्कत होगी।
0: बस ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का।
2: बच्चों का ये ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चा पानी में, गहरे पानी में ना जाए, डूबे ना, तो बस बस यही सब ध्यान रखना पड़ता है। और तो उसमें तो ये है कि अब हमारी तो सबको एक प्रकार से कभी सारे बच्चों को एक लाइन में बिठा के चलवा दिए, पहले सीधे पैर चलवा दिए, फिर उनसे क्या लेट के पैर चला दे, उनसे फ्लोटिंग करवाते हैं। पैर हमेशा मोड़ के नहीं चलाना चाहिए, बच्चों को हमेशा पैर सीधे चलाएं, जिससे कि बच्चों को आगे बढ़ने में
0: हाँ,
2: उनको
0: क्योंकि इसकी तैराकी की भी कई तकनीक होती है।
2: हाँ उसकी चार चार स्टेप होते हैं। सबसे पहले फ्री स्टाइल, दूसरा है ब्रेस्ट स्ट्रोक, तीसरा है बटरफ्लाई, चौथा है बैक स्ट्रोक। ये सुनेंगे चार स्टाइलें हैं, फ्री स्टाइल अच्छा कर रहा है, कौन बच्चा ब्रेस्ट अच्छा कर रहा, भाई बटरफ्लाई अच्छा कर रहा, कौन बच्चा बैक स्ट्रोक अच्छा कर रहा,
0: उससे में उसको आप आगे बढ़ाते हैं,
2: उसको बारीकी बताते हैं।
0: और हम देखते हैं कि गर्मियों में स्विमिंग सीखने वालों की संख्या बढ़ जाती है, ऐसे में सुरक्षा के क्या उपाय जरूरी हैं?
2: नहीं, हम लोगों के पास दो दो तीन तीन लाइफ गार्ड है और वो

0: पूल के ऊपर। तो अभी माने जब तक हमारा समर कैंप चलता है, तो अगर एक आदमी अगर मेरे पानी के अंदर बच्चों को सिखा रहा है तो दूसरा ऊपर से देखता रहता है बराबर कि कोई बच्चा पानी के अंदर डूबे ना, या तो पानी में इन सब अपनी अपनी स्विमिंग करिए, कोई एक दूसरे को पकड़ेगा नहीं,
1: परेशानी तो नहीं। आपने तैराकी, स्वास्थ्य और खेल भावना से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोताओं से साझा की। हमें विश्वास है कि आपकी बातें युवाओं को तैराकी के प्रति प्रेरित करेंगी। धन्यवाद। कहते हैं अगर इरादे मजबूत हों तो मंजिलें आसान हो जाती हैं। झांसी की बेटी इमरोज खान ने अमेरिका के बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025 में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीतकर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे झांसी और भारत का नाम रोशन किया। 70 किलोग्राम वर्ग में अमेरिकी बॉक्सर जेनेट जॉनसन को 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इमरोज खान ने गौतम बुद्ध नगर में आयोजित नवी एलिट महिला व पुरुष राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए कांस्य पदक जीता और वे निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने बताया,
2: पहले तो हम आपको बधाई देना चाहेंगे कि अमेरिका की धरती पर आप गोल्ड मेडल लेकर आई हैं।
3: शुक्रिया।
2: अब आप बताइए, आपने बॉक्सिंग की शुरुआत कैसे की?
3: बॉक्सिंग की शुरुआत तो ऐसा था कि बॉक्सिंग के नाम से ही फैमिली डरती थी, तो मैं पहले हॉकी खेलती थी, तो वो ही बॉक्सिंग का एक था दिल में कि करना है, लेकिन बॉक्सिंग से नाम से ही मना कर दिया घर वालों ने, तो हॉकी की आड़ में बॉक्सिंग शुरू करा था। तो बस सब जूनियर ऐसी स्टेट था, उसमें गोल्ड आया झांसी में, तो उसके थ्रू न्यूज़पेपर में निकला फोटो, तो घर वालों को पता लगा कि मैं बॉक्सिंग कर रही हूँ। तो फिर मुझे लगा शायद अब मुझे मार पड़ेगी, तो मैंने थोड़ा रोना वोना करा, लेकिन सपोर्ट किया घर वालों ने, तो जब से आज तक फुल सपोर्ट है और जब से आज तक कर ही रही हूँ।
2: लेकिन इस गोल्ड मेडल के पीछे आपकी तैयारी और दिनचर्या कैसी रहती थी?
3: ये इस गोल्ड मेडल के पीछे यही है कि मतलब एक था कि बस मुझे करना है, हाँ मतलब पुलिस टीम से मुझे गोल्ड लेना है और उसके बाद खेलना है वर्ल्ड पुलिस। एक सपना था कि मुझे वर्ल्ड पुलिस जाना है, तो बस वो था कि हाँ मतलब तब भी वहाँ पहुँच के भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं आ गई यहाँ पर।
2: सबसे कठिन मुकाबला कौन सा रहा था आपका?
3: मुझे ऐसा लगता कि अपने इंडिया के प्लेयर्स को फाइट दे के ही निकलना है यहाँ से, खाली हाथ वापस नहीं आती, चाहे मेरा कोई भी मेडल है आता है, बस ये है वहाँ से। फिर
2: क्या कोई ऐसे कोच या व्यक्ति हैं जिनका योगदान आप विशेष रूप से मानती हैं?
3: करी मैं पहले रोहतक हॉस्टल में थी, फिर JSW चली गई, अभी मैं CSF में हूँ, वहाँ पे कोच के उनके कोच के अंडर कर रही हूँ, और अभी कैंप में हूँ तो यहाँ के कोचेज है। तो बाकी झांसी से अगर सपोर्ट की जाए तो जैसे हमीद सर है और रोहित पांडे सर, मतलब जो थोड़ा सपोर्ट देते हैं बैकबोन का वो मिलता है, बाकी जो कोचिंग है तो मैंने यहाँ वहाँ करके ली है।
2: क्या बॉक्सिंग जैसे खेलों में महिलाओं को अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?
3: नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है बॉक्सिंग मतलब गेम है, अगर आपको करना है ना तो फिर चुनौतियों क्या देखना है, बस ये है, फिर चुनौतियां देखना है तो फिर गेम ही क्या करने से फायदा।
2: आज की बेटियों और युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
3: मैं बस आज की बेटियों को युवाओं को यही बोलना चाहूंगी कि मतलब वो तो करना चाहती हैं, लेकिन वही है जो मेरे साथ था, माँ बाप हर चीज से डरते हैं, तो वही उनके माँ बाप से यही बोलूंगी कि आप अपने बच्चों को ना एक बार उन पे विश्वास करके एक बार उनको सपोर्ट करिए, शायद वो कर जाएंगी कि जो वो करना चाहती हैं। आप उनको बोल रहे पढ़ो पढ़ो, लेकिन उसका दिमाग कहीं और है
2: जी।
3: अगर आप उसको वो करवाओगे ना तो शायद वो उस चीज में वो कर जाएंगे जो पढ़ाई से वो घर में रह कुछ नहीं कर सकते।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। और अब आपका अगला लक्ष्य क्या है?
3: अभी कंपटीशन है हमारे, अभी यहाँ मैं कैंप में हूँ, अभी ट्रायल्स होंगे, अभी ये देखिए, अभी मैं दिल में तो बहुत कुछ है, जो लक्ष्य है वो बताना नहीं चाहिए इसलिए मैं बोल नहीं सकती
2: लेकिन
3: क्या होता आगे। हाँ बाकी मैं लगी हूँ
2: प्रैक्टिस में। और इमरोज खान जी, आपने साबित कर दिया कि अनुशासन, साहस और समर्पण से सब कुछ संभव हो जाता है, और आपकी जीत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा रहेगी। धन्यवाद आप।
1: K खेल जीवन संवारने का सशक्त माध्यम है। झांसी में खेलों की स्थिति और प्रगति सकारात्मक है एवं विकसित होती तस्वीर है, जिसमें पारंपरिक खेलों से लेकर आधुनिक गतिविधियों तक का समन्वय देखने को मिलता है। श्रोताओं, खेल केवल जीत हार नहीं, ये जीवन जीने की कला है। इसके साथ ही खेल दर्पण कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दी।

0: दीजिए अल्पना श्रीवास्तव को। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी अंजलि कुमारी।
1: खेल दर्पण।
2: श्रोताओं, अभी आप हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के झांसी केंद्र की प्रस्तुति थी। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
3: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पंडित जसराज का गायन।

ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ ही क्षणों में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र के माध्यम से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानव अधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, भारत दुनिया को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बात थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं। इसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारी ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश के कश्मीर और जम्मू डिवीजन के शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन क्षेत्रों को कवर करते हुए 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा की तिथियां जारी कर दी हैं। विस्तृत और ताजा जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jkbose.jk.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों

के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिनों के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Signed with the vision of Vikasit Bharat 2047 and will strengthen trade facilitation, connectivity and national security. And with that, we end this news bulletin.
1: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 14.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। आज की यह सभा संपन्न होती है। कल सवेरे 5:52 पर अपने प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम के साथ आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।